0: इसी के साथ स्वर रंजनी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। सुबह के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्त करने जैसे कठोर दंड भी शामिल है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
1: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
3: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
1: वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। एआईटीसी के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाऊ श्री कृष्ण देवरियालू और शिवसेना के डॉ श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्नपत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू करने तक के लिए स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। गणपति भक्तों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे 11 से 27 सितंबर तक 246 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें मुंबई और पुणे को सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी और मढ़गांव से जोड़ने वाली 184 आरक्षित रेलगाड़ियां और दीवा और खेड़ के बीच चलने वाली 62 अनारक्षित रेलगाड़ियां शामिल हैं। टिकट की बुकिंग 1 अगस्त से सभी टिकट काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। कर्नाटक, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों की स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। भारत पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। The Lok Sabha will resume the discussion on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 today. Union Minister Dr. Jitendra Singh moved the bill for consideration and passing in the House yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be completed within 2 months from the date the information is recorded at the police station. The trials must be concluded within 3 months from the filing of the charge sheet. Moving the bill, Union Minister Dr. Jitendra Singh said the new legislation reaffirms the government's deep commitment to safeguard the welfare of the students of the and the youth of this country. He said at the same time it is also a reiteration of Prime Minister Narendra Modi's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the youth of the country. Dr. Singh claimed that it is a milestone legislation in the history of Indian Parliament. Listing a series of paper leaks that occurred during the Congress and UPA era, Mr. Singh said there was no comprehensive law to tackle the cases and the Modi government brought the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024 to ensure speedy justice.
2: You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. In 2024, this bill was brought in to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated.

ईश्वर की भक्ति और स्तुति में जो सुख और शांति है वो आपको कहीं नहीं मिल सकती। जब भी हम किसी उदासी में होते हैं तो हम उसी को याद करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो ही हमें पार लगा सकता है, और ऐसा सत्य भी है।

गणेश भगवान की स्तुति सबसे पहले की जाती है, उनका ही बहुत महत्व है, उनकी पूजा का, अर्चना का। और बहुत दयालु होते हैं ईश्वर, जो सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, और जो जीवन में जिसके लिए अच्छा होता है वो उसे प्रदान करते हैं। ईश्वर पर विश्वास करना ही सच्ची भक्ति है, क्योंकि सिर्फ नाम जपने से नहीं, उस पर विश्वास करो और अच्छे कर्म करो, यही सद्गति देता है।

भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना गया है। किसी भी शुभ कार्य, यज्ञ अनुष्ठान या कोई भी आयोजन होता है सांस्कृतिक, या तो आरंभ में उन्हीं का स्मरण किया जाता है और ये परंपरा बहुत पुरानी है। भगवान गणेश बुद्धि, विवेक, सफलता और मंगल के प्रतीक माने जाते हैं। यही कारण है कि उनका जो साधना है ना, जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो उन्हीं की साधना से, उन्हीं की वंदना से किसी भी कार्य को शुरू करते हैं। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन उन्हीं की स्तुति में। बहुत ही आनंदमय लेते हैं इस भजन का हम भी आनंद।

सुंदर प्रस्तुति अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में गणपति बप्पा मोरया, वाकई में गणपति बप्पा की महिमा का गुणगान करना

इसी शब्द के साथ आज का वंदना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम चिंतन। आज का चिंतन है राजा राममोहन रॉय के विचारों पर।

0: शुभ प्रभात। आज के चिंतन कार्यक्रम में प्रस्तुत है लघु वार्ता राजा राम मोहन रॉय के विचार। आलेख है संध्या रानी का और वाचन स्वर नीलम मलकानिया का।
1: राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। उनके उपदेश और विचारों ने समाज में परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभाई है। उनका उद्देश्य एक समान और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना था। उनकी शुरुआती शिक्षा गांव में ही हुई थी। वे बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे। यही कारण है कि उनको बहुत ही कम उम्र में अनेक भाषाओं का ज्ञान हो गया था। उन्होंने कुछ समय के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में भी काम किया था। वहां कुछ सालों तक काम करने के बाद छोड़ दिया। दरअसल उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था। समाज में अंधविश्वास, छुआछूत, जातपात, बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा, महिलाओं में शिक्षा का अभाव और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ उन्होंने जमकर विरोध किया था। सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की भूमिका सबसे अहम रही है। उस समय समाज में ऐसी परंपरा थी कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी भी पति के साथ चिता पर जल जाती थी। उसको धर्म का नाम दिया जाता था, लेकिन इसके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाता था। कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय के भाई की मृत्यु के बाद उनकी भाभी भी अपने पति के साथ चिता पर जल गई थी। इसका प्रभाव राजा राम मोहन राय के मन पर बहुत अधिक पड़ा और उन्होंने उसी समय ठान लिया कि अब इस बुराई का अंत करके ही रहूंगा, ताकि ऐसी घटना किसी दूसरी महिला के साथ ना हो। इसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया। इसका परिणाम ये हुआ कि अंत में वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सन 1829 में

प्रथा पर रोक लगा दी थी। राजा राम मोहन राय महिलाओं की शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। उनका मानना था कि महिलाएं जब तक शिक्षित नहीं होंगी तब तक वे अपने अधिकारों के बारे में नहीं समझेंगी, क्योंकि वे जानते थे कि समाज में बदलाव तभी आ सकता है जब देश का हर नागरिक शिक्षित हो। इसके लिए उन्होंने अपने धन से कॉलेज खोला जहां अंग्रेजी और विज्ञान की पढ़ाई होती थी। इसके अतिरिक्त वे चाहते थे कि पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार दिया जाए। इसके साथ ही वे बहुविवाह के बहुत बड़े विरोधी थे। दरअसल उस समय समाज में पुरुष कई कई विवाह करते थे। सन 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, क्योंकि उस समय छुआछूत और अंधविश्वास का बोलबाला था। वे देश के पहले ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने शिक्षा को आत्मनिर्भरता और सामाजिक जागरूकता का साधन माना था। उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली का भी समर्थन किया था। उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच संवाद और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया था। इसके अलावा उन्होंने ईश्वर की एकता का प्रचार किया था और धर्म को मानवता की सेवा का श्रेष्ठ साधन बताया था। उन्होंने तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया था। उनका मानना था कि अंधविश्वास और अज्ञानता से मुक्ति पाने के लिए तर्क का सहारा लेना बेहद जरूरी है। राजा राम मोहन राय ने विदेशी उत्पादों के उपयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का समर्थन किया था, जिससे देश की अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिल सके। उनके विचारों ने सिर्फ भारतीय समाज को जागरूक ही नहीं किया, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई।

श्री रामचरितमानस के प्रत्येक सोपान का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास ने देववाणी संस्कृत में रचित मंगलाचरण से किया है। इन छंदों में शंकर तथा श्री राम सहित अन्य देवताओं की स्तुति की गई है। प्रथम सोपान बालकांड के आरंभ में सरस्वती, गणेश, पार्वती, शंकर, कवीश्वर वाल्मीकि तथा हनुमान की वंदना की गई है। द्वितीय सोपान अर्थात अयोध्या कांड गुरु रूप श्री शंकर तथा नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले श्री राम की स्तुति से आरंभ होता है, जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती, मस्तक पर गंगा, ललाट पर द्वितीय का बालचंद्र, कंठ में हलाहल विष तथा वक्षस्थल पर सर्पराज शेष सुशोभित हैं। भस्म से विभूषित शरीर, देवताओं में श्रेष्ठ, संहारकर्ता तथा भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापी कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण वाले ऐसे देवाधिदेव महादेव से गोस्वामी तुलसीदास अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भक्त कवि की कामना है कि रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले श्री रामचंद्र, जिनका मुखमंडल ना तो राज्याभिषेक से प्रसन्न हुआ और ना ही जो वनवास के दुख से मलिन हुआ, सदा मंगलदायी हों। नीले कमल के समान श्याम वर्ण और कोमल अंग हैं जिनके, सीता जी जिनके वाम भाग में अवस्थित हैं, जिनके हाथों में अमोघ वाण और धनुष सुशोभित हैं, उन रघुवंश नाथ का तुलसीदास नमन करते हैं।

छात्राणां मुक्त्यादेशः प्रदत्तः येषां पूर्वम् आपराधिकाभिलेखः नास्ति। न्यायालयेन सम्बन्धिताधिकारिभ्यः वैद्युतक अंकीय साक्ष्याणां संरक्षणमपि निर्देशितम्। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य अध्यक्षतायां त्रिन्यायाधीशपीठं प्रदर्शनकाले आरक्षकबलस्य कथितानुचित बलप्रयोग सम्बद्धानां याचनानां श्रवणम् अकरोत्। न्यायपीठेन दिल्ली प्रशासनाय अभिलिखितानां एफआईआर इति प्रकरणानां अन्वेषणं निरन्तरं कर्तुम् अनुमतिः प्रदत्ता। तथापि न्यायप्रक्रियायाः प्रवर्तनकाले प्रदर्शनरतानां छात्राणां विरुद्धं किमपि कठोर निर्णयं न कर्तव्यमिति निर्देशः प्रदत्तः। सर्वोच्च न्यायालयस्य आदेशानुसारं तथा अवैधरीत्या नीट परीक्षापत्र प्रकाशनस्य विरुद्धं प्रदर्शनानां विषये सर्वेषां पक्षाणां मूल्यांकनं कृत्वा पश्चिमबंगाल प्रशासनेन विरोध प्रदर्शनेषु सम्मिलितानां छात्राणां विरुद्धं किमपि कार्याचरणं न स्वीकर्तुं निश्चितम्। राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतीय भारोत्तोलिका हरजिंदर कौर महिलानां एकोन सप्तति किलोग्राम भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवती। अपरंच भारतीय मुष्टियोद्धा एम जादुमणि सिंहः ग्लासगो नगरे पुरुषाणां पंचपंचाशत् किलोग्राम भारवर्गे प्रागुपांत्य चक्रे मुआले म्वेंगो इत्येनं पराजित्य न्यूनातिन्यूनं कांस्य पदकं सुनिश्चितवान्। अनेन असौ उपांत्यचक्रे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।

0: बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नागरिक केंद्रित शासन के महत्व पर बल देते हुए कहा कि भारत की जनता प्रत्येक निर्णय और नीति के केंद्र में रहनी चाहिए। लोकसभा में आज लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को एक क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई। पीठासीन अधिकारी संध्या रॉय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। भारत समुद्री नाविक उपलब्ध कराने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। वैश्विक जहाजरानी उद्योग में भारत ने 3,11,936 समुद्री पेशेवरों का योगदान दिया है। BIMCO, ICS, Seafarer, वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार अब वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत का 12.16% का हिस्सा है। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वैश्विक जहाजरानी मार्गों को प्रभावित कर रहे बढ़ते भू राजनैतिक तनावों के बीच संघर्ष संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापारिक जहाजों पर काम करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों की समीक्षा की। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलबीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries to the government at his residence yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed the future action agenda of ministries and departments dealing with finance and economy, commerce and industry and technology sectors. The meeting focused on accelerating progress towards the goals of Viksit Bharat. During the meeting, Mr. Modi called for a strong focus on team building across ministries and departments, urging officers to work with a shared sense of purpose. He emphasized the need to break both horizontal and vertical silos within the government so that departments function in close coordination and deliver integrated outcomes. The Lok Sabha will resume the discussion on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 today. Union Minister Dr. Jitendra Singh moved the bill for consideration and passing in the House yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be completed within 2 months from the date the information is recorded at the police station. The trials must be concluded within 3 months from the filing of the charge sheet. Moving the bill, Union Minister Dr. Jitendra Singh said the new legislation reaffirms the government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country.
1: You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. In 2024, this bill was brought in to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated.
3: Delhi government has approved the Delhi Lakshmi Yojana DLY, marking a significant step towards the economic empowerment and social security of women. Under the scheme, eligible women will receive financial assistance of 2,500 rupees every month. The United States Central Command has said that Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC,

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे पुष्पा रानी के गाए हुए भजन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी रेडियो सखी निधि वर्मा। और आज दिल्ली में आज बादल ऐसे बरस रहे हैं जो जैसे ऊपर वाले ने नल खुले छोड़ दिए हैं। बारिश से मन का रिश्ता बहुत गहरा होता है। मन का मौसम बारिश से ज़्यादा प्रभावित होता है। किसी की याद सताने लगती है तो कभी खुशनुमा सा माहौल लगता है। इस बदलते मौसम में और मन एवं शायर से ज़्यादा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे ये मौसम अच्छा ना लगता हो। इसलिए पेश है आपके लिए बारिश पर लिखा एक बेहतरीन शेर। नासिर काजमी साहब ने क्या खूब कहा है, याद आई वो पहली बारिश, याद आई वो पहली बारिश जब तुझे एक नज़र देखा था। क्या बात है, और दिल में बहुत सारी खुशी। तो चलिए शुरू करते हैं बरसात की बातें, क्योंकि बारिश आए तो गाने तो बनते ही हैं।

किशोर साहब की आवाज़ में क्या खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। बारिश सिर्फ मौसम नहीं बल्कि ढेर सारी यादों, खुशियों और सुकून का एहसास भी लेकर आती है। पहली बारिश की बूंदें, मिट्टी की खुशबू, गर्मा गर्म चाय और अपनों की याद, यही तो मानसून की सबसे खास, हमारे मानसून को सबसे ज़्यादा खास यही बातें बनाती हैं। ऐसे खूबसूरत मौसम में अगर किसी अपने को एक प्यारी सी शायरी या एक अच्छा सा गीत सुनवा दिया जाए तो लोगों का दिन बन जाता है, जैसे कि मैं आज आप लोगों का दिन बना रही हूँ। तो ऐसे ही बारिश का आनंद लीजिए और सुनते रहिए ये प्यारे से प्यारे गीतों को।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों, बारिश का मौसम अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेके आता है, सुकून और रोमांटिक माहौल लाता है, ठंडी हवाएं, मिट्टी की सौंधी खुशबू और गर्मा गर्म चाय। बरसात सिर्फ मौसम नहीं दोस्तों, ये एक टाइम मशीन है। जब भी आपने देखा है ना कि जब भी बारिश होती है तो सबसे पहले हम कहाँ भागते हैं, हम लोग सबसे पहले छत पर भागते हैं बारिश के मज़े लेने के लिए। तो अगला गाना उसी फीलिंग के साथ है, जब क्रश को छुप छुप कर जब हम देखते थे और अपने बाल भी संवारते थे।

साथ रखना। 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

बारिश में सबसे अंडरस्टैंडिंग होता है कि गम जाए पुराने गाने, तो हमारा अगला गाना जो है ना वो उसी पर बेस्ड है, जैसे ये बारिश का मौसम और तुम्हारी याद। चलो फिर मिलते हैं इसी बहाने से आज, बादलों की छाँव में नया सवेरा है, हर बूंद में कोई पुराना किस्सा है, ठंडी हवा और मिट्टी की खुशबू जैसे दिल पर छा गया कोई जादू है। तो आइए सुनते हैं अगला प्यारा सा गाना।

दोस्तों, बरसात ना सिर्फ हमारे आज को अच्छा करती है, आज का मौसम अच्छा बनाती है, बल्कि हमारी पुरानी यादों को भी ताज़ा कर देती है। आपको याद है ना, जब हम लोग छोटे छोटे होते थे ना, तब साथ में दोस्तों की जब बारिश होती थी तो हम लोग कागज़ को फाड़ फाड़ कर उनकी नाव बनाते थे और उनको चलाते थे। वो उसमें कितना आनंद आता था हम लोगों को। जब आज वो दिन याद करते हैं ना तो बेहद खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। बारिश में दोस्तों के साथ कागज़ की नाव चलाने का एक मज़ा ही अलग होता था। जब गिरते भी थे और संभलते भी थे और हंसते भी थे। तो आइए सुन लेते हैं कार्यक्रम में एक और खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, आज के 30 मिनट कैसे निकल गए ये तो पता नहीं चलता, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि बारिश बंद होने के बाद भी ये गाने आपके दिलो दिमाग में चलते रहेंगे, और आज हमने जितनी भी सारी बातें की उनसे आपके पुराने दिन की यादें भी ताज़ा हो गई होंगी। तो कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे जाते जाते, लेकिन बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अपना ख्याल रखें, छाता और दिल दोनों संभाल कर रखें। मैं आपसे जल्द मिलूंगी अपने अगले बादल, कहने का मतलब है कि अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम से अपनी दोस्त निधि वर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, और सुनते रहिए ये प्यारा सा गीत।

0: पैसे दो हस्बैंड जी।
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फुर्ती और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
3: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाबू श्री कृष्ण देव रायलू और शिवसेना के डॉ श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रूपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।
2: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा, उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी

0: आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर पीओजेके में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले 2 दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्ता ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है पीओके में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई, 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है एक दिन में 6 पदक। पत्र ने पदक विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें छापी हैं। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है खतरे का तापमान। पत्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। विडंबना यह है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान

0: आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरकार के मुख्तलिफ महकमों और वजारतों में करीबी तालमेल के साथ काम करने पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आला ओहदेदारों के साथ मीटिंग में मुस्तकबिल के इक़दामात के एजेंडे का जायजा लिया। आज लोकसभा में पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर आगे बहस होगी। दिल्ली सरकार ने हर अहल खातून को 2500 रुपए की माहाना माली इमदाद फराहम करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेस की जाबिराना कार्रवाई में मरने वालों की तादाद गुज़श्ता दो दिन के दौरान बढ़कर 30 तक पहुंच गई है। मगरबी एशिया में ईरान ने अमरीकी फोर्सेस को निशाना बनाते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। अमरीका और सऊदी अरब की फोर्सेज ने इराक में ईरान से वाबस्ता ग्रुपों के खिलाफ मुश्तरक कार्रवाई की है। और दौलत मुश्तरक खेलों में गुलवीर सिंह मर्दों की 10,000 मीटर की दौड़ में चांदी का तमगा जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। खवातीन के वेटलिफ्टिंग मुकाबले में हरजिंदर कौर ने भी चांदी का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी रहिशगाह पर सरकार के मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज के साथ आला सतह की दूसरी मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म ने खजाने, मईशत, कॉमर्स, सनत और टेक्नोलॉजी के शोबों से वाबस्ता महकमों और वजारतों के मुस्तकबिल के इक़दामात के एजेंडे का जायजा लिया। इस मीटिंग में विकसित भारत के मकसद की समत पेशरफ्त में तेजी लाने पर तवज्जो मरकूज की गई। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने तमाम वजारतों और महकमों में टीम साजी पर बिलखसूस जोर दिया और अफसरान से अपील की कि वो एक मुश्तरक मकसद के एहसास के साथ काम करें। उन्होंने हुकूमत के अंदर उफ़की और उमूदी दोनों तरह की रुकावटों को ख़त्म करने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि महकमे आपसी हमांगी के साथ काम करें और मरबूत नतायज फराहम कर सकें। अवाम को मरकज में रखने वाली हुक्मरानी की अहमियत को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के अवाम हुक्मरानी के मरकज में रहने चाहिए। जनाब मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि तवानाई की सलामती, कौमी सलामती, इक्तसादी इस्तेहकाम और शहरियों की बहबूद से करीब से जुड़ी हुई है। जनाब मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल के साथ ही डिजिटल सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी पर खास तवज्जो दी जानी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उन हिकमत अमली वाले शोबों में पेशगी और फ़ाल मवासलात की अहमियत पर जोर दिया जहां भारत बड़े इकदाम कर रहा है ताकि ऐसे इकदाम के इर्द गिर्द फैली गलत मालूमात और बेबुनियाद खदशात का मुकाबला किया जा सके। इस मीटिंग में काबीना सेक्रेटरी, अहम वजारतों और शोबों के सेक्रेटरीज और वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के सीनियर हुक्काम ने शिरकत की। आकाशवाणी न्यूज़ से आदित्य की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: लोकसभा में आज पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल की रोकथाम से मुतालिक तरमीम बिल 2026 पर आगे बहस होगी। मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने कल ऐवान में यह बिल गौर खोज और मंजूरी के लिए पेश किया। मजकूरा बिल में पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल की रोकथाम से मुतालिक 2024 के एक्ट में तरमीम की बात कही गई है। इस बिल में कई अहम दफात को शामिल किया गया है। इनमें 10 साल तक की कैद की सजा,

0: की तहकीकात मुकम्मल की जानी चाहिए, जबकि मुकदमे की कार्रवाई फर्द जुर्म दाखिल किए जाने के 3 माह के अंदर अंदर मुकम्मल करना होगी। ये बिल पेश करते हुए मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए बिल में तलबा और मुल्क के नौजवानों की बहबूद के तहफ्फुज के तहत सरकार के पुख्ता अहद का इरादा किया गया है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर इल्जाम लगाया कि वो तालीम के शोबे के ताल्लुक से संजीदा नहीं है और वो हकीकी इस्लाहात लाना नहीं चाहती।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज ने मस्कूरा बिल को एक बड़ी तब्दीली लाने वाला कदम करार दिया और कहा कि मुनसिफाना और शफाफ इम्तिहानात को यकीनी बनाने के लिए इस तरह का बिल वक्त का तकाजा है।
3: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है, और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
0: समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने मुख्तलिफ इम्तिहानात के पर्चे लीक होने के मामले पर तश्वीश जाहिर की है। जनाब यादव ने कहा कि 2024 में पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल की रोकथाम से मुतालिक नया एक्ट बनाए जाने के बावजूद इस साल नीट यूजी इम्तिहान का पर्चा लीक हुआ। इधर कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर इल्जाम लगाया कि वो तलबा के मफादात का तहफ्फुज करने में नाकाम रही है और वो तालीमी निज़ाम को कमजोर कर रही है। दीगर अरकान ने भी बहस में हिस्सा लिया, इनमें NCP, CPIM, YSRCP, RJD, AIMIM और श्रोमणी अकाली दल शामिल हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद खवातीन को बाइख्तियार और उनकी गुजर बसर को यकीनी बनाना है। ये फैसला कल दिल्ली सेक्रेटरिएट में वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता की सदारत में एक काबीना मीटिंग में किया गया। स्कीम के तहत अहल खवातीन को हर महीने 2500 रुपये की माली इमदाद दी जाएगी। इस स्कीम के लिए 2026-27 के बजट के लिए 5110 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। नई दिल्ली में नमानिगारों से बात करते हुए वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता ने कहा कि इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल का आगाज 1 अगस्त को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 21 से 60 साल की उम्र के दरमियान वाली वो खवातीन जिनके कुनबे की आमदनी 25 लाख रुपए सालाना है, इस स्कीम से फायदा उठा सकेंगी।
4: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
0: भारतीय जनता पार्टी आज संत श्रोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें यौम पैदाइश के मौके पर गुरु पूर्णिमा के सिलसिले में पूरे मुल्क में श्री गुरु रविदास महाराज समरस्त संकल्प अभियान का आगाज कर रही है। वाराणसी में सियर गोवर्धनपुर में संत रविदास की जाय पैदाइश पर इस मुहिम का बाजाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: आज बनारस के सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास के जाय पैदाइश पर इस मुहिम का फौरी तौर पर आगाज होगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां पर दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। इस मुहिम के तहत संत रविदास के मुकद्दस जाय पैदाइश की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों और मुल्क की दीगर रियासतों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी इनेकाद किया गया है, जिसमें तकरीबन 25,000 के शामिल होने का इम्कान है। प्रोग्रामों की ये फहरिस्त माघी पूर्णिमा और संत रविदास की योम पैदाइश यानी अगले बरस 20 फरवरी तक चलेगी। बीजेपी के सदर नितिन नबीन, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, रियासती बीजेपी

0: पंकज चौधरी समेत तमाम सरकर्दा लीडरान के इस प्रोग्राम में शिरकत करने की उम्मीद है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
1: केरलम में 14 में से 7 जिलों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रियासत में तेज बारिश का सिलसिला हफ्ते के रोज तक जारी रहने का इम्कान है। रियासत में आज सुबह सवेरे से औसत बारिश हो रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर इलाके में सरकार की वेश्याना कार्रवाई में गुजश्ता 2 दिन में मरने वालों की तादाद 30 तक पहुंच गई है। कई लोग जख्मी भी हुए हैं। एक मकामी ग्रुप ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान की फौज ने हजारों पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग की, जिससे पीर के रोज 25 अफराद मारे गए, जबकि कल मजीद 5 अफराद हलाक हुए। उधर इंसानी हकूक की अलमबरदार तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ मोहलिक ताकत के इस्तेमाल की इत्तलात की आज़ादाना और शफाफ तहकीकात पर जोर दिया है। साथ ही उसने पाकिस्तानी हुकाम से कहा है कि खित्ते में मवासलाती खिदमात बहाल की जाएं और वहां मीडिया और आज़ाद मुजाहिदीन को जाने की इजाज़त दी जाए। अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब की फोर्सेज ने मगरबी एशिया के खित्ते में तैनात अमरीकी फोर्सेज पर अचानक हमले की कोशिश करते हुए कल रात कई बैलिस्टिक मिजाइल दागे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि ईरान के सभी मिजाइलों को कामयाबी के साथ मार गिराया गया और अमरीकी फोर्सेज पूरी तरह चौकस और मुस्तैद हैं। अमरीका ने यह दावा भी किया है कि गुज़श्ता 72 घंटे के दौरान ईरान के पासदारान इनकलाब की फोर्सेज ने 30 ड्रोन हमले किए। जवाबी कार्रवाई करते हुए अमरीका की मरकजी कमान और सऊदी अरब की मुसल्ला फोर्सेज ने इराक में ये इल्ज़ाम लगाते हुए हमले किए कि ईरान के पासदारान इनकलाब की फोर्सेज ने ईरान से वाबस्ता ग्रुपों को अमरीकी फोर्सेज और सऊदी अरब के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले करने को कहा है। अमरीका और सऊदी अरब के लड़ाका हवाई जहाज़ों ने मशरकी इराक में कई लॉजिस्टिक्स और असलहा रखने के मकामात को निशाना बनाया। ग्लासगो में जारी 2026 के दौलत मुश्तरका खेलों में गुलवीर सिंह भारत के ऐसे पहले एथलीट बन गए हैं जिन्होंने तारीख रकम की है। गुलवीर सिंह ने मर्दों की 10,000 मीटर दौड़ में चांदी का तमगा हासिल किया। स्कॉटस्टोन स्टेडियम में इस्माइनास चैंपियन का मकाम ऑस्ट्रेलिया के काई रॉबिन्सन के बाद रहा। 29 साल भारतीय वेटलिफ्टर ने कम्बाइन वजन 2,227 किलोग्राम उठाकर भारत का 7वां हिस्सा हासिल कर लिया। इस मुकाबले में हरजिंदर ने भी दौलत मुश्तरका का लगातार दूसरा तमगा हासिल किया। उन्होंने 2022 में बर्मिंघम में कांस्य का तमगा हासिल किया था। इसके साथ ही ग्लासगो के इन खेल मुकाबलों में भारत के तमगों की कुल तादाद 12 हो गई है, जिनमें 2 सोने, 7 चांदी और 3 कांस्य के तमगे हैं। इसी दौरान 4 भारतीय मुक्केबाजों का सोने के तमगे हासिल करने का यकीन है। ये लोग अपने तमगों को चांदी और सोने के तमगों में बदलने के मकसद से अपनी कारकर्दगी पेश करेंगे जब ये लोग सेमीफाइनल्स खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने पार्लियामेंट में पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक बिल पर बहस को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, पेपर लीक की रोकथाम के तरमीमी बिल पर जोरदार बहस। अखबार प्रताप की सुर्खी है, लोकसभा में मंगल को भी वक्फे सवालात खलल का शिकार रहा। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, वजीर आजम ने आसाम के अराकीन पार्लियामेंट से मुलाकात करके सैलाब की सूरत हाल की मालूमात हासिल की, मदद का यकीन दिलाया। राजनाथ ने कोस्ट गार्ड में सिन्फी मसावात और इमदादी रकम से मुतालिक 2 पॉलिसी असलाहत का आगाज किया। ये खबर भी अखबारात में नुमाया है। अखबार ने दौलत मुश्तरका खेलों में पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ के शॉट पुट में सोने का तमगा जीतने की खबर को भी अहमियत के साथ शाया किया है। अखबारात की अहम बैन अलाक्वामी खबरें इस तरह हैं, इक्तसादी पाबंदियां ईरान पर फौजी हमलों से ज्यादा मुअसर हो सकती हैं, अमरीकी हुक्काम का बयान। ईरान ने सालिसों के जरिए किए जाने वाले मुजाकरात में अमरीकी तजावीज मुस्तरद कर दी। ट्रंप ने तुर्की को F-35 जंगी तैयारों की फरोख्त पर नेतन्याहू का एतराज मुस्तरद कर दिया।
1: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरकार के मुख्तलिफ महकमों और वजारतों में करीबी तालमेल के साथ काम करने पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आला ओहदेदारों के साथ मीटिंग में मुस्तकबिल के इम्कान इकदाम के एजेंडे का जायजा लिया। आज लोकसभा में پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026

लेकर आगे बहस होगी। दिल्ली सरकार ने हर अहल खातून को 2500 रुपए की महाना माली इमदाद फराहम करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेस की जाबराना कार्रवाई में मरने वालों की तादाद गुज़श्ता 2 दिन के दौरान बढ़कर 30 तक जा पहुंची है। और मगरबी एशिया में ईरान ने अमरीकी फोर्सेस को निशाना बनाते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे पंडित प्रशांत मलिक और पंडित निशांत मलिक का गायन राग सुदेशी मल्हार। संगत कलाकार हैं पखावज पर पंडित अनिल चौधरी, तानपुरे पर मनीष कौल।

अभी आप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में आज हमने आपको सुनवाया पंडित प्रशांत मलिक और पंडित निशांत मलिक का गायन राग

पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लैके मैं हाजिर हाँ शमिंदर कलेर। अज दे इस प्रोग्राम च असी सुणांगे भैणे सावण आया विशे ते वार्ता। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि सौण दा महीना चल रहा है ते सौण दे महीने ते आधारित कुछ गीत भी सुनाए जाणगे ते अज कौमांतरी शेर दिवस भी है जो पूरे विश्व च मनाया जा रहा है। हर साल 29 जुलाई नूं इह दिहाड़ा मनाया जाता है। शेर की खूबसूरती दे तां कहने ही की एक समा हुंदा सी पूरी दुनिया च वड्डी तादाद च शेर हुंदे सन, पर मनुख की स्वार्थी प्रवृत्ति का नतीजा ये कि जंगलों की लगातार कटाई ते इस तों इलावा इन्हां दा शिकार होण दे नाल शेरां की गिनती घटन लगी ते इन्हां च तकरीबन 95% की गिरावट आई है। भारत सरकार वालों इन्हां दी सुरक्षा दे लई चलाईयां सफल मुहिमां करके फिर तो शेरां दी गिनती च वाधा होया ते इकल्ले भारत च 70% तो ज़्यादा शेर रहिंदे ने। शेरां नूं बचाउण ते उन्हां दी सुरक्षा ते उन्हां दी लुप्त हुंदियां प्रजातियां प्रति लोकां नूं जागरूक करन दे लई 2010 च रूस दे पीटर्सबर्ग च एक शिखर सम्मेलन च कौमांतरी शेर दिहाड़ा मनाउण दा ऐलान कीता गया सी। इस सम्मेलन च मौजूद कई देशां दीआं सरकारां ने 2020 तक शेरां दी गिनती नूं दुगणा करन दा टीचा मिथिया सी। जे तुसी चाहुंदे हो कि शेरां दी प्रजातियां लुप्त ना होण तां तुहानूं सब नूं कुदरत दे नाल प्यार पाउणा पवेगा। बिना जंगलां रुखां तों तां धरती दी तपश इन्नी वध जांदी है कि गर्मी कारण सब तरलो मच्छी हुंदे फिरदे ने। कुदरती नज़ारियां दी तुलना तां किसी भी शहर दे नाल नहीं कीती जा सकती। सौण दे महीने च पैण वाली बरसात दा अपना वक्खरा ही नज़ारा हुंदा है ते इस रुत्ते हर पासे हरियावल ही हरियावल हो जांदी है ते पशु पंछी भी बड़े ही खुश नज़र आउंदे ने, क्योंकि हरियावल दे इस मौसम च उन्हां नूं भी रजवी खुराक मिलदी है ते फिर बागी पीघां पाईआं जांदीआं ने। सौण दी आमद दी खुशी च गायक बलकार सिद्धू किसनूं झूटा लैण लई कह रहे ने, आओ सुनदे हां इस गीत च। एक झूटा लै जा वे सोने दे दंद वालिया,

गीतू से सुन रहे सी बलकार सिद्धू की आवाज़ च। गीत दे बोल लिखे सन गुरबख्श सिंह अलबेला ने ते संगीतबद्ध कीता सी तरन ऋषि ने। इस गीत नू सुन तो पहला असी गल कर रहे सी अंतरराष्ट्री शेर दिहाड़े दी। एक रिपोर्ट मुताबक केरला उत्तराखंड बिहार मध्य प्रदेश च शेरां दी गिनती च लगातार वाधा हो रहा है। इत्थे ये दसना भी लाजमी है कि हर चार सालां बाद शेरां दी जनगणना की जाती है। जे गल की जाए 1973 की तो उस वेले

0: नौ शेर सन ते जिन्हां दी संख्या वध के 51 हो गई है। शेरां दी वधदी घटदी संख्या लई असीं ही जिम्मेवार हाँ। शेरां दी गिनती नूं ते उन्हां दी खूबसूरती नूं जे असीं बरकरार रखना चाहुंदे हाँ तां सानूं वातावरण प्रति सचेत होना पवेगा। हरिया भरिया वातावरण जिथे इंसानां नूं आकर्षित करदा है उत्थे ही जंगली जानवरां दे बसेरे भी ये जंगल बेले हन। सो जंगलां नूं बचाइए, धरती दी तपश नूं रोकीए ते ज़्यादा तो ज़्यादा रुख लगाइए ताँ कि इन्हां बेजबानां दे बसेरे जंगल बरकरार रहन, क्योंकि जदों कुदरत रोच आउंदी है तां किसे दा कोई वस नहीं चलदा। सानूं इन्हां बेजबान जानवरां लई सोचना पवेगा। जे असीं इन्हां लई कुछ सोचांगे करांगे तां ही कुदरती नज़ारियां दा आनंद माण सकांगे। सौण महीने की पैंदी रिमझिम बरसात च सारी प्रकृति खुशी नाल झूमती नज़र आउंदी है, मनो इस रुत दा स्वागत कर रही होवे। ते डॉक्टर मनीषा बत्रा सौण महीने बारे की दस रहे ने, आओ सुनदे हाँ वार्ता भैणे सावन आया च।
1: कुदरती असूल मुताबक समा अपनी गति नाल चलदा रहिंदा है। समय दी इस तौर नाल ही रुत्तां ते मौसम भी बदल जांदे ने। जदों जेठ हाड़ दियां तपदियां दुपहरां अते वगदियां गर्म लूआं कारण तपदी बेसबरी धरती सौण महीने दी बरसात नाल ठारी जांदी है तां सारा आला दुआला नशाया जांदा है। समुची बनस्पति मनुख जीव जंतु पशु पंछी जिथे सौण दे महीने पैण वाले मीह नाल अथाह राहत महसूस करदे हन उत्थे गर्मी कारण पानी की कमी नाल सुक्कण किनारे पहुँच चुके नदियां नाले टोबे छप्पड़ आदि सब भर जाते हैं। धरती हेठों निकलण वाले पानी नू साह लैण दा समा मिल जाता है। महान कोश के कर्ता भाई कान सिंह नाभा अनुसार संस्कृत दे श्रावण अर्थात जिस महीने की पूर्णमाशी विच श्रवण नक्षत्र होवे ऐसे महीने नू सौण जां सावण कहा जाता है। सौण महीने का साढ़े जनजीवन समाज सभ्याचार आर्थिकता ते अध्यात्मकता नाल डूंगा संबंध है। सावन महीना साढ़े इतिहास अते मिथिहास विच बहुत महत्ता रखता है। हिंदू परंपरा अनुसार इस महीने शिवजी दे वर्त अते पूजा का विशेष महत्व है। हर सोमवार नू भगवान शिवजी की पूजा की जाती है ते वर्त रखे जाते हैं। मानता अनुसार इन्हां वर्तां नू रखण वाले भगतां तो शिवजी बहुत प्रसन्न हुंदे ने। इसे धारणा नू मंदियां शिवजी नू प्रसन्न करन लई लोग पूजा पाठ अते ए वर्त रखदे ने। इस वर्त विच भगवान शिव माता पार्वती ते नाल ही गणेश जी ते नंदी दा ध्यान करदे होए पूजा कीती जांदी है। लोग सावण दे महीने रखे जाण वाले इस वर्त नू मनिच्छत फल दी प्राप्ति लई करदे ने। इस पूजा नू पूरी विधि विधान नाल कीता जांदा है। वेदा पुराणा विच सौण महीने विच होण वाली इस शिव पूजा अते वर्त दी मानता ते कथा दे विशेष महत्व बारे विस्थार नाल जिक्र मिलता है। कई लोग अपनी आस्था अनुसार कई कई मील पैदल चल के इस महीने कावट यात्रा भी करते ने। भगतां दी धारणा अनुसार शिवजी जी नू इस महीने जल चढ़ाउण नाल मनुख नू प्रभु प्राप्ति हुंदी है। पंजाबी सभ्याचार विच भावें हर महीने नू किसे ना किसे तिथ त्यौहार दे रूप विच मनाया जांदा है, पर सावण महीने दा अपना वखरा रूप रंग अते ढंग है। सौण महीने विच चारे पासियों उमड़दियां कालियां कनकोर घटावां शोक हवावां रिमझिम रिमझिम वसदे बदलां नू वेख के मोरां दा पहला पाउणा कोयलां दा बिरहा दी अवस्था विच मिठा मिठा राग अलापणा बींडियां दा मनमोहक सुरीलियां आवाज़ां विच गाउणा ते पपीहे दी पुकार इस मौसम विच होर रंग भर दिंदी है। श्री गुरु नानक देव जी ने वढ़हंस राग दे तीसरे शब्द विच सौण महीने दे इस कुदरती विस्माद भरे नज़ारियां नू वेख प्रभु भगती विच लीन हुंदियां रब दे प्यारियां सखियां सहेलियां ते भैणां दे नाम नाल आवाज़ दिंदे होए आख्या मौरी रुण झुण लाया भैणे सावण आया। इसी तरह होर गुरुआं ने भी इस महीने दे महत्व नू गुरबाणी विच दर्ज कीता है। सौण महीने नाल अंबर उपर छाइयां कालियां घटावां जिथे मोरां नू पहला पाउण लई मजबूर कर दिंदियां हन उथे सौण महीने होण वाली बारिश कारण ही धरती उपर वण जां जंगल उपजे हन। वण धरती माता दे गहने ने ते इस दी सुंदरता नू वधाउंदे जीव जंतुआं लई पनाह भी बणदे ने। प्रकृति की सलाहना करते हुए भाई गुरदास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है सावण वण हरियावले वठे सुके अक जवाहा। गुरबाणी के नाल ही समाजक तौर पर भी सौण महीना लंबे त्यौहार के रूप

सामने आउंदा है। पुरातन समय तो ही लोक जीवन विच सौण महीने दी महत्ता रही है। भारत एक खेती प्रधान मुल्क है, जिथे बहुगिनती लोकां दा मुख किता खेतीबाड़ी जां इस नाल जुड़े होर काम धंदे हन। सौण महीने पैण वाली भरवीं बरसात झोने अते होर फसलां लई बहुत ही लाहेवंद मन्नी जांदी है। अनुमानकता अनुसार किसी समय तो सौणी की सारी फसल ही सौण महीने ते निर्भर हुंदी सी अते किसान अड्डियां चुक चुक के इस महीने का राह वेख्या करते सन। जद सौण महीने की लंबी झड़ी लगनी तो लोका आखना शुरू किया सौण की झड़ी ते मोतियां की लड़ी। सावण की रिमझिम नाल सब दरखत ते घा बूटे हरे भरे हो उठते। बारिश नाल सारी बनस्पति झूम उठती ते वे महसूस हुंदा जिवें कुदरत राणी हरे कचूर रंग की पोशाक पा के मुस्कुरा रही होवे। इस अलौकिक ते अजब नज़ारे नूं वेख के समुची लुकाई आप मुहारे ही शिंगारी जांदी। गुरुआं पीरां तो अलावा कई प्रसिद्ध लेखकां ने भी सावण महीने का जिक्र अपनी रचनावां विच कीता है। इन्हां लेखकां द्वारा रचित कई नज़मां ते गीत लोक गीतां दी पदवी धारण कर चुके हन। जिवें भाई वीर सिंह अपनी सावण कविता राहीं संबोधित होंदे लिखदे हन कि चढ़िया सावण महीना सईयां पींगा ने पाईयां शूलां वजण कलेजे छिक्की मंजी ते पईयां उमड़ उमड़ के बदल आया कणी कणी वस जाना भरिया त्रिंजन डार कूंजा दी सबना ने उड जाना। भाई वीर सिंह तो अलावा प्रोफेसर मोहन सिंह अमृता प्रीतम दविंदर सत्यार्थी ते धनी राम चार्तिक आदि बहु लेखकां ने अपनी रचनावां राही सौण दे महीने बारे जो चर्चा कीती ओ लोक बोली जां लोक गीत बन गई। उदाहरण वजो धनी राम चार्तिक दी कविता विचले एक टप्पा जिस विच सौण महीने नाल मुटियार दे मोह नूं इंज प्रकट करदे हन। बालम वार ने त्यारे दे जा सौण दे दिन उधारे। सावण महीने दौरान जिथे हर नौजवान दिल शायरी करन लग जांदा है उत्थे बुजुर्गां नूं भी सावण महीने वगदियां सिलियां सिलियां हवावां अपना अतीत चेते करवा जांदियां हन। बरसात दियां फुहारां नाल खीवे बच्चे इस मौसम दी खुमारी तो अणगोले नहीं रहिंदे। ओह भी गलियां विच टोलियां बना के कहिंदे हन कालियां इट्टां काले रोड मीं बरसा दे जोर जोर रब्बा रब्बा मीं बरसा साडी कोठी दाणे पा। सौण महीने रुमकदियां सिलियां ठंडियां हवावां अते छम छम पैंदी बरसात कारण मौसम इन्ना सुहावना हो जांदा है कि हर कोई इस मौसम दा आनंद माणदा है। कुछ लोग गीत संगीत राहीं ते कुछ वरदे मीह दौरान पकवान बना के इस मौसम दा आनंद माणदे हन। पंजाब दे घरां विच सावण दा सारा महीना ही उस्तत भरिया मनिया जांदा है। अक्सर लोग अपने घरां विच खीर पूड़े बना के खांदे ने। इत्थों तक कि इस संबंधी पंजाबी विच एक खाण भी बहुत प्रचलित है सावण खीर ना खा दिया क्यों जम्मियो अपराधिया। सावण महीने नाल ही शुरू हो जांदियां हन तीयां जिसनू तीज दा त्यौहार भी कहा जांदा है। देश दे कुछ भागां विच तीयां नू शिव ते पार्वती दे मिलन नाल जोड़िया जांदा है। कई थाईं तीज दे त्यौहार नू हरियावल तीयां दे नाल नाल जाणिया जांदा है। भावें भारत दे हर सूबे विच इस महीने नू मनाया जांदा है पर पंजाब ते इस दे गुआंढी सूबे हरियाणा अते राजस्थान विच इस नू मनाउण दा वक्खरा ही ढंग है। मुटियारां लई इस त्यौहार दी अपनी खास महत्ता है। सौण शुरू हुंदे ही पंजाब अंदर नवियां व्याहियां कुड़ियां नूं तीयां दे संधारे भेजण दा सिलसिला शुरू हो जांदा है। पुराने समयां विच जदों आवाजाई दे साधन सीमित सन कुछ कोल ते व्याही कुड़ी भी अपने आप नूं परदेसण समझदी सी पेके परिवार नूं मिलण लई लम्मा समां लग जांदा। सावण दे अनेकां अजिहे गीत मिलदे हन जिन्हां राहीं इह कुड़ियां अपने दूर वसेंदे मापिआं नूं चेते कर गाउंदियां चंद चढ़ गया तीयां दे दिन नेड़े भेजी माए वड्डे वीर नूं। अते जदों किसी कुड़ी दा वीर उसदी भाबों नाल संधारा लैके उसदे घर जांदा तां भैण अपनी अथाह खुशी नूं शब्दां विच बयान करदी गाउंदी सावण आया नहीं सखीए सावण आया इक तां आया मेरी अम्मा दा जाया आ जावे वीरा सस ननाण मुख मोड़िया आ जा वीरा चढ़ उच्ची उडारी आ जा। इस त्यौहार विच जिथे कुड़ियां तीयां लई कई प्रकार दा समान भेजिया जांदा उत्थे नाल ही उन्हां दे सहुरे परिवार नूं खुश करन लई भी कोई कसर नहीं छड्डी जांदी। सौण महीने कुड़ियां एक जगह इकट्ठियां हो के पूड़े ते गुलगुले बना के रल मिल बैठ खाउंदियां ने। तियां विच दरखत उपर पींग पाउणा एक रसम मन्नी जांदी है। जदों तियां वाली जगह उपर कोई नव विहाई कुड़ी जांदी तां निनाणा अते होर कुड़ियां उसदे पेकियां तों लिआंदी गई नवीं पटरी दी मंग करदियां।

0: आओ रल मिलके एक बार फिर तो इस सावण दे महीने दा आनंद माणिए। अपने परिवार मित्रां नूं इकट्ठा करके अपनियां भावनावां नूं इस मीह दी फुहार विच भिज्जण देईए।
1: भैणे सावण आया, इस विषय ते वार्ता तुसीं सुन रहे सी डॉक्टर मनीषा बत्रा तों। सौण दा महीना होवे ते भैण वीर नूं किस तरह अपने पेके पिंड लजाण लई अरजोई कर दीए, आओ सुनते हाँ गायिका सरबजीत ते गुरदीप सिंह दियां आवाज़ां च ये गीत। छलियां छलियां छलियां वीरा मैनू लै चल वे, मेरियां कत्तण सहेलियां कलियां।

सरबजीत ते गुरदीप सिंह दियां आवाज़ां च इह गीत तुसीं सुन रहे सी। सच्चीए भैण भरा जिन्ने मर्जी वड्डे हो जाण, उन्हां दा प्यार हमेशा ही बरकरार रहिंदा है। आस है कि मिट्टी दी महक प्रोग्राम तुहानूं पसंद आया होवेगा। इस दे नाल ही मिट्टी दी महक प्रोग्राम दा समां हुण खत्म हुंदा है। हुण शमिंदर कलेर नूं इजाज़त दिओ।

अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कल ये निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमा 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमेरिकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया है और अमेरिकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले दो दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की आधिकारिक संख्या बढ़कर 75 हो गई है। अकेले शिवसागर जिले से कल 7 और मौतें दर्ज की गईं। ऊपरी असम के प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और अधिकतर क्षेत्रों से बाढ़ का पानी उतर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बाढ़ से संबंधित घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए 4 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। इन्होंने स्कॉट्स काउन में समय निकाला और ऑस्ट्रेलिया के कोई रॉबिन्सन के बाद दूसरे स्थान पर रहे। इसके अतिरिक्त हरजिंदर कौर ने भी महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ग्लासगो में चल रही स्पर्धाओं में भारत के कुल पदकों की संख्या 12 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा आज मनाई जा रही है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि गुरु केवल ज्ञान प्रदान ही नहीं बल्कि अपने शिष्यों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और उन्हें नेक विचारों और सद्गुणों से परिपूर्ण बनाते हैं। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से आग्रह किया कि वो अपने आदर्शों को अपने जीवन की शक्ति का स्रोत बनाएं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्मस्थान पर किया जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: to win a medal in the men's event, claiming a silver. And that's the end of this news bulletin.
1: 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर की घड़ी में वक्त हुआ है 10:10 और ठीक 15 सेकंड। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद।

जी हाँ, सामने ये कौन आया जी? बिल्कुल, हम आए आपके साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त शोभा शर्मा। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार और आपके अपने कार्यक्रम आपकी पसंद में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और सामने मुझे यूँ कहें कि बहुत सारे मैसेजेस आपके आ रखे हुए हैं और जो वाकई में दिल में हलचल मचाए रखे हुए हैं। चलिए, बिल्कुल मैसेजेस की तैयारी हम करके बैठे।

लेने वाले हैं आपके कार्यक्रम आपकी पसंद में, पर कुछ और श्रोता है जो हमारे को मैसेजेस भेजना चाहते हैं, तो आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल आईडी है iprradiodelhi@gmail.com, एक बार फिर दोहरा दें, iprradiodelhi@gmail.com। तो और भी संदेश हम ज़रूर शामिल करना चाहेंगे नए श्रोताओं को, तो भेज सकते हैं आप हमें इस ईमेल आईडी पर। तो दोस्तों, मैं ये सोच रही थी कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में ना कभी कभी काम का दबाव, कभी जिम्मेदारियों का बोझ, तो कभी कभी छोटी बातें भी हमारे मूड को प्रभावित कर देती हैं, पूरा उसका प्रभाव असर होता है हम पर। लेकिन हर इंसान के पास अपने मन को हल्का करने और मुस्कुराने का कोई ना कोई तरीका तो ज़रूर होता है, ढूंढने पर वो मिल ही जाता है। कोई अपने पसंदीदा गीत सुनता है, कोई दोस्तों से बात करता है, और कोई परिवार के साथ समय बिताता है, तो कोई सुबह की सैर करता है या शाम की सैर, किताबें पढ़ता है या बागवानी करता है, या एक कप चाय के साथ भी अपने मन को तरोताज़ा कर लेता है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप अपना मूड कैसे फ्रेश करते हैं? कभी कभी होता है ना, बहुत सारी उदासी आ जाती है और कुछ समझ नहीं आता, तो आप किस तरह से उस चीज़ से हटते हैं? क्योंकि जब जो चीज़ होनी है वो तो होनी है, परंतु अपना मूड तो नहीं ख़राब रख सकते ना, क्योंकि नहीं तो दूसरे पर असर डालेगा। तो ज़रूर हमें बताइएगा कि आप पता आपकी राय अनुभव है ना, हो सकता है कि जो तरीका आपका है किसी और श्रोता के चेहरे पर मुस्कान ले आए। तो ज़रूर हमें अनुभव भी शेयर कीजिएगा अपने कि किस तरह से अपने मूड को फ्रेश करते हैं। वाकई में गीत तो आपके पसंद के होंगे होंगे और कुछ अच्छी बातें भी हो जाएंगी। तो चलिए संदेश ले लेते हैं और ज़रूर हम आपके जवाबों की भी कहेंगे कि प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो संदेश हमें आया है ये ले लेते हैं। ये हमें आया है, ये इनका संदेश है हरजिंदर सिंह भाटिया का। इन्होंने मतलब मेल भेजा है पर अपना संदेश नहीं भेजा है। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये आया हरियाणा झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया का, और हमारे साथ जुड़े हैं। यहाँ इनके संदेश को पूरी तरह से लिया गया। ये हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया जी। और अगला संदेश हमें आया है, वो आया है हमें चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा का। और ये जो संदेश है ये हमें आया है व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष का। ये लिखते हैं कि शोभा शर्मा जी, आजकल आप मेरा मेल क्यों नहीं शामिल करते? आप तो ऐसी ना थी दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह से मेल आते हैं हम सभी के मेल शामिल करने की कोशिश करते हैं। अगला संदेश हमें आया है चौटाला हरियाणा से हैं दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा जी का संदेश। ये लिखते हैं, मैंने जो गाने के बोल सुने उसी से ही सोच कर उठा था कि यही गाना होना चाहिए। बहुत शुक्रिया दोस्त। अगला जो संदेश है वो ले लेते हैं। वो हमें आया है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार का। ये लिख रहे हैं कि हम भी प्रोग्राम सुन रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं, बड़ी शिद्दत से लाइव आपको सुन रहे हैं और बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बेहतरीन नगमे आप सुनवा रहे हैं। दोस्त अभी तो हमने एक ही गीत सुना है, हमें भी अपनी महफिल में शामिल कीजिएगा। तो दोस्त आप शामिल हो गए। और अगला संदेश ले लेते हैं। यह आया है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष का। जवाहर नगर दुर्ग से हमारे साथ जुड़े हैं आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े जी। और ये हैं काशी निवासी बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रमभांडे, भारती रमभांडे, जाह्नवी रमभांडे, वैष्णवी के साथ हर्षल रमभांडे जी। और अगला संदेश हमें आया है, ये हमारे साथ जुड़े हैं, ये तो श्रोताओं का ले चुके हैं, अगला मेल ले लेते हैं। ये हमारे साथ जुड़े हैं मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। और ये संदेश सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और उनके साथ। कालका से हमारे साथ जुड़े हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। ये लिखते हैं, शोभा जी, ज़िंदगी की भागदौड़ और काम के बोझ के बीच मन को शांत और हल्का करना बहुत ज़रूरी होता है। हर व्यक्ति अपने तनाव को दूर करने और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए अलग अलग रास्ते चुनता है। कुछ लोग संगीत सुनकर या मनोरंजन के माध्यम से अपना दिल बहलाते हैं, तो कुछ किताबें पढ़कर ज्ञान और शांति प्राप्त करते हैं। आपके द्वारा प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम भी श्रोताओं के जीवन के इस तनाव को कम करने, उन्हें सुकून पहुंचाने में

एक अहम भूमिका निभाते हैं। शुक्रिया दोस्त। और वाकई में गीत सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि एक तरह से मन में शांति आती है, सुकून मिलता है, और हम जरा जो स्ट्रेस में गुजर रहे होते हैं या कभी हमारा मूड ठीक नहीं होता है, उससे हम थोड़ा हट कर सोचने लगते हैं। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये जो संदेश हमें आया है फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से, ये हैं, इन्होंने गीत की फरमाइश भेजी हुई है, और ये मतलब हाँ यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि फरुखाबाद साहबगंज और यूपी से सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी चौरसिया, संजू चौरसिया, लल्ला चौरसिया, पवन गौड़ और योगेंद्र नायक कासगंज जी, और इनके साथ बल्केश्वर कॉलोनी आगरा से जुड़े हैं श्रीमती सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया, वीर और अबीर। नवाबगंज कानपुर से हैं श्रीमती सुजाता चौरसिया, पंकज चौरसिया, पीहू और दिया चौरसिया। चलिए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये एक प्यारा सा गीत।

0: बहुत ही प्यारा गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद में, आपकी ही पसंद का ये गीत। श्रोताओं, हमने आपको सुनवाया और बहुत सारे मैसेजेस और मेल भी हमारे पास हैं, पर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं ये संदेश।
1: पार्टी चाहिए,
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद में, और मैसेजेस बिल्कुल बहुत सारे हम लोगों के पास आ चुके हैं, तो ले लेते हैं हम संदेश कार्यक्रम में। ये जो संदेश आया है सल्लार पहलगाम कश्मीर से हैं, पीरज़ादा मिराज जी का। और अगला जो संदेश हमें आया है शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से, संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे का। और अगला जो हमें संदेश हमें आया है ये है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहाँ का। और हमारे साथ जुड़े हैं मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से श्री सुधाकर राजा जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजा जाधव देशमुख, कुमार संचित वयाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख, हर्षिता देशमुख जी। ये लिखते हैं हमें कभी तो टेंशन में रहते हैं, पर हम जब भी टेंशन में रहते हैं तो आकाशवाणी के प्रोग्राम सुन लेते हैं और प्रोग्राम सुनने से टेंशन दूर हो जाता है। शुक्रिया दोस्त, वाकई बहुत खुशी होती है कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमारे जो कार्यक्रम आपका मूड फ्रेश कर देते हैं। चलिए अगला जो संदेश है वो ले लेते हैं। यह आया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का, शांति नगर सोनीपत से। ये लिखते हैं हमारे अनुरोध पर ये मतलब गीत की फरमाइश भेजिए, बिल्कुल दोस्त पूरी करेंगे। और लिखते हैं कि आपका दिन शुभ और सुखद हो। धन्यवाद दोस्त, और आपका भी सुख कह के खुशी से भरा पूरा दिन हो। और अगला संदेश ले लेते हैं। यह आया है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, रोम प्रकाश मल्होत्रा का। और ये हमारे साथ जुड़े हैं आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा। और क्या लिख रहे हैं कि हमें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है दोस्त, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है हमारे साथ दाऊद सराय सहारनपुर।

से जुड़े हैं अनवर सावरी, शन्नो सावरी, मुदस्सर सावरी, मुजाक्किर सावरी, जरीफ अंसारी, और श्रोता रघुवी नगर से हमारे से जुड़े हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नयाब और लड्डू। ये लिखते हैं कि किसी अच्छे दोस्त या अपने करीबी इंसान से खुलकर बात करें, कई बार दिल की बात कह देने से मन हल्का हो जाता है। बहुत अच्छी बात कही। जो भी आपका विश्वसनीय दोस्त हो और जो आपकी बात सुन सकता हो, बिल्कुल उसके साथ शेयर करें और आप हल्का महसूस करेंगे। बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। अगला जो संदेश आया है वो हमें आया है भाभी निमगांव शिवगांव से, श्रीराम गोंदली, उषा गोंदली का। और ये संदेश हमें आया कोहका भिलाई से, उत्तम सिंह जंगेल, मोरज जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल का। साथ में है इनके साथ धुमधमा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, औशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल। ये लिखते हैं कि हम अपने मूड ठीक करने के लिए रेडियो में पुराने गीत सुनते हैं, जब दिल ही टूट गया टाइप, कुछ इस तरह के गीत। और पुरातत्व हमें सिखाता है कि समय बदलता है लेकिन संस्कृति और सभ्यता की पहचान अमर रहती है। बहुत अच्छा संदेश दोस्त आपका। और ये है अगला संदेश शिडरी से, शिंडी से, साइकी शिंडी से, सुरेश मालोदे और वर्षा, श्रद्धा और मानसिका। और अगला संदेश ले लेते हैं, ये आया है जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित का। और ये संदेश हमें आया है मुलापुर दाखा से, राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन और गोटाना जैन का। ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसौलिया जी। और ये संदेश हमें आया अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक का। तो आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, यादों की बारात फिल्म से।

0: बाजू, लाल कपड़ों वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला। बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4

आज भी उतना लोकप्रिय है। राहुल देवर्मन के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार, आशा भोसले और आरडी वर्मन की आवाज़ों ने इस गीत को एक अलग ही पहचान दी और हमारे श्रोताओं की जो पसंद है ना, वो भी तो लाजवाब है। फिलहाल बढ़ते हैं अपने संदेशों की ओर, हम अपने श्रोताओं के संदेश ले लेते हैं। ये संदेश हमें आया है लेवाई छत्तीसगढ़ से, गुलाब दास माणिकपुरी, राजा दास माणिकपुरी और रानी माणिकपुरी का। ये लिखते हैं, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लिखते हैं कि हम अपना मूड सही बनाने के लिए हमारे सबसे अच्छे दोस्त रेडियो से जुड़ जाते हैं और सब ठीक हो जाता है। गीत संगीत में ये जादू है, वाकई दोस्त गीत संगीत में तो अपना ही एक जादू है जो किसी का भी मूड फ्रेश कर देता है। ग्राम पंजौनिया, जिला जलौन, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और लौकिक चंसोलिया जी। ये संदेश में आया है बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया का। और हमारे साथ अगले जो श्रोता है वो है नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन प्रिंस डाक बाबू, बेगम इशरत इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिच वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा और कलेर बिहार से जुड़े हैं हमारे साथ मोहम्मद आसिफ खान, निकहत परवीन जी। और अगला संदेश ले लेते हैं। ये हमें संदेश आया है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से, राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी का। और अगले संदेश की ओर रुख करते हैं। ये हमें आया है, ये मॉडल टाउन करनाल से है हमारे साथ जुड़े सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर, जग्गी दुआ, शशि बालाजी। लिखते हैं राम राम। तो दोस्त आपको भी राम राम। और ये अगला संदेश जो हमारे साथ जो श्रोता जुड़े उनका आया है, गांव कलमंडी खुर्द जिला झालवाड़ राजस्थान से, अनूप सिंह नथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पवार, भानु प्रताप सिंह पवार और समस्त राजपूताना परिवार की ओर से ये संदेश। और ये ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई, हीरा मनन शिंडे और प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गोंडाने जी। और अगला संदेश ले लेते हैं। ये हमें आया है बुल्डाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से, सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमेध कुमार दामोदर और साधना पवल पाटिल का। दतरंगी भाटापुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा जी। और अगला संदेश ले लेते हैं। हमारा अगला जो संदेश है वो हमें आया है मुंगी सापुर कानपुर देहात से है, रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया और इन्हें समस्त कठेरिया परिवार की ओर से यह संदेश भेजा है। और लिखते हैं कि सदा खुश रहो और खुशियां बांटो, यही हमारी कामना है। सही में खुशियां बांटना भी बहुत बड़ी बात है और खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है, दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। आप खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुशियां दे सकोगे। अगला जो संदेश है वो हमारे साथ है आया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर, मलकापुर महाराष्ट्र से इनके साथ जुड़े हैं सोपान तायडे, नारायण इंगले और आशीष मोहरकर। और ये हैं कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा जी का संदेश। और उत्तम नगर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी। अगला संदेश ले लेते हैं। ये हमारे को आया है, इन्होंने संदेश हाँ यहाँ भेजा है, बहुत ये संदेश हम ले चुके हैं तो अगला संदेश ले लेते हैं दोस्त। और ये हमें आया है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन चंडीगढ़ से इनके साथ जुड़े हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। ये लिखते हैं कि हम भी रेगुलर कनेक्ट हैं, अभी तक नो रिस्पॉन्स। अब जब हम ज़्यादा उदास होते हैं तो सारा दिन गीत गाते हैं, गुनगुनाते रहते हैं और रेडियो सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है दोस्त। और अभी रिस्पांस मिल गया ना आपको तो अगला संदेश ले लेते हैं। ये हमें आया है जनकपुरी सहारनपुर से, डॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पॉल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो का। तो आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा।

पसंद, और आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त शोभा शर्मा। तो एक बार फिर से स्वागत है और मेरा प्यार भरा नमस्कार भी आपके लिए। चलिए संदेशों के रुख करते हैं, जल्दी जल्दी ये संदेश ले लेते हैं। यह आया है अगला, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलापुर, उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून का ये संदेश। और ये श्रीनगर से साहिल दर से है, श्रीनगर से हैं साहिल दर और इनके साथ हैं उर्फी जान जी। अगला संदेश ले लेते हैं, ये आया है नज़फ़गढ़ जय बिहार से, फारूक, शाहरुख, शहनाज, शबनम और चीकू का। और लिख रहे हैं, अपने पसंदीदा शौक़ में समय दें, जैसे किताब पढ़ना, बागवानी लिखना या कोई रचनात्मक काम। बहुत अच्छी बात की दोस्त आपने। और अगला संदेश ले लेते हैं, ये आया है सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग का। और हमारे साथ जुड़े हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी। और जवाहरनगर उदयपुर से हैं बाबू भाई, भारती देवी जी का ये संदेश। और अगला संदेश हमें आया है महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और मिथिल नाचानी, और साथ में इनके हैं तिलक तंबोली। अनूपगढ़ राजस्थान से जुड़े हैं मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और डॉक्टर सुनीता जनागल। तो आपकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा संगीत।

संदेशों की ओर रुख कर लेते हैं, जल्दी जल्दी संदेश ले रहे हैं क्योंकि घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम समाप्त होने वाला है आज का। तो ये जो संदेश हमें आया है ये है मेरठ से अनिल जैन साहिब का। संयम जैन है इनके साथ, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन जी का संदेश। और अगले जो संदेश जो श्रोता है वो है दतरंगी से हमारे जुड़े भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। और ये संदेश हमें आया है जगदीश धाकड़ नायमा और श्रीमती रंजू बाई धाकड़ जी, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़ का, मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी से। और अगला संदेश हमें आया है, ये हमें आया है पुरानी भिलाई 3 चरौदा छत्तीसगढ़ से है, डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदून सिद्दीकी, जिशान अहमद सिद्दीकी, शहनवाज अहमद सिद्दीकी और सिद्दीकी परिवार की ओर से ये संदेश। और अगला जो संदेश हमें आया है ये है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह जी का ये संदेश। और अगला संदेश ले लेते हैं, यह आया है गाँव परासी हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी और पुष्पेंद्र सिंह डुड्डी का। और ये प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। और अगला संदेश हमें महरारा दरवाज़ा एटा से है नवीन हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी और रशीद वारसी का। और इनके साथ किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुड़े हैं हमारे साथ जुबेर अली खां, सबीहा अंजुम खां। और घड़ी की जो सुइयां हैं पूरा इशारा कर रही है कि कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। तो मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, नमस्कार, पर जाइएगा कहीं नहीं, एक प्यारा सा गीत आपके इंतज़ार में। तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और मुझे यानी शोभा को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। अब से कुछ ही पलों में अब आप सुनेंगे समाचार।
1: साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा शुरू होगी। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10

0: करोड़ तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। कल कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया कानून देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने, उससे जुड़ी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और मछुआरों की आजीविका में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए 1,54,57,00,000 रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क तथा उच्च स्तर की तैयारी में हैं। ओडिशा में लगातार हो रही बारिश से राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। इसके कारण भद्रक जिला सबसे अधिक प्रभावित है। अधिकारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य तेज कर दिए हैं। उधर असम में बाढ़ से मरने वालों की आधिकारिक संख्या बढ़कर 75 हो गई है। शिवसागर जिले में ही कल 7 और लोगों की मौत हुई। ऊपरी असम के जिलों में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और अधिकतर क्षेत्रों में बाढ़ का पानी उतर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा ने बाढ़ से संबंधित घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए 4,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक तेज वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए अगले 2 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वन कर्मियों और वैज्ञानिकों की सराहना की है। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि विश्व के 75% बाघ भारत में हैं। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा आज मनाई जा रही है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries to the government at his residence yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed the future action agenda of ministries and departments dealing with finance and economy, commerce and industry, and technology sectors. The meeting focused on

अभी आप सुन रहे थे ललिता बंशा की आवाज़ में ये गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत अनुराधा पौडवाल और अनवर की आवाज़ में।

इसी के साथ आज का सबरस कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम सुर मंजरी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विदुषी शाश्वती मंडल का गायन, राग है जोगिया। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी के अंतर्गत आज आप सुन रहे थे विदुषी शाश्वती मंडल का गायन, राग था जोगिया। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर 12 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और ठीक उसके बाद अंग्रेज़ी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। तो आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने पर भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह को बधाई दी। बाद में अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। श्री बिरला ने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी सदस्य जानबूझकर प्रश्नकाल में बाधा डाल रहे हैं जो उचित नहीं है।
2: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए, आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
1: उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होते ही कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। कोयला, खान और इस्पात पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने और सदन में विभिन्न राजनीतिक मुद्दे उठाने का आरोप लगाया है।
3: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रहे हैं और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। इतना अच्छा बिल लाया है और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी, इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
1: भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण ने दिल्ली स्थित एक निजी होटल का लाइसेंस खाद्य नियमों का उल्लंघन करने के कारण निलंबित कर दिया है। इनमें खराब हो चुके खाना पकाने के तेल का उपयोग करना और भोजन की खराब गुणवत्ता शामिल है। सोशल मीडिया पोस्ट में खाद्य सुरक्षा नियामक ने कहा कि जन स्वास्थ्य के हित में लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए निलंबित किया जाता है और खाद्य व्यवसाय संचालक को सभी खाद्य संबंधी गतिविधियां तुरंत बंद करनी होगी। खाद्य सुरक्षा नियामक ने सभी नियमों का पालन करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया है, अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि MV अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। आज वैश्विक बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% से अधिक हिस्सा भारत में स्थित है। उन्होंने कहा कि भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 849 अंक बढ़कर 77,615 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Both the Houses of Parliament have been adjourned till 12 noon following opposition uproar over alleged police action during students' protest over NEET issue. Lok Sabha Speaker Om Birla alleged that some opposition members are deliberately disrupting the question hour, which is not appropriate. He added that obstructing the proceedings of the House in a planned manner is not in accordance with parliamentary traditions. The Rajya Sabha was also adjourned till 12 noon over the same issue. When the House assembled at 11 a.m., several union ministers laid the paper on the table of the House. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today alleged that Congress members did not speak on the provisions of the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 during the debate and raised unrelated political issues.
5: Rahul Gandhi is using all kind of undemocratic languages, which is not in the setting for correct discourse in parliamentary democracy.

आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।

0: घर आंगन।
1: कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ रेनू। तो कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर, यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी, यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। तो शुरू करते हैं अपनी बातों मुलाकातों का सिलसिला। हज़ार बर्क गिरे, लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले हैं।

दिल अपना और प्रीत पराई, इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। और आज है आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि, जिसे मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा के रूप में। तो सबसे पहले आप सबको इस पावन दिन की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। जीवन को दिशा देने वाला आज का ये दिन वेदों के संकलनकर्ता और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और बौद्ध धर्म के अनुसार आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, और योग परंपरा के अनुसार इसी दिन शिव ने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान देकर अपने गुरु का पद संभाला था। ये त्यौहार उन गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का भी है, जिन्होंने हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर उसे ज्ञान के प्रकाश से भर दिया। हमारी संस्कृति और परंपरा में जीवन में ज्ञान, अनुशासन और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। इसीलिए तो हमारे प्राचीन ग्रंथ स्कंद पुराण की गुरु गीता में कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरु गुरुवे नमः।

हमारे गुरु भी हमारे माता पिता के समान होते हैं और हमारे माता पिता भी गुरु तुल्य होते हैं, आदरणीय होते हैं, क्योंकि जीवन की शुरुआत हम इन्हीं के साथ, इन्हीं के सानिध्य में करते हैं। तो सही गलत का फैसला हमारा करना यही हमें सिखाते हैं। तो ये गीत आपने सुना, फिल्म थी मैं चुप रहूंगी और लता मंगेशकर की आवाज़ थी। इसी के साथ जो हम अपने कार्यक्रम में दिन विशेष की बात करते हैं, तो दिन विशेष में आज बता दें कि आज है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, जो माँ दुर्गा का वाहन है और शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक भी है और है हमारा राष्ट्रीय पशु। आज के दिन को मनाने का उद्देश्य बाघ संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने और बाघों के प्राकृतिक आवास का प्रबंधन सुनिश्चित करना है, ताकि बाघों का और हमारा साथ लंबे समय तक यूं ही बना रहे, जिससे हमारी भावी पीढ़ियाँ जंगल की इस शानदार प्रजाति को देख सकें। और जब बात ये हो दिन विशेष की हो ही रही है, तो आजकल भाई सबसे ज़रूरी बात जो राष्ट्रमंडल खेलों की बात अगर हम करते हैं, क्योंकि आप सबको पता ही है कि आजकल स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में ये कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है और इसमें अब बड़ी खुशी की बात है कि बहुत शानदार प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं। तो बारिश के मौसम में पदकों की बारिश भी लगातार जारी है और कुल पदकों की संख्या अब हमारी 12 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 3 कांस्य पदक हैं। 40 वर्ष की शर्मिला धनखड़ जो हैं, 2 बेटियों की माँ भी हैं, उन्होंने ये सफलता विपरीत पारिवारिक और आर्थिक परिस्थितियों के बाद अर्जित की है और इन्होंने गोल्ड मेडल दरअसल इन्होंने अर्जित किया है और ये पैरा एथलेटिक्स इवेंट के सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके ये मेडल इन्होंने जीता है। और इसी तरह से ज्ञानेश्वरी यादव हैं, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत को रजत पदक दिलाया है, और बिंदिया रानी देवी हैं, शिल्पा शायला भी हैं, जिन्होंने अपने इवेंट में दमदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके साथ ही आज एक हरजिंदर कौर जो हैं वो एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई हैं, वेट लिफ्टिंग में रजत पदक इन्होंने जीता है। तो हमारे कार्यक्रम की ओर से हम इन सभी एथलीट्स को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, इसी तरह खेलते रहिए और देश का मान बढ़ाते रहिए। और अब समय है, जैसा कि आप लोगों को इंतज़ार होगा, अब समय है आज का सवाल पूछने का। तो आपको बताना है कि हिंदी अंग्रेज़ी के अलावा आप अपने घर में किस भाषा में बात करते हैं, यानी आपकी मातृभाषा क्या है। तो अपने जवाब हमें लिख के भेजिए, वही हमारा एड्रेस है fmgoldga@gmail.com। तो हमें रहेगा आपके उत्तर का इंतज़ार।

अपना देश, इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। और दुनिया में कुछ लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिन्हें दुनिया उनके जाने के बाद भी याद करती है, सम्मान देती है, उनके कार्यों से प्रेरित होती है। ऐसे ही दो महान विभूतियों को आज हम याद कर रहे हैं जिन्हें भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। उनमें से एक हैं अरुणा आसफ अली, निर्भीक निडर स्वतंत्रता सेनानी और भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका, जिन्हें ओल्ड ग्रैंड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान पर तिरंगा फहराने जैसे साहसपूर्ण कार्य के लिए उन्हें हमेशा याद करता किया जाता रहेगा। और इसी तरह से जब देश की प्रगति और उन्नति की बात होगी तो उसमें JRD टाटा की अग्रणी भूमिका की बात भी ज़रूर होगी। जमशेद रतनजी दादा भाई टाटा यानी JRD टाटा की आज जन्म जयंती है। वे देश के पहले लाइसेंसी पायलट थे और साथ ही देश की पहली कमर्शियल एयरलाइंस की नींव रखने वाले भी। वे पहले उद्योगपति थे, इस्पात, इंजीनियरिंग, होटल, वायुयान, अन्य उद्योगों के माध्यम से उन्होंने देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा उच्च नैतिक मानकों का पालन किया जिसमें ईमानदारी, निष्ठा और पारदर्शिता भी थी। तो आज हम सब अपने कार्यक्रम के माध्यम से इन महान हस्तियों को याद कर रहे हैं और उनके प्रति कृतज्ञ हैं। तो इसी के साथ तो मैं अपना सवाल फिर से आप लोगों को दोहरा देती हूँ कि आज का हमारा सवाल ये है कि आपको बताना है कि आप अपने घर में हिंदी अंग्रेज़ी के अलावा कौन सी और भाषा में बात करते हैं। गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी, मराठी, कुछ भी, जो भी आप अपने घर में अपने लोगों से बात करने में बोलते हैं उस भाषा के बारे में हमें बता दीजिए। तो हमारा मेल आईडी तो आपको पता ही है, fmgoldga@gmail.com। तो हमें है इंतज़ार आपके जवाबों का।

वंदना फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। और देखिए, जो सवाल हमने आपसे पूछा था, आपके मेल्स भी आने शुरू हो गए हैं, तो हम तक ये जो मेल एक पहुंचा है, गौरी शंकर नागलोई जी हैं, ये लिखते हैं कि राम राम। तो राम राम गौरी शंकर जी आपको भी।

थोड़े दूर पे भाषा जो है हमारी बदल जाती है, बोलियां बदल जाती हैं, और लेकिन यही तो खूबसूरती है हमारे देश की, विविधता है इसी में। और इसके अलावा हमारे पास एक और मैसेज आया है, ये है महेश अग्रवाल जी हैं, तो ये कह रहे हैं कि जो है घर में तो आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन हम लोग जो है अपने घर में अपनी ही भाषा में बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है, अपने लोगों से जब अपने में और हरियाणवी में बात करते हैं तो ठीक है। महेश अग्रवाल जी बहादुरगढ़ से आप लिख रहे हैं, हरियाणा से, तो बिल्कुल हरियाणवी आपकी मातृभाषा है और आप अपने लोगों से अपने घर में हरियाणवी में बात करते हैं, तो ये बहुत ही अपनापन आपको महसूस होता होगा, सभी को महसूस होता है जब लोग अपने घर में अपने लोगों से जब तक अपनी भाषा में बात ना कर लें तो वो अपनत्व नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है, और भाषा तो हमारी जो है वो कहा जाए कि शुरुआत में जिस भाषा में हम सीखते हैं, बच्चा सीखता है वो उससे उसकी कल्पनाएं और उसकी आत्मविश्वास इसीलिए बढ़ता है क्योंकि उस भाषा को वो अच्छी तरह जान जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जैसे कहा है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल। तो ही को सूल भी उसी से मिटता है, मतलब यानी हमें सुकून भी देता है और इसी यहीं पर हमारी उन्नति का मार्ग भी है। और इसी तरह से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बात करना चाहूँगी खुर्जा की। तो खुर्जा जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले के खुर्जा शहर में प्राचीन और सुंदर सिरेमिक यानी चिकनी मिट्टी के बर्तन पूरी दुनिया में इसे इसीलिए जाना जाता है, इसीलिए इसे सिरेमिक सिटी भी कहा जाता है। यहाँ बनते हैं मिट्टी के कलश, त्योहारों के दिए, रोज़मर्रा के खाने पीने के बर्तन, सजावटी वस्तुएँ, फूलदान, जार, सो पीस और देवी देवताओं की मूर्तियाँ और भी कई सारे ढेरों सामान यहाँ पे बनते हैं जो किसी भी घर की शोभा को बढ़ा सकते हैं। और खुर्जा की ये कला लगभग 600 साल पुरानी है। दिल्ली के पास बसे प्रवासी कुम्हारों ने फारसी और मध्य एशियाई तकनीक को भारतीय डिजाइन के साथ मिलाकर इस कला को विकसित किया था। इन चीज़ों में हाथ से की गई जो नक्काशी होती है, फूल पत्तियां और लताएं इतनी खूबसूरत होती हैं कि देखते ही बनती हैं। और परंपरागत रूप से ये हल्के सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर नीले या भूरे रंग से बनाए जाते हैं। इनमें उपयोग होने वाला रंग ग्लेज लेड फ्री फूड ग्रेड होते हैं जिससे कि माइक्रोवेव और सेहत के लिए सुरक्षित होते हैं। ये बर्तन चमकदार होने के साथ साथ काफ़ी मजबूत भी होते हैं क्योंकि ये बर्तन हाथ से तैयार किए जाते हैं। तो भाई अगर ये उम्मीद करें आप कि एक जैसे दो बर्तन मिल जाएंगे तो ये नहीं होता, एक जैसे दो बर्तन नहीं मिलते। और अगर आप इन चीज़ों के शौकीन हैं तो एक बार दिल्ली से मात्र 85 किलोमीटर दूर इस छोटे से शहर में एक बार ज़रूर जाइए। और सिरेमिक पॉटरी के साथ साथ मैं बता दूं कि यहाँ पर मिलती है 115 साल पुरानी मशहूर मिठाई खुरचन, तो इसे भी लेना ज़रूर, मतलब ज़रूर लेना चाहिए आपको। और ये मिठाई ना दूध को धीमी आंच में उबालकर मलाई की परतें जमाकर बनाई जाती है, तो इस मिठाई का स्वाद भी वहाँ पर जा करके आप ज़रूर लीजिएगा।

आई मिलन की बेला। इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म आवाज़ थी लता मंगेशकर और रफ़ी की। और इसी के साथ देखिए आपके मेल्स हमारे पास आते जा रहे हैं, और ये मेल है हमारे पास जो सुदर्शन मुखी का। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी ये लिख रहे हैं शांति नगर सोनीपत से। तो आप लिख रहे हैं कि मैं अपने घर में हिंदी अंग्रेज़ी के अलावा पंजाबी और हरियाणवी में बात हम लोग करते हैं। तो बिल्कुल ठीक है सुदर्शन जी, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पंजाबी में, यानी ये अभी आपकी मातृभाषा होगी और इसे आप अच्छी तरह जानते होंगे, इसमें बात करते हैं। तो देखिए पंजाबी से याद आया मुझे, तो पंजाबी में बहुत मशहूर लेखिका थी अमृता प्रीतम जी, उनकी कितनी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। कृष्णा सोपती जी हैं वो लिखती थी, तो उनकी एक कविता की एक लाइन मुझे याद है, मैं तेनू फिर मिलांगी कब किथे पता नहीं। तो बहुत अच्छी मीठी लैंग्वेज है ये भी। और उसके बाद आप लिख रहे हैं, ये हैं अग्रसेन यादव जी। तो अग्रसेन यादव जी भी लिख रहे हैं कि इन्हें भी अपने घर में और हम लोग आपस में सब अवधी में बात करते हैं, भोजपुरी में बात करते हैं। और देखिए अवधी और भोजपुरी का नाम आपने लिया, तो देखिए ना भाषा हमें अपने क्षेत्र का की पहचान अपने आप हमसे करा देती है, क्योंकि अवधी और भोजपुरी आपने बताया तो अपने आप जो है इंसान सोच लेता है कि आप अवध क्षेत्र से संबंध रखते होंगे। जैसे कि अवधी बोली जाती है लखनऊ में, अयोध्या में, और भोजपुरी का भी वो पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है वही उसका क्षेत्र है, तो आप जरूर वहाँ से संबंध रखते हैं। और भाषा ना अपने साथ संस्कृति को समेटती है, क्षेत्र को समेटती है, तो भाषा को जिंदा रखना यही बहुत ज़रूरी है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो तभी आगे पहुँच पाएगी जबकि अपने घर में हम उसे अपने लोगों में बोलते रहेंगे, और इससे हमारे बच्चे भी वही चीज़ें सीखेंगे और इस तरह से भाषा जो है वो अपने आप आगे बढ़ती जाएगी। और इसी के साथ ही अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उड़ान यात्री कैफ़े की। यानी कि उड़ान यात्री कैफ़े जो कि आप सुन रहे होंगे कि क्या है ये, तो ये है कैफ़े जो एयरपोर्ट पर मिलते हैं, मिलने वाले महंगे खाने पीने के सामान से आम आदमियों को राहत दिलाने के लिए या हवाई यात्रा को बजट अनुकूल बनाने के उद्देश्य से नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा की गई एक ऐसी सरकारी पहल है जो कि भारतीय हवाई अड्डों पर आम यात्रियों को बेहद कम और किफ़ायती दर पे ये साफ़ सुथरा और भोजन पे जो है वो पेय पदार्थ उपलब्ध कराती है। यहाँ खाने पीने की चीज़ों को फिक्स और कम दाम इसके रखे गए हैं, जैसे कि 10 रुपये की चाय, 10 रुपये की पानी की बोतल, 10 रुपये की कॉफ़ी, 20 रुपये का समोसा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। कम दाम होते तो हैं इसके, लेकिन इसके बावजूद यहाँ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। फिलहाल ये सुविधा कोलकाता, चेन्नई, पुणे, भुवनेश्वर, लखनऊ और अहमदाबाद जैसी चुनिंदा हवाई अड्डों के टर्मिनल क्षेत्रों में ही उपलब्ध कराई गई है। तो ये सुविधा कम बजट में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए तो भाई बहुत लाभप्रद है ही। तो अगली बार जब आप हवाई यात्रा पर जाएं तो उड़ान यात्री कैफ़े की इस सुविधा का उपयोग

जी कदम के निशान बना के चले। और ये गीत अभी आपने सुना ज्वेल थीफ से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। और इसी के साथ आपके मेल्स आते जा रहे हैं हमारे पास, और अभी जो मेल हमें प्राप्त हुआ है वो है कमाईनी जी का, मोती लक्ष्मी नगर से। तो ये लिख रही हैं कि इनका गांव उत्तर प्रदेश में है, वैसे जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ अवधी भाषा में बात करते हैं, और जब वहाँ से लोग आते हैं तो उनसे भी अवधी में बात करते हैं। अपनी मातृभूमि में बात करना एक अलग सी खुशी देता है। बिल्कुल सही कहा आपने कमाईनी जी, बहुत ही खुशी होती है। और जब लोग एकदम से कहीं, आप किसी ऐसी जगह जाएं जहां पे उस क्षेत्र में कोई आपको जानने वाला ना हो, लेकिन एकदम से जब अपनी भाषा वहां सुनाई देती है ना, तो कुछ अपनेपन का एहसास अब बाहर हो जाता है। तो घर में आप बात करती हैं, बहुत अच्छी बात है। यही हमारी चीज़ें जो हैं वो अगली पीढ़ी तक कन्वे होंगी और वो सीखेंगे भाषा को। और इसके साथ ही इदरीस सैफी जी कह रहे हैं कि खुर्जा रास्ते में पड़ता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा है कि किस भाषा में ये बात करते हैं। भाई इदरीस जी, आपने लिखा खुर्जा रास्ते में पड़ता है, बहुत अच्छी बात है, यानी कि

आप खुर्जा जाते रहते हैं और बहुत अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ें आप वहाँ से लाए होंगे, लेकिन अपने कौन सी भाषा में बात करते हैं ये भी लिख दीजिए। और इसके साथ ही नवीन भाटिया मोती नगर से लिख रहे हैं कि ये घर में सिंधी बोलते हैं, तो भाई बहुत ही खूबसूरत भाषा है ये सिंधी और आप बोलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बोलना चाहिए अपने घर में लोगों से, इसी में बात करनी चाहिए। और इसी के साथ कार्यक्रम में अगली बात मैं करना चाहूँगी कि स्वास्थ्य की बात, क्योंकि बरसात का मौसम देखिए चल रहा है और आजकल बरसात के मौसम में डेंगू का खतरा बना रहता है, तो डेंगू संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से होने वाला वायरल बुखार है, जिसमें कि तेज बुखार, हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों में असहनीय दर्द, आँखों में दर्द, शरीर या चेहरे पर लाल रंग के दाने या चकत्ते उभरना, थकान और भूख न लगना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। गंभीर स्थिति में पेट में तेज दर्द, लगातार उल्टियां आना, नाक या मसूड़ों से खून बहना और प्लेटलेट्स का तेजी से गिरना जैसी गंभीर समस्याएं होती हैं। तो अगर इस तरह का कोई लक्षण आप में भी या आपके परिजनों में दिखाई देता है तो इसे साधारण बुखार नहीं समझना चाहिए, बल्कि बिना देर किए आप डॉक्टर से संपर्क करें। और ये बिल्कुल ना करें कि थोड़ी राहत पाने के लिए आप कोई दर्द निवारक दवा लें और एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करें, क्योंकि इसका असर तो इस डेंगू के बुखार में होता नहीं है। और डेंगू से बचा जा सके इसके लिए भी सावधानियां रखनी बहुत ज़रूरी हैं, और ये सावधानियां हैं जैसे कि आप पानी कहीं जमा ना होने दीजिए, क्योंकि देखिए ना, याद रखिए कि डेंगू का मच्छर हमेशा साफ पानी में पनपता है। कूलर, गमले, बाल्टी या छत पर पुराने टायर आदि में पानी इकट्ठा ना होने दें। जितना संभव हो शरीर को ढक कर रखें, फुल आस्तीन के कपड़े पहने और मच्छर भगाने वाली क्रीम का प्रयोग करें, घर के आसपास कीटनाशकों का छिड़काव करें और पानी की टंकियों को हमेशा ढक कर रखें।

ये गीत तभी आपने सुना झुक गया आसमान से, लता मंगेशकर की आवाज़ में। और इसी के साथ ही अब हमारे कार्यक्रम जो है समाप्ति की ओर है, तो भाई मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपने श्रोताओं से क्योंकि मैं इसके इससे ज़्यादा मेल नहीं ले पा रही हूँ, तो फिर कभी आपका मेल ज़रूर शामिल करेंगे। तो इसी के साथ मुझे यानी रेणु को दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: आंगन।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
0: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है।
1: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर

0: 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने का आरोप लगाया है।
1: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, वो इधर उधर का बात करके और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी, इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की CBI जांच की मांग की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि MV अमीरवन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल ही में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है। उन्होंने इस महीने होर्मुज से गुजरने के दौरान GFS गैलेक्सी, MT अल बहिया और MT मुंबासा सहित कई जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा से ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद चल रहे राहत कार्यों की जानकारी ली। डॉक्टर शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति की समीक्षा की और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बहाली और पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार के हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 823 अंक बढ़कर 77,588 तथा निफ्टी 236 अंक की वृद्धि के साथ 24,221 पर थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The Lok Sabha has resumed discussion on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 for consideration and passing. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, had moved the bill in the House yesterday. Participating in the discussion, JDU MP Dileshwar Kamath expressed gratitude to Prime Minister Narendra Modi for bringing the bill in the Parliament, stating that it will ensure a brighter future for students while enhancing transparency in the education system. Opposing the bill, N.K. Premachandran of RSP said that the bill is inadequate to achieve the purpose stated in the bill. He alleged that the changes brought in the proposed bill are merely cosmetic. The Rajya Sabha has been adjourned till 2 p.m. following opposition uproar over alleged police action during students' protest over NEET issue. When the House reassembled at 12 noon after the first adjournment, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan tried to take up the question hour, but opposition members started sloganeering, pressing their demands. The Lok Sabha has extended the tenure of the Joint Parliamentary Committee examining the legislation related to One Nation, One Election up to the first day of the last week of the Winter Session 2026 of Parliament. The chairman of the committee, BJP MP P.P. Chaudhary, moved the motion to extend the tenure

दोस्तों डायरेक्टर मोहन कुमार की इस फिल्म में मुख्य भूमिका में धर्मेंद्र के साथ राजेंद्र कुमार, सायरा बानो, शशिकला जैसे सितारे नजर आए।

और साथी कलाकारों में थे गजानन जागीरदार, सुलोचना लटकर और नजीर हुसैन। धर्मेंद्र ने अपने करियर में रोमांटिक और एक्शन हीरो के तौर पर खूब नाम कमाया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में आई मिलन की बेला में पहली और आखिरी बार विलेन का किरदार निभाया था। और मजे की बात तो यह है कि इस फिल्म के बाद वो हीरो के तौर पर इतने मशहूर हो गए कि फिर कभी नेगेटिव रोल नहीं किया। इस फिल्म के बाद धर्मेंद्र के पास फिल्मों की लाइन लग गई और उन्होंने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। वहीं राजेंद्र कुमार और सायरा बानो की केमिस्ट्री भी दर्शकों को खूब पसंद आई थी।

दोस्तों, अगर बात करें फिल्म की कहानी की, तो एक अमीर व्यक्ति की दुनिया उस वक्त बिखर जाती है इस फिल्म में, जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने मृत बच्चे को जन्म दिया है। अपनी पत्नी को इस सदमे से बचाने के लिए वो नर्स की सलाह पर अपनी नौकरानी लक्ष्मी यानी सुलोचना लाटकर के जुड़वा बेटों में से एक को गोद ले लेता है। आगे क्या होता है बताएंगे आपको इस गाने के बाद।

0: दोस्तों, समय बीतता है और जुड़वा भाई अलग अलग परिवेश में बड़े होते हैं। श्याम यानी राजेंद्र कुमार अपनी गरीब माँ के साथ गांव में बड़ा होता है और किसान बनता है, जबकि रंजीत यानी धर्मेंद्र अमीर माता पिता की देखरेख में शहर में पला बड़ा होता है। श्याम गांव के किसानों की भलाई के लिए श्री चौधरी यानी नज़ीर हुसैन के सहकारी आंदोलन से जुड़ जाता है, जहां उसकी मुलाकात श्री चौधरी की बेटी बरखा यानी सायरा बानो से होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और इस बीच रंजीत यानी धर्मेंद्र विदेश से लौटकर उसी गांव में अपनी माँ के साथ रहने आता है। कुछ ही समय में दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सब कुछ शेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बीच कोई फर्क नहीं दिखता। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस्मत उनके सामने एक बड़ी परीक्षा रखने वाली है। रंजीत को भी बरखा से प्यार हो जाता है और जब उसे पता चलता है कि बरखा भी श्याम से प्यार करती है, तो बरखा के प्यार को खोने का अपमान और उसे पाने का जुनून, और बस यहीं से शुरू होता है रंजीत की भूमिका का ग्रेट शेड्स, और जल्द ही गलतफहमियों और षड्यंत्रों का दौर शुरू होता है। श्याम पर चोरी और एक अन्य झूठा आरोप लगाया जाता है। परिस्थितियां बिगड़ती है, लेकिन अंत में सच्चाई सामने आती है। रंजीत को अपनी असली पहचान का पता चलता है और दोनों भाई फिर से मिल जाते हैं। फिल्म दोस्ती, प्रेम, त्याग और सच्चाई की जीत की एक भावनात्मक कहानी है।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है।
3: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: RBI कहता है, स्मार्ट बनो।

दोस्तों, इस फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने और बोल लिखे थे हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने। फिल्म में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें थीं। दोस्तों, अपने शानदार संगीत, दमदार कहानी और बेहतरीन अभिनय के कारण ये फिल्म आज भी क्लासिक मानी जाती है। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इसे आज भी याद किया जाता है।

आज की फिल्म थी आई मिलन की बेला। बहुत से दोस्तों ने हमें मेल किया है, तो चलिए आइए देखते हैं किन किन दोस्तों ने हमें मेल किया है। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। गांव लोहगर ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत गिल, राजदीप गिल, गुरनूल गिल, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना और हर्षित। अगला मैसेज आया है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर का। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर। भोपाल राजस्थान से धर्मेंद्र चिपा, कपिल छिंपा और पूजा परिहार। अगला मैसेज किया है जी हमें बागबत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया ने। अब सुन लेते हैं एक गीत और उसके बाद फिर पढ़ेंगे आपके मेल।

वेडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही मीना चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 2:30 पर एक ही कलाकार में आपके साथ रहेंगी राखी बनर्जी।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम अभी आपने सुना। हमारी आज की फिल्म थी आई मिलन की बेला। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

तो बाद इस मौके ते अपना पहला उपदेश दिता सी। भगवान बुद्ध ने बोधगया तो सारनाथ की यात्रा की ते पूर्णमाशी वाले दिन अपना उपदेश दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के मौके ते शुभकामनावां दित्तियां ने। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री मोदी ने कहा कि गुरु ना सिर्फ ज्ञान प्रदान करते ने सगों अपने पैरोकारां विच सकारात्मक ऊर्जा भी भरते ने। प्रधानमंत्री ने नागरिकां नूं अपील की कि वह अपने आदर्शां नूं अपने जीवन विच ताकत दा स्रोत बनाउण। अज दुनिया भर विच अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बाघां दी सांभ संभाल बारे जागरूकता पैदा करना, उन्हां दे कुदरती निवास स्थानां दी राखी करना ते जंगली बाघां दी घट रही गिणती दी समस्या ते ध्यान केंद्रित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व बाघ दिवस के मौके ते जंगली जीव प्रेमियों नूं वधाई दित्ती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री मोदी ने कहा है कि दुनिया दे बाघां दी आबादी का 70% हिस्सा भारत विच है। उन्हां कहा कि भारत दे बाघां दी संभाल दे यतन कुदरत नाल इक सुरता विच रहण दी सदियां पुरानी संस्कृति तों प्रेरित ने अते लोकां दी समूहक इच्छा शक्ति द्वारा संचालित ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेडां 2026 विच मर्दां दी 10,000 मीटर दौड़ विच चांदी दा तमगा जित्तण ते गुलवीर सिंह नूं वधाई दित्ती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच राष्ट्रपति ने कहा कि गुलवीर दे प्रभावशाली प्रदर्शन ने भारत नूं पुरशां दी 10,000 मीटर विच अपना पहला राष्ट्रमंडल खेडां दा तमगा दवाया। उन्हां कहा कि देश नूं उन्हां दी प्राप्ति ते माण ते भविख लई उन्हां नूं शुभकामनावां दित्तियां। अंत विच चोणवीआं खबरां इक बार फिर सुन लो। लोक सभा विच जनतक प्रीख्यावां च अनुचित तरीकियां दी रोकथाम बारे सोध बिल 2026 ते चर्चा मुड़ शुरू हो गई है। नीट पेपर लीक मामले ते विद्यार्थियों दे विरोध प्रदर्शन दौरान पुलिस कार्रवाई बारे विरोधी धिर दे हंगामे तों बाद राजसभा दी कार्रवाई दोपहर बाद 2 बजे तक लई मुलतवी कर दित्ती गई है। वित्तीय साल 2025-26 विच भारत की कुल बरामद 863.1 अरब अमरीकी डालर के रिकार्ड पद्धर ते पहुंच गई है। भारत ने हॉर्मुज स्ट्रेट विच हाल ही विच कई समुद्री जहाजों ते हुए हमलों की सख्त निंदा की है ते पाकिस्तान ते कब्जे वाले कश्मीर विच पाकिस्तानी फौजां दी पिछले 2 दिनों दौरान वहशियाना कार्रवाई विच घट्टो घट 40 लोग मारे गए ने बहुत सारे जख्मी हो गए ने। इस दे नाल ही खबरां दे बुलेटिन खत्म हुंदा। साडा अगला प्रदेशक खबरां दा बुलेटिन शामी 6:20 ते होएगा। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। लोकसभा में पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर बहस जारी है। सरकार ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि वो इस मामले पर लोकसभा में बहस से कतरा रही है। सरकार का कहना है कि बिल का मकसद इम्तिहानात के निज़ाम में तलबा के एतमाद को मुस्तहकम करना है। वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया है और मरकज की तरफ से इस मुश्किल घड़ी में आसाम को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। भारत ने आबनाए हुरमुज में कई बहरी जहाजों पर हालिया हमलों की पुरजोर मजम्मत की है और कहा है कि बैन अल-अक़वामी आबी गुजरगाहों के रास्ते तजारत बहाल की जानी चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज की वहशियाना कार्रवाई के नतीजे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 40 तक पहुंच गई है और आज दुनिया भर में शेरों का बैन अल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। शेरों के तहफ्फुज़ की कोशिशों में भारत सबसे आगे है और दुनिया के कुल शेरों की तादाद में से लगभग 70% भारत में पाए जाते हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा में पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर गौर व खोज और मंजूरी के लिए बहस जारी है। इस बिल का मकसद पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी एक्ट 2024 में तरमीम करना है। इस कानून में कई अहम इल्तिजामात हैं जिनमें मुजरिमों को 10 साल तक कैद की सजा, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और सजा याफ्ता अफराद की जायदाद जब्त करने जैसी सख्त सजाएं शामिल हैं। इस कानून के तहत सभी रियासती हुकूमत और मरकज के जेर इंतजाम इलाके की इंतजामिया खुसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेगी ताकि मुकदमात की रोजाना समाप्त हो सके। इसमें मुकदमात की तहकीकात 2 माह के अंदर अंदर मुकम्मल करने और 3 महीने के अंदर मुकदमात का फैसला कर देने की

0: तजवीज़ है। अमला, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल लोकसभा में यह बिल पेश किया था। बहस में हिस्सा लेते हुए जेडीयू के रुकने पार्लियामेंट दिलेश्वर कामत ने बिल पेश किए जाने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह कानून तलबा के लिए बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के साथ साथ तालीमी निज़ाम में शफाफियत को भी फ़रोग देगा। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आज इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के अरकान ने पब्लिक इम्तहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 की दफात पर बहस के दौरान कोई बात नहीं की बल्कि गैर मुतालिका सियासी मसाइल उठाए। उन्होंने कहा कि ये तरमीमी बिल तलबा के खदशात और मुतालबात के जवाब में पेश किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस बिल को लाने के वजीर आजम के फैसले ने इम्तिहान के निजाम पर तलबा के एतमाद को मजीद मुस्तहकम किया है।
1: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, वो इधर उधर का बात करके और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
0: लोकसभा ने उस मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मुद्दत में तौसी कर दी है जो एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक कानून साजी पर गौर कर रही है। इस कमेटी की मुद्दत पार्लियामेंट के 2026 के मौसम सरमा के इजलास के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक बढ़ाई गई है। कमेटी के चेयरमैन बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट पीपी चौधरी ने आईन में 129वें तरमीमी बिल 2024 और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों से मुतालिक तरमीमी बिल 2024 के साथ मुश्तरका कमेटी की मुद्दत बढ़ाने की तहरीक पेश की। इस तहरीक को ऐवान ने जबानी वोट से मंजूर कर लिया। बीजेपी के बहुत से अरकान पार्लियामेंट ने, जिनमें झारखंड के अराकीन भी शामिल थे, पार्लियामेंट के अहाते में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी का पेपर मुबैना तौर पर लीक होने पर एहतजाज किया। उन्होंने सीबीआई से इसकी तफ्तीश कराने और झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान मरकजी वजीर और बीजेपी के रहनुमा संजय सेठ ने भी इस मामले की सीबीआई से तहकीकात कराने का मुतालबा किया। जनाब सेठ ने इस बात पर जोर दिया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों से किए गए अपने तमाम वादे पूरे कर दिए हैं और यकीनन उन्हें इनसे फायदा पहुंचेगा। आज राज्यसभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी क्योंकि अपोजिशन ने नीट मामले पर तलबा पर एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई की वजह से ऐवान में शोरगुल किया। जब पहले इल्तवा के बाद दिन में 12 बजे ऐवान की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने सवालों का वक्फा शुरू करने की कोशिश की लेकिन अपोजिशन मेंबरों ने अपनी मांगों पर जोर देने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर चेयरमैन ने कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम के वजीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा से बात की और इमदादी कोशिशों का जायजा लिया। वहां बालाई आसाम में जबरदस्त सैलाब आया हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनाब शाह ने सैलाब की सूरत हाल के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की और भारत सरकार की तरफ से मुतासरा इलाकों में तामीर नौ, बहाली और तमाम जरूरी इमदाद जारी रखने की यकीन दहानी कराई है। इसी दौरान शिवसागर, गोलाघाट, चराइदियो और जोरहाट के सैलाब से बुरी तरह मुतासरा जिलों में इमदादी और बाज़ाबादकारी के काम जंगी पैमाने पर जारी हैं। आसाम सरकार ने हालिया सैलाब से मुतासर अफराद के लिए बहुत से इमदादी और बचाव इकदाम का ऐलान किया है। इन इकदाम में मरने वाले अफराद के लवाहिकीन को फौरी माली इमदाद देना भी शामिल है। इसके अलावा मुतासरा कुम्मों को भी माली मदद और तलबा को तालीमी मदद दी जाएगी। भारत ने आबनाए हुरमुज में मुतअद्दिद बहरी जहाज़ों पर हालिया हमलों की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि खित्ते में तजारती जहाजरानी और सिविल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अक्वामे मुत्तहदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि खित्ते में जारी तनाज़े में मुख्तसर वक्फे के बाद हमलों का दोबारा आगाज और कशीदगी में इजाफा तशवीश का बाइस है। उन्होंने GFS गैलेक्सी, MT अलबाहिया और MT मुम्बासा समेत कई बहरी जहाज़ों पर इस माह आबनाए हुरमुस से गुजरने के दौरान होने वाले हमलों की सख्त मजम्मत की। उन्होंने जोर देकर कहा कि बैनुल अक़वामी आबी गुजरगाहों में बहरी जहाज़ों की बिला रुकावट और आज़ादाना आमदोरफ्त को बहाल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में

0: गुज़श्ता 2 दिन के दौरान पाकिस्तानी फौज की वहशियाना कार्रवाई के दौरान कम से कम 40 अफराद हलाक और बहुत से दूसरे जख्मी हो गए। खित्ते में फैली बेचैनी को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने बहिमाना कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर रखा है। यूनाइटेड कश्मीर अवामी नेशनल पार्टी UK PNP ने गहरी तश्वीश का जाहिर करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि 5 जून से 100 से ज्यादा अफराद को हलाक किया जा चुका है। अभी अभी खबर मिली है कि लोकसभा की कार्रवाई 2:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। आज दुनिया भर में शेरों का बैन अक्वामी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद शेरों और उनके फितरी मस्कन का तहफ्फुज करना और इनकी तादाद में कमी पर तवज्जो मरकूज करना है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने अपने मुबारकबाद के पैगाम में कहा है कि दुनिया में जितने शेर पाए जाते हैं उनमें से 70% भारत में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शेरों को बचाने की भारत की कोशिशों को कुदरती माहौल में हमाहंगी के साथ रहने की सदियों पुरानी रवायात से फैजान हासिल हुआ है और आवाम की इज्तिमाई कोशिशों से इन्हें और ज्यादा तकवियत मिली है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने आज कहा कि शेरों का तहफ्फुज़ सिर्फ एक जानवर की हिफाजत तक महदूद नहीं बल्कि पूरे माहौलियाती निज़ाम के तहफ्फुज़ और फितरत के साथ भारत के हमदर्दाना रिश्तों की अक्कासी करता है। जनाब यादव ने यह बात नई दिल्ली में शेरों के आलमी दिन 2026 के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कही। इंसानी हकूक के कौमी कमीशन NHRC ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर को नोएडा की एक रिहायशी सोसाइटी के सीवरेज ट्रीट प्लांट के अंदर जहरीली गैस सांस में जाने से 2 अफराद की हलाकत पर नोटिस जारी किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा में पब्लिक इम्तहानात में नामुनासिब तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर बहस जारी है। सरकार का कहना है कि बिल का मकसद इम्तिहानात के निज़ाम में तलबा के एतमाद को मुस्तहकम करना है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आसाम में सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लिया है और मरकज़ की तरफ से इस मुश्किल घड़ी में आसाम को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। भारत ने आबनाए हुरमुज़ में कई बहरी जहाज़ों पर हालिया हमलों की पुरजोर मजम्मत की है और कहा है कि बैन अक्वामी आबी गुजरगाहों के रास्ते तजारत बहाल की जानी चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज की वहशियाना कार्रवाई के नतीजे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 40 तक पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Lok Sabha continues discussion on public examinations prevention of unfair means amendment bill 2026. Government says bill aims to strengthen students' confidence in examination system. Home Minister Amit Shah reviews flood relief efforts in Assam, says centre to provide all help to Assam during difficult time. India strongly condemns recent attacks on several maritime vessels in Strait of Hormuz, says commerce through international waterways must be restored. Death toll reaches 40 in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir following brutal crackdown by Pakistani forces. And International Tiger Day 2026 being observed today, India leads the world in tiger conservation efforts with nearly 70% global tiger population. And now the news in detail. The Lok Sabha continued discussion on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 for consideration and passing. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Participating in the discussion, Leader of Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, said the education system in the country has now become very expensive. He alleged the money spent on conducting NEET UG examination is more than the education budget of the country. Mr. Gandhi said that the students' protest on the NEET issue was not violence or hatred, but a deep expression of the youth, and all political parties must respect this expression. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju strongly objected to the remarks of Rahul Gandhi against the Union Home Minister Amit Shah. Mr. Rijiju demanded that Mr. Gandhi should apologize in the House for his remarks. The discussion is underway.
2: कौन सा ऑर्डर है? वो ऑर्डर पे आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर

0: during a brutal crackdown by Pakistani forces amid escalating unrest in the region. Citing reports, the United Kashmir People's National Party on Wednesday alleged that around 40 civilians were killed, while several others were injured and arbitrarily arrested between 27th and 28th of July in Rawalkot, Mirpur and other areas of the occupied territory. International Tiger Day is being observed across the world today to raise awareness about tiger conservation, protect natural habitats and address the declining numbers of wild tigers. Prime Minister Narendra Modi has extended his greetings, saying India is home to 70% of the global tiger population. He noted that India's tiger conservation efforts are inspired by the nation's centuries-old culture of living in harmony with nature and powered by the collective will of the people. Addressing an event in New Delhi, Minister of Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav today said that tiger conservation is not merely about protecting one species, but about safeguarding the entire ecological system and preserving India's compassionate relationship with nature.
1: India has made significant strides in conservation under Prime Minister Narendra Modi's leadership. The tiger population has increased from 2,226 to over 3,600. Tiger reserves have expanded from 47 to 58, and elephant reserves have also gone up from 28 to 32. Underscoring the country's growing commitment to water conservation, designated Ramsar sites have also grown from 26 to 100.
2: Designated Ramsar sites ki sankhya 26 thi, jo badhkar ke ab 100 ho gayi.
0: During the event, he also launched ecotourism web portal developed by the National Tiger Conservation Authority. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha continues discussion on Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. Government says bill aims to strengthen students' confidence in examination system. Home Minister Amit Shah reviews flood relief efforts in Assam, says centre to provide all help to Assam during difficult time. India strongly condemns recent attacks on several maritime vessels in Strait of Hormuz, says commerce through international waterways must be restored. Death toll reaches 40 in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir following brutal crackdown by Pakistani forces. And International Tiger Day 2026 being observed today, India leads the world in tiger conservation efforts with nearly 70% global tiger population. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। भारत ने हुरमूज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक

0: लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
1: कौन सा ऑर्डर है वो ऑर्डर पे आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यह जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
0: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
2: झारखंड के अंदर एक टीडीपीएल एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि जेपीएससी ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, थालियां परोस के दे दिया, अब आप कहां से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
0: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
3: यूपीएससी बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ न कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जेपीएससी में धांधली हुआ इसको सीबीआई जांच करे।
0: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू

0: करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
1: प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें,
2: हाँ।
1: जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें,
2: हाँ।
1: मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनःस्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
3: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सरायदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए NDRF और ODRAF के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
5: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
0: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि MV अमीर 1 जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि ये घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
2: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी, वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी, वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी, जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
0: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, हीरो से लेकर विलेन तक हर किरदार में जान फूंक देने वाले एक्टर संजय दत्त को भला कौन नहीं जानता। फैंस और पूरा बॉलीवुड इन्हें प्यार से संजू बाबा कहता है। आज ही के दिन यानी 29 जुलाई 1959 को मुंबई में मशहूर एक्टर सुनील दत्त और एक्ट्रेस नरगिस के घर में एक बेटे ने जन्म लिया जो आगे चलकर संजय दत्त के नाम से जाने गए। आकाशवाणी परिवार की तरफ से हम इन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। संजय दत्त की जिंदगी एक रोलर कोस्टर की सवारी रही जिस पर एक बायोपिक फिल्म संजू जो कि 2018 में बन चुकी है जिसमें इनका किरदार रणबीर कपूर ने निभाया और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ऐसे में आज हम इनकी लाइफ से जुड़ी कुछ और अनसुनी कहानी आपको सुनाएंगे, पर उससे पहले सुनते हैं इनकी फिल्म यलगार का ये रोमांटिक सा गाना।

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश न होती तो भी ना आती।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के हमारे कलाकार हैं संजू बाबा यानी संजय दत्त, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, संजय दत्त का पूरा नाम संजय बलराज दत्त है, पिता सुनील दत्त और माता नरगिस हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार थे, जिस वजह से इनका बचपन फिल्मी माहौल में बीता। इनकी दो छोटी बहन हैं प्रिया दत्त और नम्रता दत्त। संजय ने अपनी शुरुआती एजुकेशन हिमाचल प्रदेश के लॉरेंस स्कूल सनावर से पूरी की है। बाद में इन्होंने मुंबई के एलिफ्टन कॉलेज में एडमिशन लिया। पढ़ाई के दौरान इनका झुकाव फिल्मों की तरफ था। महज 12 साल की उम्र में इन्होंने पिता की फिल्म रेशमा और सेरा में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे काम किया। फिल्म में खुद सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान और राखी गुलजार जैसे दिग्गज एक्टर्स थे। फिर करीब 10 साल बाद पिता ने इन्हें अपनी फिल्म रॉकी में लॉन्च किया, जो हिट साबित हुई। पर इस दौरान संजय पर दुखों का पहाड़ टूटा, इस बारे में आगे जानेंगे, पर उससे पहले सुनते हैं इनकी फिल्म रॉकी का ये बेहतरीन गाना।

8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

0: साथ रखना। 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं संजय दत्त, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, 1981 में रिलीज फिल्म रॉकी से संजय दत्त ने एज ए लीड एक्टर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस दौरान मां नरगिस को कैंसर हो गया और फिल्म के प्रीमियर से 4 दिन पहले यानी 3 मई 1981 को नरगिस जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस बात ने संजय दत्त को एकदम तोड़ दिया। हालांकि रॉकी फिल्म हिट हुई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की। इसके बाद संजय दत्त ने बहुत सी फिल्मों में काम किया और ज़्यादा और सफलता भी मिली। फिर 1986 में फिल्म नाम रिलीज़ हुई। इस क्राइम थ्रिलर फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला। इस फिल्म में संजय दत्त की एक्टिंग ने इन्हें एक सीरियस और सेंसिटिव एक्टर के रूप में पेश किया। फिल्म नाम में संजय दत्त के बहनोई कुमार गौरव ने भी साथ काम किया। इसके बाद संजय दत्त ने ईमानदार, जीते हैं शान से, इलाका, हम भी इंसान हैं और कानून अपना अपना जैसी हिट फिल्मों में काम किया। पर फिर आया वो दौर जो संजय दत्त के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं इनके फिल्म साजन का ये ब्यूटीफुल सा सॉन्ग।

दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। और आज के जो कलाकार हैं वो हैं संजू बाबा। दोस्तों, 90 के दशक में संजय दत्त ने अपने मल्टी टैलेंटेड एक्टिंग का नमूना दर्शकों के सामने पेश किया। फिल्म साजन में इनके रोमांटिक किरदार को खूब पसंद किया गया और इन्हें बेस्ट एक्टर के लिए अपना पहला नॉमिनेशन भी मिला। फिल्म की स्टोरी सॉन्ग दर्शकों ने खूब पसंद किया और फिल्म ने बम्पर कमाई की। इसके बाद फिल्म सड़क भी हिट साबित हुई। फिर सुभाष घई की फिल्म खलनायक में संजय दत्त ने एक नेगेटिव रोल किया और इस फिल्म ने इन्हें रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म में संजय दत्त के बल्लू बलराम के किरदार को आज भी याद किया जाता है। फिर इन्होंने दौड़, कारतूस, खूबसूरत, हसीना मान जाएगी, दाग द फायर और वास्तव जैसी हिट फिल्में दी। इस दौरान संजय दत्त की निजी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले, पर हर बार संजय दत्त ने मजबूती से कमबैक किया। आगे इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको हम बताएंगे, उससे पहले चलते हैं और सुनते हैं इनके फिल्म सड़क का ये एवरग्रीन सॉन्ग।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, संजय दत्त ने मुन्ना भाई MBBS, लगीरो मुन्ना भाई फिल्म में ना भूलने वाले कॉमिक और इंस्पायरिंग किरदार निभाया। फिर इन्होंने धमाल, डबल धमाल, ऑल द बेस्ट जैसी फिल्मों में दर्शकों को खूब हंसाया। इन्होंने इनकी जो निजी जिंदगी थी वो भी बहुत उतार चढ़ाव वाली थी और आगे हम बात करते हैं इनके अवार्ड्स की। आईफा अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड, स्टारडम अवार्ड्स और जी सिने अवार्ड्स इन्हें मिल चुके हैं। ये कभी भी स्टीरियोटाइप नहीं रहे। रौबदार अंदाज में बात करना हो या वॉक करना हो या फिर लंबे बालों के साथ ज़बरदस्त बॉडी, संजय दत्त ने करियर में हमेशा अपने स्वैग से फैंस का दिल जीता। ये वो चुनिंदा सितारों में भी शामिल रहे जो सिर्फ हीरो नहीं बल्कि विलेन बनकर भी दिल जीतने में कामयाब रहे। अग्निपथ का कांचा चीनी, मुसाफिर का बिल्ला, पानीपत का अहमद शाह अब्दाली या फिर KGF चैप्टर 2 का अधीरा, संजय दत्त ने पर्दे में ऐसे कई खतरनाक किरदार में जान डालने का काम किया। आगे भी इनकी बहुत सी अपकमिंग फिल्में आने वाली हैं जिसका दर्शकों का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आखिरी पड़ाव में सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, एक ही कलाकार कार्यक्रम में फिलहाल आज इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि 3 बजे आप सुनेंगे मैटिनी मेलोडीज मेरे साथ यानी राखी बैनर्जी के साथ और मेरे साथ मेरी दोस्त बीना चौहान के साथ।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 3 बज रहे हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज़ का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार
1: और मेरा मीना चौहान का प्यार भरा नमस्कार। राखी, कार्यक्रम के आरंभ में हम अपने श्रोताओं को क्या सुना रहे हैं?
0: देखो, प्रोग्राम तो हम स्टार्ट कर ही रहे हैं और हाँ, बहुत अच्छे अच्छे गाने भी हम पुराने 50s 60s के सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम सुनाते हैं प्रोफेसर फिल्म का गाना जिसे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने गाया है।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज, और मैं आपके साथ हूँ राखी बैनर्जी, और मेरे साथ हैं मीना
1: जी। राखी, ये गाना तुम्हें कैसा लगा?
0: बहुत ही बढ़िया। मीना, तुम्हें पता है कि कभी कभी मोहब्बत को अल्फाज की जरूरत नहीं होती है, एक नजर, एक मुस्कान और एक छोटा सा इशारा ही दिल की पूरी कहानी कह देता है।
1: बिल्कुल राखी, लेकिन जब दो दिल एक दूसरे की धड़कनों को सुनने लगते हैं ना, तब खामोशियां भी गुनगुनाने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो अगला गीत इसी तरह का है, तो चलिए सुनते हैं, और इसे हमने लिया है फिल्म कश्मीर की कली से।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों कहते हैं कि दुनिया हर रिश्ते को अपनी कसौटी पर जरूर परखती है, लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। मोहब्बत भी उन्हीं एहसासों में से एक है ना राखी?
2: बिल्कुल बिल्कुल मीना, जब दिल किसी का हो जाता है ना तो हाँ। फिर ना दूरियां मायने रखती हैं और ना जमाने की बातें। इश्क ना किसी का हुक्म से शुरू होती है और ना किसी के डर से ख़त्म। ये तो बस खामोशी से दिल में उतर जाता है और फिर पूरी ज़िंदगी अपनी खुशबू बिखेरते रहता है।
1: बिल्कुल राखी,

0: फिल्म अप्रैल फूल में अभी आपने सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी को सुना।
1: और श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल को, और इस ये जो वक्त है वो है मैटिनी मेलोडीज का, और मैं आपके साथ हूँ राखी, और
0: मैं हूँ मीना चौहान। दोस्तों, जानते हैं कभी कभी ना जिंदगी में कोई ऐसा चेहरा मिलता है जो सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि रूह को भी रोशन कर देता है। उसकी एक झलक से मौसम बदल जाते हैं और धड़कनों को नई धूल मिल जाती है और हर रास्ता मंजिल सा लगने लगता है ना राखी। और
1: बिल्कुल
0: मोहब्बत
1: बिल्कुल
0: की
1: बिल्कुल कि मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो किसी शोर से नहीं, एक मासूम मुस्कान और एक सच्ची नज़र से अपना एहसास जता देती है। और जब दिल अपने महबूब की तारीफ में अल्फाज ढूंढता है तो लगता है जैसे हर शब्द कम पड़ जाता है। तो आइए अब सुनते हैं ऐसे ही एक सदाबहार नगमा, जिसमें अपने प्रिय की खूबसूरती और उनके एहसास का बड़ा ही नफीस अंदाज में जिक्र किया गया है। और जो फिल्म है वो फिल्म क्या है?
0: बेटा बेटी, इसे गाया है मोहम्मद रफी ने।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों, जानते हैं कुछ लोग अपनी आंखों से सब कुछ कह देते हैं, लेकिन होठों तक आते आते हर इजहार ठहर जाता है। दिल में मोहब्बत का समंदर होता है, मगर चेहरे पर सादगी की चादर ओढ़े रहते हैं।
2: बिल्कुल राखी, प्यार ही प्यार की यही तो सबसे प्यारी अदा है। कभी एक नज़र में इकरार, तो कभी खामोशी में हजार बातें। छुपाने की जितनी भी कोशिश की जाए ना, सच्चा प्यार उतना ही आंखों से छलक उठता है। जैसा कि अगले गीत में हम सुनवा रहे हैं, फिल्म नीला आकाश से हमने ये गीत लिया है और जिसे गाया है
1: ये है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के आवाज़ में।
2: बिल्कुल राखी।

0: दोस्तों, कभी-कभी दूरियां सिर्फ रास्तों में नहीं होती, बल्कि किस्मत में भी दो दिलों के बीच फासले लिखे होते हैं। लेकिन मोहब्बत, वो तो हर सरहद, हर दीवार और हर दूरी से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात मीना, कि दिल चाहता है कि काश ख्वाहिशों के भी पंख मिल जाते, तो ना कोई इंतज़ार होता, ना कोई मजबूरी, बस एक उड़ान होती और उस उड़ान की मंजिल होता अपना महबूब।
0: बिल्कुल
1: तो आज का ये गीत भी उसी तड़प, उसी इंतज़ार और उसी मासूम चाहत का आईना है।
0: जिसे हमने लिया है फिल्म सहरा से, और इसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: देखो ना राखी, देखते ही देखते आज की ये सुरीली महफिल अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है।
1: बिल्कुल सही बात, और उम्मीद है इन मधुर गीतों ने आपकी यादों को छुआ होगा, आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेरी होगी
0: और
1: और
0: दिल को कुछ सुकून भी दिया होगा, है ना।
1: सही बात,
0: जिंदगी की सबसे खूबसूरत दौलत वही पल होते हैं जो अपनों के साथ बिताए जाए।
1: और जब कोई पूरा दिन किसी की याद, उनकी बातों और उनके एहसासों में गुजर जाए तो वो दिन जिंदगी की सबसे हसीन याद बन जाता है।
0: जी, तो चलिए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म है जंगली, और जिसे हम गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। और इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। मीना चौहान और
1: राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए।
0: नमस्कार, और छोड़े जाते हैं आपको इस गीत के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मैटिनी मेलोडीज। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिश।

उर्दू मजलिस के सभी सामईन की खिदमत में नसरीन बेगम का पुरखलूस आदाब। पेश है प्रोग्राम अक्स अदब। सामईन, आज गुरु पूर्णिमा है। ये एक मुकद्दस और पाकीज़ा त्यौहार है जिसे मुख्तलिफ फ़िरक़े के लोग बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाते हैं। ये त्यौहार गुरु और शिष्य के दरमियान चली आ रही रिवायत से वाबस्ता है, यानी उस्ताद और तालिबे इल्म के दरमियान इज़्ज़त और एहतराम का जो पाकीज़ा रिश्ता होता है इसकी याद दिलाता है। वालदैन तो बच्चे की निगहदाश्त और नशोनुमा में अपना किरदार निभाते हैं, मगर उस्ताद बच्चे की तामीर साजी यानी किरदार साजी को निखारने में, संवारने में एक अहम रोल अदा करता है। उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते को निभाते हुए ये त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो हिंदी कैलेंडर के मुताबिक आषाढ़ के महीने में और अंग्रेज़ी के मुताबिक जून जुलाई माह में आता है। इसी दिन महात्मा गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश में सारनाथ के मकाम पर अपना पहला उपदेश दिया था और तालीमात से आगाह किया था, इसीलिए ये दिन अहमियत का हामिल है। जैन फ़िरक़े के मानने वाले इस दिन को इसलिए अहमियत देते हैं कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को निजात प्राप्त हुई थी, और हिंदू मज़हब के मानने वाले गुरु व्यास की याद में इस दिन को मनाते हैं। गुरु व्यास कदीम ज़माने में एक महान गुरु रहे हैं। गुरु व्यास ने वेदों को चार हिस्सों में तकसीम किया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद, इसीलिए उनकी याद में इस दिन को व्यास पूर्णिमा के तौर पर मनाते हैं। अगर उस्ताद के मकाम पर गौर किया जाए तो कौम की बुनियाद उस्ताद के किरदार पर मुनहसिर है। एक अच्छा उस्ताद कौम मिल्लत का सितारा बनकर नौजवानों के किरदार व अफकार को चमका सकता है, संवार सकता है, मुल्क और कौम की तकदीर बन सकता है। बकौल शायर, एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है,

0: ये है कि सलीके से तराशा जाए। आइए सामीन, अब चलते हैं प्रोग्राम अक्स अदब की तरफ। सामीन, कहानी सुनने और सुनाने का अमल इंसान के लिए इब्तिदा से ही दिलचस्पी का बाइस रहा है। जैसे जैसे इंसान की समाजी ज़िंदगी में तब्दीली आई, वैसे वैसे कहानी के मवाद और मौजूआत बदलते चले गए। हिकायत, तमसील, किस्सा, दास्तान, नावल और अफसाना, यानी कहानी ने मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार की। अफसाना आज के अहद की मकबूल सिंफ है, जिसमें ज़िंदगी के किसी एक वाक़े, जज्बे, ख्याल या मसले को फनकाराना अंदाज में पेश किया जाता है, जो एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सकता है। तो आइए सामीन, गज़ला कमर से उनका अफसाना सुनते हैं। अफसाने का उनवान है दरार।
1: तेज़ बारिश के बाद आसमान बिल्कुल साफ था, मगर एक अजीब सी खामोशी चारों तरफ छाई हुई थी, जैसे किसी तूफान के आने से कबल हुआ करती है। मुझे खौफ का एहसास हुआ। तूफान, मेरा दिल धड़का और मैंने सबा को चौथी बार फ़ोन लगाया, मगर अब भी उसका फ़ोन बंद था। कहाँ है वो? मानती हूँ कि अब वो बच्ची नहीं है, बल्कि ख़ुद एक बच्ची की माँ है और अपने बारे में फ़ैसला लेने के लिए आज़ाद भी है। बल्कि अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला लेने का हक तो उसने उस वक्त इस्तेमाल किया था जब वो सिर्फ 20 साल की थी और ग्रेजुएशन कर रही थी। हॉस्टल से फ़ोन करके इत्मीनान भरे लहजे में उसने कहा था कि वो सुहेल से शादी करना चाहती है। क्या? मैं चौंक गई। मम्मा, मैं शादी कर रही हूँ, इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या बात है? जानती हो तुम क्या करने जा रही हो? ये मेरी ज़िंदगी है और उसके बारे में फ़ैसला लेने का हक है मुझे। मैं हक की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हारे मुस्तकबिल को लेकर फ़िक्रमंद हूँ। सुहेल कौन है, कैसा है? मम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं जानती हूँ उसको। उसने फ़ोन रख दिया। उसके चंद जुमलों ने मुझसे एहतजाज का हक भी छीन लिया था। मैंने पूरी रात सोचते हुए गुजार दी, मगर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी। मुझे यकीन था कि सबा का ये फ़ैसला जज्बाती है और जज्बात में किए गए फ़ैसले देरपा साबित नहीं होते, मगर ये सिर्फ मैं जानती हूँ। एक मुश्किल और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने के बाद एक लंबे तजुर्बे ने मुझे ये सिखाया है। मगर सबा, वो तो अभी बच्ची है, अपना भला बुरा भी नहीं समझ रही। पिछले साल छुट्टियों में जब वो आई थी तो उसके अंदर एक अजीब सी खामोशी को महसूस किया था मैंने। एक दोस्त बनकर उसका साथ देने की कोशिश की, फिर मुझे एक कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ा। वापसी पर उसे फ़ोन किया तो उसकी चहकती आवाज़ मुझे तरोताज़ा कर गई। मैंने उसके लिए क्या क्या ख़रीदा है उसकी तफसील पूछ रही थी। मेरा गिल्ट कम हो गया। जिस वक्त मैं घर पहुंची, वो मौजूद नहीं थी। उसे मालूम था फिर वो कहाँ जा सकती है। स्टेशन गई हैं सुहेल साहब को छोड़ने। सुहेल साहब, ये कौन है? बाई ने जिस अंदाज से ये नाम लिया था, ऐसा लगा वो इस नाम से खासी मानूस है। मगर मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला। ये नाम मेरे लिए बिल्कुल नया था। ये सुहेल कौन है? मुझे इंतज़ार था कि सबा सुहेल के बारे में बताएगी। मायूस होकर मैंने खुद पूछा। दोस्ती का रिश्ता तो कभी था ही नहीं हमारा, मगर अब माँ बेटी के बीच किसी तीसरे की मौजूदगी ने एक दरार को ज़रूर जन्म दे दिया था, और इस वक्त वो दरार कुछ ज़्यादा ही थी। उसका जवाब मुझे मुतमईन नहीं कर सका। उसने बताया कि इंटरनेट चैटिंग के दौरान वो मिले हैं और अब एक अच्छे दोस्त बन गए, मगर मेरी गैर मौजूदगी में उसका आना ये एक इत्तेफाक है। वो अपनी आंटी से मिलने आया था, वो भी यहीं रहती हैं बस। मगर मेरे लिए इस बस को यकीन करना मुश्किल था और मैंने उसे समझदारी से काम लेने की सलाह दी। मेरी बेटी थी वो, मैं उसे डांट सकती थी, समझा सकती थी, थप्पड़ भी मार सकती थी, मगर मैं कुछ नहीं कर सकी। सबा को सुहेल इंटरनेट पर मिला था और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। यहाँ तक तो सब ठीक था, मगर शादी? मम्मा, मैंने अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारी है, वक्त ने मुझे बहुत मैच्योर कर दिया है। मैं खामोश हो गई। क्या जताना चाहती है वो? अपनी कौन सी महरूमी बताकर मुझे एहसास जुर्म में मुब्तला कर रही है? मेरा ये कैरियर, शोहरत या फिर ये इज्जत जो बेहद मेहनत के बाद मुझे हासिल हुई है। सबा 6 महीने की थी जब मेरी उसके पापा से अलहदगी हुई थी। एक अरसा बीत चुका है, कौन सही था और कौन गलत, तज्जिया करने का वक्त ना तब था और ना अब। बच्चे नौकरों के साथ नहीं पलते। आसिफ का ख्याल

बशर से हुई और उसने मुझे मेरे अंदर छिपी सलाहियतों को बाहर लाने के लिए उकसाया। बच्चे तो पल ही जाते हैं, बड़े होकर वो अपनी माँ पर फख्र करेगी। अशर की बात दिल में उतरी। सबा की देखभाल के लिए एक फुल टाइम मुलाजमा आ गई। अशर ने अपने नए प्रोजेक्ट में मुझे शामिल कर लिया। मेरे मजामीन जर्नल्स में आने लगे। सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के दावतनामे मेज़ पर सजने लगे। मैं औरत थी, वो भी ऐसी जिसको उसके शौहर ने छोड़ दिया था। क्यों, ये जानने की कोशिश किसी ने नहीं की। मेरी पीठ पीछे कहानियाँ बनाई जाती, मैं सुनती रही, और जब नज़रअंदाज करना मुश्किल हो गया तो हम एक हो गए। अशर के साथ रहते हुए मुझे अक्सर आसिफ का ख्याल आ जाता, जहाँ सिर्फ घुटन थी, कैद थी, सही और गलत की तकरार थी। यहाँ आज़ादी थी, रास्ते थे, उड़ान थी, और मैं परवाज के लिए तैयार थी। अक्सर मैं मुल्क से बाहर कॉन्फ्रेंस में शामिल होने लगी। ऐसी ही एक ट्रिप से वापसी पर मुलाजमा ने अशर के किरदार का खुलासा किया तो मैं हैरान रह गई। फौरन सबा को हॉस्टल भेजा। इससे पहले कि मैं अशर से कोई बात करती, उन्होंने मुल्क से बाहर जाने का फरमान सुना दिया और मैं बंद कमरे में अपनी तन्हाई गुजारने लगी। सबा की कमी खुलखलती, मगर उसके अच्छे मुस्तकबिल की खातिर बर्दाश्त कर लिया। अब अचानक सुहेल का उसकी ज़िंदगी में आना और शादी का फ़ैसला। मेरा बेचैन होना फितरी था, मगर उसकी ख्वाहिश और उससे ज़्यादा उसकी ज़िद के आगे मैं मजबूर थी। सुहेल बैंक में मुलाजिम था, 9 से 5 की नौकरी और फिर घर। उसका मुस्तकबिल एक महफूज हाथों में है। मैंने खुद को तसल्ली दी और शादी की तैयारी में जुट गई। पहली बार सबा के घर जाते हुए दिल में वसवसे थे, मगर वहाँ पहुँचकर सब दूर हो गए। सजी सवरी और हैरान कर देने की हद तक सादतमंद बीवी का ये रूप सबा ने कहाँ से इख्तियार किया था, मैं समझ नहीं सकी। सुहेल के खाने, कपड़े, पसंद और नापसंद की लंबी फेरिस्त उसके होठों पर थी। वो खासी ज़हीन थी। स्कूल और कॉलेज के उसके बेहतरीन रिकॉर्ड्स थे। सब बहुत कुछ करने की सलाहियत थी उसके अंदर, मगर आज घर की चहारदीवारी में कैद, शौहर की टाई और रुमाल का हिसाब रखते हुए क्या वो वाकई खुश हो सकती है, या फिर खुश रहने का दिखावा कर रही है। मेरे अंदर की औरत ने मुझे जानने के लिए उकसाया, मगर एक माँ ने उसे खामोश कर दिया। ये मेरा वहम है। मेरी बेटी खुश है, हंसते खिलखिलाते हुए मैंने उसे पहली बार देखा है। रिश्ते शायद ऐसे ही पनपते हैं, अपनी कुर्बानी देकर। दिल में आए खदशात को नकार कर मैं मुतमईन होकर वहाँ से लौटी। अगले साल वो एक बच्ची की माँ बन गई। अब शायद वो मेरी ममता को समझने भी लगी थी और अक्सर खुद फ़ोन करके मुझे समरा के पल पल की खबर देती। फिर अचानक उसके लहजे में एक उलझाव महसूस हुआ। वो कुछ परेशान है। क्यों, मैं उसे फ़ोन करती, सुहेल के बारे में दरियाफ्त करती, मगर वो टाल जाती। कभी उसका फ़ोन बंद होता और कभी एक दो जुमले के बाद वो फ़ोन काट देती। कहीं कोई गड़बड़ है। बहुत देर बाद उसने फ़ोन उठाया। मैं दवा खाकर सो रही थी, मगर क्यों, क्या हुआ है? बगैर जवाब दिए उसने फ़ोन काट दिया। कई दिनों तक कुरेदने के बाद उसने बताया कि वो सुहेल से अलग हो रही है। क्या ये धमाका था मेरे लिए? वो अब भी उतनी ही नादान थी जितनी 2 साल पहले थी। मम्मा, घुटन होती है मुझे इस माहौल में ये ज़िंदगी जीते हुए। मैं पढ़ाई पूरी करूँगी और फिर नौकरी। शादी के अंदर रहते हुए भी तुम ये कर सकती हो, मैंने समझाना चाहा। बिल्कुल नहीं, मैं साइकिक हो जाऊँगी या फिर उन औरतों की तरह जो हर वक्त वजीफे पढ़कर खुद पर और चारों तरफ दम करती रहती हैं। मैं खामोश हो गई। समरा सो चुकी थी, सबा जाग रही है, मुझे मालूम है। एक बिस्तर पर लेटे हुए हम एक दूसरे से मीलों दूर थे। बहुत तन्हा है इस वक्त और जानती भी नहीं है कि शादी की हिफाजत गाह से बाहर निकलते ही वो कितनी अकेली हो जाएगी। सुबह की चाय पीते हुए उसे समझाने की आखिरी कोशिश की मैंने। आपने भी तो पापा को छोड़ दिया था। ये अदालत नहीं थी, मगर उसका लहजा वकीलों जैसा था। मैं मजबूर थी, मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता था। मैं भी मजबूर हूँ, मगर तुम्हारी बच्ची, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे कभी खुद से अलग नहीं करूँगी। अब क्या जताना चाह रही है वो? मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे गलत ठहराकर क्या साबित करना चाहती है? मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। अलग हुई थी तुम्हारे पापा से, नया घर भी बसाया था आपने। बेटी के सामने अपना दफा करते हुए मैं खुद को बौना महसूस कर रही थी। वो भी ज़रूरत के तहत अकेले ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता है, मगर मैं किसी के लिए अपनी बेटी

0: खुद से अलग नहीं करूंगी, कभी नहीं। सभा की बात किसी थप्पड़ से कम नहीं थी। मेरी नजरें झुक गईं। क्या मैं वाकई हार गई? दुनिया की नजरों में एक कामयाब और पुरएतमाद औरत होते हुए भी मैं एक टूटी हुई डाली की तरह झूल रही थी। बहुत सी आवाज़ें मेरा पीछा कर रही थी, जैसी माँ वैसी बेटी। काश सभा मुझे गलत ठहराने के लिए इतना बड़ा कदम ना उठाए। मगर ये भी सच है कि सभा के लिए मेरा वजूद कभी किसी अहमियत का हामिल नहीं रहा। वो एक हारी हुई माँ है, एक ऐसी माँ जो अपनी शर्तों पर ज़िंदगी गुजारने के बावजूद अपनी बेटी से ये नहीं कह सकती कि देखो मैं भी एक घुटन भरे रिश्ते से आज़ाद होकर एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हूँ, तुम भी ज़रूर खुश रहोगी।
1: सामीन, अभी आप गज़ाला कमर से उनका अफसाना सुन रहे थे। अफसाने का उनवान था दरार। आइए सामीन, अनीता गोस्वामी की आवाज़ में गज़ल सुनते हैं। कलाम है फैज़ अहमद फैज़ का।

0: आमीन। अभी आप अनीता गोस्वामी की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था फैज़ अहमद फैज़ का। सामीन, शायरी ज़िंदगी का आईना है, अदब का एक नहायत अहम हिस्सा है। शायर अपनी शायरी से न सिर्फ़ अपने जज्बात और एहसासात की अक्कासी करता है, बल्कि माशरती मसाइल को भी सामने लाता है और लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। तो आइए सामीन, प्रोग्राम नवाए शायर के तहत जनाब जावेद मुशीरी से उनका कलाम सुनते हैं।
1: शेर समात फरमाएं।

गजल का आखिरी शेर, बिछड़ते वक्त ये पलकों पे जुगनुओं का हुजूम,

सामीन, अभी आप प्रोग्राम नवाए शायर के तहत जनाब जावेद मुशीरी से उनका कलाम सुन रहे थे। तो सामीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अक्से अदब। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपनी मेज़बान नसरीन बेगम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिश। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 4 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी में और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 आज लोकसभा में पारित हो गया है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। प्रावधानों के तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, जिससे मामलों की रोजाना सुनवाई हो सके। उधर राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में और संशोधन करेगा। प्रस्तावित विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जन गण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल विधायी परिवर्तन नहीं है। उन्होंने कहा कि ये भारत की आत्मा, राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद डॉ. राम मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि पिछले 123 वर्षों से वंदे मातरम गीत का अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस गीत से प्रेरित होकर देश के क्रांतिकारियों ने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया। YSRCP के गोल्ला बाबूराव ने सदन के सभी सदस्यों से राष्ट्रगीत का सम्मान करने का अनुरोध किया। उन्होंने इस विधेयक को पेश करने के लिए सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया। इस चर्चा में बीजेडी की सुलता देव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, AIADMK के डॉ. एम थंबीदुरई और अन्य सदस्यों ने भाग लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा से बात की और असम के ऊपरी हिस्सों में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृहमंत्री ने दोहराया है कि इस कठिन समय में केंद्र सरकार की सभी एजेंसी और संसाधन असम के लोगों की सहायता के लिए तत्पर हैं। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
2: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सोराइदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित

0: India has strongly condemned recent attacks on several maritime vessels in the Strait of Hormuz, saying targeting of commercial shipping and civilian infrastructure in the region must end. Permanent representative of India to the UN, Parvathaneni Harish, said after a brief pause in the ongoing conflict in the region, there has been a worrying resumption of attacks and escalation of hostilities. President Draupadi Murmu today met a group of artists of Indian traditional art forms and witnessed their work at the Rashtrapati Bhavan. 12 artists representing art forms such as Banaras murals, Thanka, Nayaka, Keral mural, Basoholi, Surpur and Mysore are staying at the Rashtrapati Bhavan under the Artists in Residence program. In Jammu and Kashmir, the traditional Holi maze or Chhadi Mubarak was ceremoniously taken out from the historic Dashnami Akhada at Mysuma in Srinagar today on the occasion of Ashar Purnima. The ceremony marks the beginning of its annual journey to the Holy Sri Amarnaji Cave Shrine. International Tiger Day is being observed today to raise awareness about tiger conservation, protect natural habitats and address the declining numbers of wild tigers. Prime Minister Narendra Modi extended his greetings on the occasion, saying India is home to 70% of the global tiger population. And benchmark domestic equity indices ended over 1% higher today. Sensex surged 889 points to close at 77,655. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। लीजिए सुनिए गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। अंजुम पुत्री स्वर्गीय इलियास निवासी ग्राम टिकरी थाना जानी मेरठ से लापता हैं। इनकी उम्र है 21 वर्ष, बाल काले हैं, शरीर सामान्य है। इन्होंने मैरून कलर का कुर्ता और ट्राउजर पहना हुआ है। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर प्रभारी निरीक्षक थाना जानी मेरठ से संपर्क करें। राजू पुत्र स्वर्गीय रामस्वरूप ग्राम अगवानपुर से लापता हैं। इनकी उम्र है 12 वर्ष, कद 4 फुट 10 इंच, बाल काले हैं, चेहरा सामान्य और शरीर की बनावट सामान्य है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर थाना प्रेक्षित नगर से संपर्क करें। अनु उर्फ पलक पुत्री श्री जगदम्बा प्रसाद पांडे, मकान नंबर 298, गली नंबर 6, सी ब्लॉक, ब्रिजपुरी, दिल्ली से लापता है। इनकी उम्र है 17 वर्ष, कद 5 फुट, शरीर की बनावट सामान्य है, रंग गोरा है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच सेक्टर 16 रोहिणी से संपर्क करें। प्रवीण पुत्र स्वर्गीय श्रीचंद पत्ता जी संगम विहार दिल्ली से लापता है। इन्हें अंतिम बार 22 जुलाई 2019 को देखा गया था। इनकी आयु है 27 वर्ष, कद 5 फुट 6 इंच, शरीर दरमियाना है, चेहरे का रंग गेहुआ है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर सेक्टर 16 रोहिणी से संपर्क करें। हर्षिता कुमारी पत्नी विनीत कुमार ठाकुर, इन्हें अंतिम बार 23 जुलाई 2026 को देखा गया था। इनकी उम्र है 25 वर्ष, शरीर मजबूत है, रंग गोरा व चेहरा गोल है। इनका कद है 5 फुट 4 इंच। इन्होंने बाएं हाथ पर विनीत गुदा हुआ है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर गुरुग्राम पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। एक अनजान व्यक्ति जिनका एक्सीडेंट हुआ था, इन्हें पुस्ता रोड नियर साईं भवन गीता कॉलोनी से मिले हैं ये। इनकी उम्र है 50 वर्ष, शरीर पतला है, कद 5 फुट 6 इंच। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए पुलिस स्टेशन गीता कॉलोनी से संपर्क करें। गीता अपनी दो पुत्र

सहित लापता हैं, जिनका नाम है परी और सृष्टि। गीता की उम्र है 23 वर्ष, परी की उम्र है 6 वर्ष और सृष्टि की उम्र है 4 वर्ष। इनका शरीर सामान्य है, रंग गोरा है। इन्होंने नीले रंग का सूट, सफ़ेद प्लाजो, लाल दुपट्टा पहना हुआ है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। पूजा पत्नी जीतू सिंह, ग्राम धोना, 25 जून 2026 सुबह 10 बजे से लापता है। इनकी आयु है 30 वर्ष, कद 155 सेंटीमीटर, शरीर सामान्य है, रंग गेहुआ। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर थाना खानपुर, जनपद बुलंदशहर से संपर्क करें। ये थी खोए पाए व्यक्तियों संबंधी सूचनाएं। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: राह में मुश्किल होगी हजार, तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही।
1: मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तुम कर ना सको, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम पा ना सको, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का युवाओं के लिए खास कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जिनेली, और मेरे साथ हैं
1: प्रियंका। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आपका दिन उत्साह, नई उम्मीदों और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होगा। तो जुनेली, चलो बताते हैं आज का कार्यक्रम क्यों स्पेशल होने वाला है।
0: हाँ प्रियंका, तो ऐसा है कि अगले 45 मिनट तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे करियर और रोजगार के नए अवसरों की, एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी जो आपका हौसला बढ़ाएगी, जानेंगे नई शिक्षा नीति से जुड़ी एक अहम जानकारी, और इतिहास के पन्नों से कुछ खास बातें भी साझा करेंगे।
1: जुनीली, आज गुरु पूर्णिमा है, ऐसे में सबसे पहले अपने उन गुरुओं को याद करना तो बनता है जिन्होंने हमें हमारे जीवन में कुछ ना कुछ सिखाया है ना।
0: हाँ प्रियंका, बिल्कुल, गुरु का मार्गदर्शन ही तो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो आइए, गुरु पूर्णिमा के इस विशेष अवसर पर सुनते हैं फिल्म गुड्डी का ये सदाबहार गीत, हमको मन की शक्ति देना।

0: वाह, ये सुनकर तो स्कूल की यादें ताजा हो गई। स्कूल की प्रार्थना, टीचर्स का प्यार, है ना जुनेली?
1: हाँ प्रियंका, बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सफर, हमारे पहले सेगमेंट आज की बात से, जिसमें चर्चा होगी करियर, रोजगार और युवाओं के लिए उपलब्ध सुनहरे अवसरों की।
0: जुनेली, आजकल अक्सर कहा जाता है कि सिर्फ डिग्री ही काफी नहीं है, इस पर तुम्हारा क्या मानना है?
1: सही बात है, आज के समय में डिग्री के साथ सही कौशल यानी स्किल्स भी सफलता के लिए उतनी ही जरूरी है।
0: यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी रुचि और अपनी क्षमताओं को पहचानिए दोस्तों।
1: बिल्कुल सही कहा प्रियंका। वैसे सरकार भी युवाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है।
0: सरकार युवाओं के लिए हर स्तर पर प्रयासरत है जुनेली।
1: अब जैसे देखो प्रियंका, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। वहीं राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर नौकरी और करियर से जुड़ी उपयोगी जानकारी भी मिलती है।
0: यानी सही जानकारी और लगातार सीखने की आदत दोनों ही सफलता की राह को आसान बनाते हैं दोस्तों।
1: बिल्कुल सही कहा प्रियंका। तो चलिए इसी सकारात्मक सोच के साथ अब सुनते हैं अगला गीत।

0: दोस्तों, आज इंटरनेट के माध्यम से सीखना पहले से और कहीं ज्यादा आसान हो गया है। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुफ्त या कम शुल्क में नए नए कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं। हर दिन सिर्फ एक घंटा नई चीज सीखने की आदत भी आपके भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकती है।
1: बहुत खूब कहा प्रियंका। अगर कोई युवा अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहे तो तुम्हें पता है, सरकार भी हर संभव मदद के लिए तैयार रहती है।
0: हाँ, आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं का लाभ लेकर छोटे व्यवसाय के लिए भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
1: और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना जैसी पहल के तहत नए स्टार्टअप्स को आर्थिक सहायता दी जाती है। वही अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स मार्गदर्शन और संसाधन उपलब्ध कराते हैं प्रियंका।
0: यानी अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया और उसे साकार करने में भी आपका सरकार जो है आपके साथ खड़ी है, और इसका हाल ही में एक उदाहरण हमारे सामने है। स्पेस टेक स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी, जो विक्रम बन की सफल लॉन्चिंग कर अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने वाली भारत की पहली सफल प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी बन गई है।
1: बिल्कुल सही कहा प्रियंका। आज कई युवा नौकरी के साथ साथ स्वरोजगार और स्टार्टअप की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा विचार है दोस्तों, तो सही योजना और निरंतर प्रयास के साथ उसे सफल व्यवसाय में बदला जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात मेरे युवा श्रोताओं, असफलता से कभी डरिए मत। प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन ना होना या इंटरव्यू में सफलता न मिलना आपकी मंजिल का अंत नहीं होता है, बल्कि हर अनुभव आपको कुछ नया सिखाता है और अगले अवसर के लिए और भी ज्यादा बेहतर बनाता है।
0: याद रखिए, सफलता रातों रात नहीं मिलती। बूंद बूंद गिरता पानी भी एक दिन पत्थर पर निशान छोड़ देता है। लगातार सीखने की आदत और खुद पर विश्वास आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं।
1: तो दोस्तों, आज का संदेश बस इतना सा ही है। अपने सपनों को पहचानिए, अपनी क्षमताओं को निखारिए, नई स्किल्स सीखते रहिए और अवसरों का पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है दोस्तों जो आज तैयारी करते हैं।
0: तो आइए अपने सपनों को नई उड़ान देने वाले इस खूबसूरत से गीत को सुनते हैं।

0: उम्मीद के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले प्रेरणादायक सेगमेंट मन से माइक्रोफोन तक की ओर। आज की प्रस्तुति में हम पेश करते हैं दो कविताएं जिनमें जीवन का संदेश भी है और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास भी।
1: जी हाँ, हमारी छोटी सी लापरवाही न सिर्फ हमारी बल्कि हमारे अपनों की खुशियां भी छीन सकती है। वही एक और कविता जो हर युवा के लिए सकारात्मक संदेश देती है, मुश्किल चाहे जितनी भी हो, उम्मीदें और हौसला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी के साथ प्रस्तुत है आज की कविता मेरा पहला माइक से नवोदय कवि आदित्य भट्टर की।
2: हम लोग 200 मीटर या 2 मिनट बचाने के लिए यूटर्न तक नहीं जाते और रॉन्ग साइड चले जाते हैं, मगर दुर्भाग्यवश यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसका खामियाजा न केवल उस व्यक्ति को मगर उसके परिवार की 4 पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है, वही मेरी कविता बताती है। पहली कविता का शीर्षक है यूटर्न। कविता उस माँ का संवाद है जो अपना बेटा खो चुकी है और अब ख्वाबो ख्यालों में उससे बात करती है। वो कहती है, बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यूटर्न ले लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यूटर्न ले लेता। अब मौन व्रत में रहती हूँ, एक शब्द न कहती हूँ, दिखती हूँ कुछ झुकी झुकी और सहमी सहमी रहती। अब मौन व्रत में रहती हूँ, एक शब्द न कहती हूँ, दिखती हूँ कुछ झुकी झुकी और सहमी सहमी रहती हूँ। हर एक कौर तोड़ने पर अब तेरी याद रुलाती है, हर एक कौर तोड़ने पर अब तेरी याद रुलाती है। जी भर के रोने नहीं दे, ये दुनिया बहुत सताती है। कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, माँ के खातिर बापू से फिर से लड़ लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यूटर्न ले लेता। और माँ अगले बंद में पिता की व्यथा बताती है, तेरी बहन 12वीं में पढ़कर अब अव्वल नंबर ले आई, तेरी बहन 12वीं में पढ़कर अब अव्वल नंबर ले आई, तेरे बापू ने मगर मगाई तेरी पसंद की रसमलाई। अब किसको फिर वो डांटेंगे, किससे अपना दुख बांटेंगे, बैसाखी उनकी चटक गई, रो रो कर जीवन काटेंगे, रो रो कर जीवन काटेंगे। थोड़ा सा ही मगर अपने पुत्रत्व की ओर समर्पण कर लेता, थोड़ा सा ही मगर अपने पुत्रत्व की ओर समर्पण कर लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यूटर्न ले लेता। कविता का शीर्षक है हल्की मेधा हल्की वर्षा। हल्की मेधा हल्की वर्षा, खुश होने की बस इतनी मांग। हल्की मेधा हल्की वर्षा, खुश होने की बस इतनी मांग। जीवन सदा ही नित सृजन हो और हो उस पर स्वाभिमान, सभी प्रयास भी सफल दिखेंगे, शिरोमणि होगा श्रृंगार। और कभी कोई गाएगा तेरी प्रशंसा का विस्तार, तू जो हाथ उठा ले तो फिर नभ भी तेरी मुट्ठी में, तू जो हाथ उठा ले तो फिर नभ भी तेरी मुट्ठी में, तू जो हाथ बढ़ा ले तो फिर प्रेम वेग हो किसी हठी में, जो तू अपने भीतर झांके सभी दिव्यता तुझी में हो, जो तू अपने भीतर झांके सभी दिव्यता तुझी में हो, जो तू अपने बाहर झांके एक शिवाला सभी में हो, सभी में हो एक दोस्त तेरा, सभी में हो एक आचार्य भी, सभी करें प्रेम तुझसे, सभी को दे रसधारा तू भी, तू तपस तेजस भी तू, हो यौवन का श्रृंगार तुझी से, तू तपस तेजस भी तू, हो यौवन का श्रृंगार तुझी से, तू औरों से हार सही पर मान कभी ना हार खुद ही से, तू औरों से हार सही पर मान कभी ना हार खुद ही से, तू ही सबसे कोमल हो तुझमें ही सब फूल खिलें, तू ही सबसे कोमल हो तुझमें ही सब फूल खिलें, हो प्रार्थना नित भगवान से और फल अनुकूल मिले, हो प्रार्थना नित भगवान से और फल अनुकूल मिले। आकाशवाणी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यह अवसर दिया, धन्यवाद।
0: चलिए तो इसी के साथ अब समय है अगले गीत का, यूं ही चला चल मूवी स्वदेश से।

0: अब समय है हमारे कार्यक्रम के छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सेगमेंट क्विक बस का। आज का विषय है नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो दोस्तों, आज ही के दिन 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली थी।
1: यानी अब सिर्फ किताबों तक पढ़ाई सीमित नहीं है, बल्कि व्यवहारिक अनुभव और स्किल्स पर भी जोर दिया जा रहा है।
0: बिल्कुल प्रियंका, इसमें रचनात्मक सोच, कौशल विकास, समस्या समाधान और अनुभव के आधार पर सीखने पर विशेष महत्व दिया गया है दोस्तों।
1: और एक अच्छी बात तो यह है जुनेली, कि अब विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने की अधिक स्वतंत्रता मिल रही है। विज्ञान, कला, वाणिज्य जैसे पारंपरिक सीमाएं भी पहले की तुलना में काफी लचीली हो गई हैं।
0: बिल्कुल प्रियंका, इससे हर विद्यार्थी अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार आगे बढ़ सकता है।
1: लेकिन जुनेली, क्या नई शिक्षा नीति सिर्फ विषय चुनने तक ही सीमित है?
0: बिल्कुल तो नहीं प्रियंका, इसमें स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल लर्निंग, इंटर्नशिप, रिसर्च और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे पहलुओं को भी विशेष महत्व दिया गया है, ताकि विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ वास्तविक जीवन के अनुभव भी हासिल कर सके। तो चलिए अब इसी के साथ सुनते हैं अगला गीत, ख्वाबों के परिंदे।

0: जुनेली, नई शिक्षा नीति में मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि बच्चे बेहतर ढंग से सीख सकें।
1: हाँ, खूब कहा प्रियंका। और इसके साथ ही डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट क्लासरूम और ऑनलाइन शिक्षा को भी उतना ही बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि विद्यार्थी समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके।
0: तो यही था आज का क्विक बज। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों की नई उड़ान देखते रहिए।
1: क्योंकि दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छी नौकरी पाना ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदार, जागरूक और आत्मनिर्भर नागरिक बनना भी है। यदि हम सीखने की आदत बनाए रखें तो बदलती दुनिया में हर नई चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर, पर उससे पहले प्रस्तुत करते हैं एक प्यारा सा गीत दंगल फिल्म से, गिलहरिया।

0: अब चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट टुडेज इन हिस्ट्री कार्यक्रम के उस हिस्से की ओर जहां हम इतिहास के पन्नों से कुछ रोचक और प्रेरणादायक घटनाओं को याद करते हैं। जुनेली, क्या तुम्हें पता है 29 जुलाई इतिहास में क्यों खास माना जाता है?
1: हाँ प्रियंका, बिल्कुल। 29 जुलाई 1958 यानी आज ही के दिन अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की स्थापना हुई थी दोस्तों। इसका उद्देश्य था अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण

0: के क्षेत्र में शोध को नई दिशा देना।
1: सचमुच नासा की स्थापना ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की। इसके बाद ऐसे कई मिशन पूरे हुए जिन्होंने अंतरिक्ष के बारे में हमारी समझ को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और कई ऐसे मिशन जिन्होंने मानव इतिहास को ही बदल दिया।
0: जी बिल्कुल, साल 1969 में नासा के अपोलो 11 मिशन ने पूरी दुनिया को रोमांचित कर दिया, जब अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। नील आर्मस्ट्रांग के शब्द, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, आज भी इतिहास में अमर है प्रियंका।
1: इसके बाद नासा ने अंतरिक्ष में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की। हबल स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से ब्रह्मांड की अद्भुत तस्वीरें दुनिया के सामने आईं। वहीं मार्स रोवर्स स्प्रिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी और पर्सीवेरेंस ने मंगल ग्रह के बारे में नई जानकारियां भी जुटाईं।
0: प्रियंका, क्या तुम जानते हो आज नासा का आर्टेमिस मिशन भी पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय है। इस मिशन का उद्देश्य एक बार फिर इंसानों को चंद्रमा तक पहुंचाना और भविष्य में मंगल ग्रह पर मानव मिशन की तैयारी करना है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए विज्ञान और तकनीक के नए द्वार खोल रहा है दोस्तों।
1: बिल्कुल जुनेली, इसरो के चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1 जैसे मिशनों ने यह साबित कर दिया है कि सपने बड़े हों और मेहनत सच्ची हो तो भारत भी अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों को छू सकता है। यह उपलब्धियां हर युवा के लिए प्रेरणा है।
0: दोस्तों, नासा की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिज्ञासा, अनुसंधान और निरंतर प्रयास से असंभव दिखने वाले सपने भी साकार किए जा सकते हैं। विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच को नई उड़ान भी देता है।
1: तो आइए इसी के साथ सुनते हैं।
0: अब बात करते हैं एक और ऐतिहासिक दिवस की। आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट के बाद हुई थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर में घटती बाघों की संख्या के प्रति लोगों को जागरूक करना और उनके संरक्षण के लिए प्रयास बढ़ाना है।
1: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 75% से अधिक जंगली बाघ हमारे भारत में ही दहाड़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर और हमारे कई कड़े संरक्षण प्रयासों की वजह से आज देश में बाघों की संख्या पहले के मुताबिक कई गुना बढ़ गई है।
0: बाघ केवल हमारा राष्ट्रीय पशु ही नहीं, बल्कि स्वस्थ जंगलों और संतुलित पर्यावरण का प्रतीक भी है। तो आइए इस गर्व को संजोए और अपनी प्रकृति को बचाने में अपना हाथ बढ़ाए।
1: बिल्कुल, तो आइए आज के दिन यह संकल्प लें कि प्रकृति, वन्य जीवों और पर्यावरण के संरक्षण में अपनी छोटी सी भूमिका भी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएं।
0: इतिहास हमें केवल अतीत की जानकारी नहीं देता, बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा भी देता है। चाहे वो अंतरिक्ष की नई उड़ान हो या धरती पर वन्य जीवों का संरक्षण हो दोस्तों।
1: तो इसी के साथ सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना, जुनून।

0: अभी आप सुन रहे थे आपका अपना प्रोग्राम युववाणी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपने सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है yuvvanifeedback@gmail.com, yuvvanifeedback@gmail.com पर।
1: इसी के साथ आपसे लेते हैं अनुमति, कल फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। मैं हूँ प्रियंका।
0: और मैं हूँ जिनेली। अपना फीडबैक yuvvanifeedback@gmail.com पर भेजना न भूले। नमस्कार।
2: युववाणी कार्यक्रम अभी आपने सुना। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक में संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं।
4: एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही, पेपर लीक भी होता रहा। ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है। 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है।
3: विपक्ष के आचरण पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि जब एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष सुझाव देने की बजाय राजनीति कर रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जनगण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना वर्तमान कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की नीति को दर्शाता है जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुँचाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से बात कर राहत कार्यों की समीक्षा की। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि गृहमंत्री ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का एक राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को एक सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र थंका नायका, केरल भित्तिचित्र बसोहली, सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट फाइनल में जगह बना ली है। आज रात महिला शॉटपुट फाइनल में मनप्रीत कौर खेलेंगी। वहीं ऊंची कूद के फाइनल में श्रीशंकर मुरली और लोकेश सत्यानंद चुनौती पेश करेंगे। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। हॉकी इंडिया ने आज एशियाई खेलों के लिए 20 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम के कप्तान होंगे। ये प्रतियोगिता 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जापान के आईची नागोया में खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Lok Sabha today passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, the new bill is a reaffirmation of the government's commitment to safeguard the welfare of students and youth. Dr. Singh criticized leader of the opposition, Rahul Gandhi, for using unparliamentary language, calling it inappropriate and unfortunate. Replying to Mr. Gandhi's accusation against Union Home Minister Amit Shah, Dr. Singh said the government repeatedly clarified that no shots were fired and only tear gas was used. He said since no shots were fired, the question of issuing an order does not arise, as the authority to issue such an order rests with the magistrate, not the minister. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju strongly objected to the remarks of Rahul Gandhi and demanded that he should apologize in the House for his remarks. Earlier participating in the discussion, Leader of the Opposition and Congress MP Rahul Gandhi said the students' protest on the NEET issue was not violence or hatred, but a deep expression of the youth, and all political parties must respect this expression. The House also witnessed 2 brief adjournments during the discussion after the passage of the bill. Lok Sabha Speaker Om Birla adjourned the House till tomorrow. The Rajya Sabha has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. The bill will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The proposed legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jan Gana Mana. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine, or both. After passing of the bill, the upper house took up special mentions where members raised issues of urgent importance. After that, the Rajya Sabha was adjourned till 11 a.m. tomorrow. At least 40 people were killed and dozens injured in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK after a brutal crackdown by Pakistani forces amid escalating unrest in the region. Citing reports, the United Kashmir People's National Party today alleged that several others were injured and arbitrarily arrested between the 27th and 28th of this month in Rawalkot, Mirpur and other areas of the occupied territory. India has strongly condemned recent attacks on several maritime vessels in the Strait of Hormuz, saying targeting of commercial shipping and civilian infrastructure in the region must end. Permanent Representative of India to the United Nations, Parvathaneni Harish, said after a brief pause in the ongoing conflict in the region, there has been a worrying resumption of attacks and escalation of hostilities. Union Home Minister Amit Shah spoke with Assam Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sarma and reviewed the ongoing relief efforts in the wake of the devastating floods in Upper Assam. In a social media post, the Assam Chief Minister said Union Home Minister inquired about the situation on the ground and assured that the centre will continue to provide all necessary assistance for relief, restoration and rebuilding in the flood-affected areas. However, Odisha continues to grapple with a rapidly escalating flood emergency as swollen rivers inundate vast stretches, displacing thousands and disrupting normal life across several districts. The traditional Chhadi Mubarak, the holy mace of Lord Shiva and the sacred symbol of the annual Amarnath Yatra, began its ceremonial journey today from the historic Dashnami Akhada at Mysoma in Srinagar on the occasion of Guru Purnima. The Indian Meteorological Department has forecast very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh and Vidarbh for the day. And with that, we end this news bulletin.
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोकरंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी हमारे युवा साथियों को हमारा नमस्कार। भाई राजेश भाई, आज आप बिल्कुल खास दिन है। आज का दिन गुरु को समर्पित है और गुरु पूर्णिमा पूर्णिमा है। और जैसे कहते हैं ना कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा महेश्वर, गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्मा, तेसवें श्री गुरु नमः, यानी अर्थात गुरु की गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है और गुरु ही साक्षात ब्रह्म ब्रह्मा है।
1: बिल्कुल अश्विनी, सही कहा आपने। भले ही जो शुरुआती शिक्षा हमें घर से मिलती हो, लेकिन जो गुरु का जो ज्ञान है, असल ज्ञान होता है, जो आपको जीवन की सच्चाई का मार्गदर्शन वो दिखाते हैं। और आज का दिन, आज जैसा कि आपने खास कहा है, तो इसलिए क्योंकि गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति का वो महत्वपूर्ण पर्व है जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और इस दिन गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान, कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। और ये पर्व महान ऋषि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, तो इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और आज के दिन लोग बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंचते हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं जगह जगह सुबह से ही, और ख़ास आज के दिन को मनाया जा रहा है।
0: देखिए गुरु, पहले तो हमारे, जैसे आप, मैं यूँ कहूँ कि बालक जब जन्म लेता है घर के अंदर, तो पहली शिक्षा उनके माँ बाप से मिलती है। और जब वो दरवाजे से पांव बाहर निकालता है, तो वो स्कूल में जाता है, तो वहाँ गुरु मिलते हैं उसको। कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान कहाँ से, जैसे आप, एक मैं छोटा सा उदाहरण देकर समझाऊँ कि गुरु वो चीज़ है जो खुद नीचे, जैसे दिया होता है ना, जलता हुआ, दिए के नीचे अंधेरा रहता है, और लेकिन दीपक की रोशनी से हर वो कमरा रोशन होता है। वो गुरु सबको बांटता है, देता है, जिससे आप अंधकार से निकलकर इस भोर में आइए और शिक्षा ग्रहण कीजिए और कुछ ना कुछ इस देश में विकास के लिए भागीदारी बनिए आप।
1: बिल्कुल, तो ये बात तो गुरु की रही, लेकिन अशोक कुमार कुछ सवनमा के बारे में कह रहे हैं। तो क्या वो सवनमा में ना जेब नंदी, क्या कह रहे हैं,
0: आइए सुनते हैं।

सलो सोनवा के थारी में जवाना परोसलो चाहे भैया

0: सवन वामे ना जेबे नंदी। लेकिन देखिए अश्विनी, जब मेला कहीं लगता है ना गांव घर में, तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। जब आप मेले में जाते हैं, चारों तरफ रौनक, कहीं गाने चल रहे हैं, कहीं एकदम एकदम अलग अलग
1: देखिए
0: झूले
1: राजेश,
0: हैं,
1: बिल्कुल
0: कहीं
1: बिल्कुल राजेश भाई, देखिए ना, जब सावन का गीत सुन के आप भी लहरा रहे थे, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। देखिए सावन में तो हर जगह मेले लगते ही हैं, और सावन की फुहारों में खेत भी लहराती फसलें हों, चौपाल चौपाल बस्ती पर ढोलक हों, लोकगीत हों, हर मौसम में को एक नई उमंग देता है। और साथ साथ में हमारे काम को काम जो हम कर रहे होते खेत में, उनको उनको उनकी थकान को दूर करता है, और कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं जोड़ देता है मिट्टी से, खेतों से। जब मन करता है कि जब थक जाता है आदमी, चलो आज लौट चलते हैं गांव की तरफ। और जब हम गांव की तरफ लौटते हैं तो कहीं ना कहीं मेले लगे होते हैं हमारे गाँव में, और ऐसा ही मेले का जिक्र हमारे योगेश कुमार और साथी की आवाज़ में ये कुछ कह रहे हैं, तो सुन लेते हैं, और बातें आपसे और भी होंगी हमारी।
0: हाँ, कह तो रहे हैं लेकिन मेले को लेकर के कह रहे हैं कि भाई मेले तो तुम जाओगी लेकिन दिवाला हमारा निकलेगा।
1: चलिए सुनते हैं।

0: और अश्विनी, आखिर में एक और जल्दी से सुन लेते हैं बबीता और पूनम त्यागी का, जिसमें ये कहती है कि हाथों में तो मेहंदी लगी हुई, लेकिन कैसे लट जो है उसको उलझे लट को सुलझा दो जल्दी से।
1: मेले में तो जाकर आ गए हैं, और कम से कम भाई मेले में जाएंगे तो मेहंदी तो ज़रूर डिमांड आएगी यहाँ पर हमारी महिलाओं से, तो सुन लेते हैं बबीता और उर्फ पूनम त्यागी की आवाज़।

0: तो अश्विनी, इसी के साथ घड़ी कह रही है कि लोकरंजनी कार्यक्रम को समापन करने का वक्त हो गया है। तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। राजेश्वर अश्विनी का
1: और
0: और
1: प्रस्तुत करता है तुराश तुषार पराशर और संयोजक है शिवनंदन लाल, और हमें दीजिए इजाज़त, हमारा स्वीकार कीजिए, नमस्कार।

0: लोकरंजनी कार्यक्रम अभी आपने सुना। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: खेल खिलाड़ी सुनने वाले सभी श्रोताओं को नवीन कुमार शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं आपके मनभावन खेल कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में, खेल से जुड़ी तमाम खबरों के साथ और खास बातचीत के साथ और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के ताज़ा अपडेट के साथ। और मेरे साथ हैं अभिषेक कपिल।
3: नमस्ते श्रोताओं।
2: और अभिषेक, आज जो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल चल रहा है वहाँ शानदार प्रदर्शन चल रहा है भारतीयों का, और मुक्केबाजों की अगर खास तौर पर बात करें तो अभी जो ताज़ा अपडेट, बिल्कुल एकदम जो नई खबर, खुशखबरी है वो ये है कि साक्षी चौधरी ने 51 किलो भार वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत का मुक्केबाजी में पांचवां पदक तय कर लिया है। शॉटपुट में तेजिंद्रपाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। इसके अलावा पूरी रिपोर्ट और खास बातचीत भी आपको सुनाएंगे और ताज़ा अपडेट जो होगा वो भी हम उससे आपको अवगत कराएंगे। इसके अलावा बात होगी श्रीलंका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज 2 मैचों की होनी है, उसमें भारतीय टीम का चयन हुआ है, कैसी संभावनाएँ हैं, क्या है टीम, क्या है किसको मौका मिला है, और इस पर तमाम चर्चा होगी। एशियाड होने हैं इस साल और वहां हॉकी टीम से बड़ी उम्मीदें हैं कि हॉकी टीम अब शानदार प्रदर्शन करेगी और उसके लिए टीम घोषित हो चुकी है, डूरंट कप है। इसके अलावा दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप चल रही है, उस पर खास रिपोर्ट है अभिषेक कपिल की, अंडर 17 विश्व कुश्ती है। इसके अलावा भी तमाम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले बात ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं। इसकी ताजा पदक तालिका से भी आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल पेश है ये खबर।
4: कॉमनवेल्थ गेम्स।
2: ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय तिरंगा पूरी शान से नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हर बीतते दिन के साथ भारतीय खिलाड़ी अपने जज्बे जुनून का ऐसा परिचय दे रहे हैं कि पदकों की चमक में भारत का दमदार प्रदर्शन साफ नजर आ रहा है। वेटलिफ्टिंग से लेकर एथलेटिक्स, मुक्केबाजी से लेकर अन्य स्पर्धाओं तक भारतीय खिलाड़ियों ने न सिर्फ पोडियम पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है, बल्कि यह भी साबित किया है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत अब केवल भाग लेने नहीं बल्कि दबदबा बनाने उतरता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जब केवल 10 खेलों को ही शामिल किया गया तो पदक दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी उन खेलों और खिलाड़ियों पर भी आ गई थी जो पहले भी देश का मान बढ़ा चुके हैं। 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का भार उठाए वेटलिफ्टरों ने पदक दिलाने की जिम्मेदारी को बखूबी उठा रखा है। भारत के पदकों की संख्या 2 अंकों में पहुंच चुकी है। 12 में से 7 पदक वेटलिफ्टरों की झोली में आए हैं, जिनमें गोल्डन हैट्रिक यानी स्वर्ण पदकों की तिकड़ी लगाने वाली मीराबाई चानू से लेकर रजत पदक जीतने वाली हरजिंदर कौर शामिल हैं। भारत के जीते 12 पदकों में से 6 महिलाओं ने दिलाए हैं, यानी भारतीय नारी शक्ति की भी जय जयकार हो रही है। पदकों की संख्या में और बढ़ोतरी होना तय है क्योंकि भारत के 4 मुक्केबाज सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक पक्का कर चुके हैं। वेटलिफ्टिंग में महिलाओं के 59 किलोग्राम भार वर्ग में हरजिंदर ने कुल 227 किलोग्राम वजन उठाया, जिसमें स्नैच में 101 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 126 किलोग्राम शामिल है। यह उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा। हालांकि 63 भार वर्ग में निरुपमा देवी पदक नहीं जीत सकी और तीनों प्रयास विफल रहने के बाद नो लिफ्ट के साथ उनका अभियान समाप्त हो गया। वेटलिफ्टिंग में केवल निरुपमा ही ऐसी भारतीय खिलाड़ी रही जो पोडियम फिनिश नहीं कर सकी। हरजिंदर कौर का रजत भारतीय वेटलिफ्टरों का तीसरा सिल्वर मेडल रहा। इससे पहले ऋषिकांत सिंह, वल्लूरी अजय बाबू भी दूसरे स्थान पर रहकर पोडियम फिनिश कर चुके हैं, जबकि विंध्या रानी देवी ने

0: कांस्य पदक जीता था। लगता है वेटलिफ्टरों और ट्रैक एंड फील्ड के खिलाड़ियों के बीच एक स्वस्थ होड़ चल रही है कि भारत को कौन ज्यादा पदक दिलाता है। 10,000 मीटर की रेस में राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी गुलबीर सिंह ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वह राष्ट्रमंडल खेलों में 10,000 मीटर की स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं।
1: अच्छा हुआ क्योंकि हमारे देश के लिए मेडल आया है, क्योंकि जिस हिसाब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस हिसाब से हमारा अच्छा हो गया, कोच को खुशी है क्या, और जितने भी हमारे जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमें ट्रेनिंग कंटिन्यू चल रही है अच्छा लग रहा है। कॉन्फिडेंस तो ये है क्या, जितना सर हम जितना बाहर के जितने एथलीट हैं उनके साथ कम्पीटिंग कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या क्या अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो अंदर की है ना, हम इनके साथ कैसे दौड़ेंगे, क्या हम क्या हुआ, बड़े प्लेयर के साथ खेलते हैं तो हमारे अंदर की जो फीलिंग है ना वो निकल जाती है, क्योंकि हम ये लगता है हम मेडल जीते किस हिसाब से वो।
0: गुलबीर ने 27:49.78 का समय निकाला। स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया के रॉबिन्सन और कांस्य पदक आइल ऑफ मैन के डेविड मुलारकी ने जीता। लगातार बारिश के बीच गुलबीर शुरुआत से ही उस लीड करने वाले एथलीटों के साथ बने रहे। अंतिम टीम लैप में उन्होंने गति बढ़ाई। कड़े दबाव के बीच गुलबीर ने दूसरा स्थान सुरक्षित रखा। यह ट्रैक एंड फील्ड में भारत का दूसरा पदक रहा। इससे पहले सर्वेश कुशारे ने ऊंची कूद में रजत पदक दिलाया था। महिलाओं की ऊंची कूद में एशियाई चैंपियन पूजा सिंह 1.82 मीटर की ऊंचाई पार करने में असफल रही और पदक की दौड़ से बाहर हो गई। मुक्केबाजी के रिंग में भी पदक पक्के हो रहे हैं, बस पदक का रंग तय होना बाकी है। महिलाओं में लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पहले ही पदक पक्का कर लिया है। उसके बाद प्रीति पवार, प्रिया घंघास और जादूमणि सिंह ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्रवीण हुड्डा और कपिल पोखरिया अंतिम 8 के मुकाबलों में हार कर जरूर बाहर हो गए हैं। महिलाओं के 54 किलोग्राम भार वर्ग में एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता प्रीति ने उत्तरी आयरलैंड की निकोल क्लाइड को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। वहीं महिलाओं के 60 भार वर्ग में प्रिया ने स्कॉटलैंड की नियाम मिशेल को 4-1 से पराजित किया। पुरुषों के 55 भार वर्ग में जादूमणि सिंह ने जाम्बिया के मवेंगो मवाले को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। जादूमणि ने अपने प्रतिद्वंदी को लय हासिल नहीं करने दी और ताबड़तोड़ मुक्कों से उन्हें पस्त कर दिया। जाम्बिया के मवाले तो बस पंच से बचते ही नजर आए। प्रवीण हुड्डा को इंग्लैंड की साशा हिक्की से 2-3 के कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कपिल पोखरिया का राष्ट्रमंडल खेलों में अभियान क्वार्टर फाइनल में थम गया। उन्हें 90 भार वर्ग में रॉबर्ट मैकेल्टिन ने हराया। तैराकी में कड़ी प्रतिस्पर्धा है और श्रीहरि नटराज 100 मीटर बैकस्ट्रोक के फाइनल में नहीं पहुंच सके। पैरा तैराकी में RVV BK बुद्धिगना और अली इमाम भी पुरुषों की 50 मीटर फ्रीस्टाइल S13 स्पर्धा में पदक की दौड़ में पिछड़ गए। आज होने वाले भारतीय खिलाड़ियों के मुकाबलों की बात करें तो तेजेंद्र पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गोला फेंक में उतरेंगे। पुरुष लंबी कूद के फाइनल में मुरली श्रीडंकर और लोकेश सत्यनाथन पदक की रेस में शामिल होंगे। पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में यशास पलाक्षा और संतोष कुमार तमिल रासन हीट्स में उतरेंगे। महिला गोला फेंक में मनप्रीत कौर और पारुल चौधरी 3,000 मीटर स्टीपल चेस के फाइनल में देर रात उतरेंगी। पैरा एथलेटिक्स में पुरुष चक्का फेंक में F42-44 में और AF61-64 फाइनल में देवेंद्र कुमार और सागर थयाल से भी उम्मीद रहेंगी। पुरुषों के 100 मीटर T47 फाइनल में मोहम्मद बासिल, मॉर्सिगन काथ और दिलीप महादू छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे। जहां तक बात मुक्केबाजी की है तो महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में साक्षी, अरुंधति चौधरी, जैस्मिन लंबोरिया अपने अपने भार वर्ग सेमीफाइनल में पहुंचने का लक्ष्य लेकर रिंग में उतरेंगी। पुरुष वर्ग में सचिन सिवास, अंकुश यादव, नरेंद्र भरवाल भी क्वार्टर फाइनल जीतकर पदक पक्का करना चाहेंगे। कल भाला फेंक में भारत के स्टार एथलीट दोहरे ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा पर निगाहें रहेंगी। The Commonwealth Games। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा हमने जिक्र किया कि आज जो मुकाबले हैं उनमें जो मुक्केबाजों पर नजर है, और अच्छी खबर ये है जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया था कि भारत की मुक्केबाज साक्षी ने पदक पक्का कर लिया है, वो सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जो 51 भार वर्ग में महिला मुक्केबाजी में चल रहा है राष्ट्रमंडल खेलों में, वहां उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में उत्तरी आयरलैंड की कैटलिन फ्रायर्स को 5-0 से पराजित किया और सभी 5 जजों के जो निर्णय है उनके पक्ष में रहा। इसके अलावा 70 भार वर्ग में अभी मुकाबला चल रहा है, जहां भारत की अरुंधति चौधरी न्यूजीलैंड की हेंडरसन के खिलाफ मुकाबला खेल रही हैं। इसमें जैसे ही अपडेट आता है हम आपको अवगत कराते हैं। और अन्य स्पर्धों की बात करें, जैसे तेजेंद्र पाल सिंह तूर पर निगाहें हैं, 2 बार के एशियाई खेलों के चैंपियन हैं तेजेंद्र पाल सिंह तूर, और

0: मीटर का आंकड़ा पार करने वाले या सर्वश्रेष्ठ 12 को बृहस्पतिवार को होने वाले फाइनल में जगह मिली है। न्यूजीलैंड के टॉम वॉल्श ने 21.03 का थ्रू लगाकर पहला स्थान हासिल किया। तूर का सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 21.03 मीटर का है, जबकि उनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड 21.77 मीटर का है, जो उन्होंने 2023 में बनाया था। पिछले दो एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता तूर दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे हैं। वे 2018 में गोल्ड कोस्ट में 8वें स्थान पर थे, जबकि पिछली बार चोट के कारण उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। इसके अलावा अगर बात की जाए अन्य जो स्पर्धाएं हैं और उसमें ताज़ा अपडेट की बात की जाए, तो वेट लिफ्टिंग में हालांकि अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन अभी जो ताज़ा रिपोर्ट है वहां भारतीय भारोत्तोलक संजना राष्ट्रमंडल खेलों की महिलाओं की 77 किलो भार वर्ग में बाहर हो गई हैं। इस नेच में उनके तीनों प्रयास विफल रहे। 19 वर्ष की संजना 94 किलो का लक्ष्य तीनों प्रयास में हासिल नहीं कर सकी, जिससे क्लीन एंड जर्क के पहले ही उनकी चुनौती समाप्त हो गई। इस नेच में एक भी लिफ्ट वैध नहीं होने के कारण वे क्लीन एंड जर्क में भाग नहीं ले सकती थी। इससे पहले महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में निरुपमा देवी के नाम के आगे भी डिड नॉट फिनिश, मुकाबला पूरा नहीं कर सकी थी, और वह क्लीन एंड जर्क में तीनों प्रयासों में नाकाम रही, जबकि स्नेच में उन्होंने 93 किलो वजन उठाया था। संजना ने प्रतिस्पर्धा में स्नेच में 94 और क्लीन एंड जर्क में 182 किलो का लक्ष्य रखा था। तो दोस्तों ये तो बात हुई अभी ताज़ा अपडेट की, और जो अपडेट हमें मिलती है उस पर हम आपको अवगत कराते हैं। लेकिन अभी जब जो प्रदर्शन रहा आज के मुकाबले शुरू होने से पहले भारतीय जो प्रदर्शन रहा उस पर हमने खास बातचीत की खेल पत्रकार मोना पार्थार्थी से। तो भारतीय प्रदर्शन पर उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं।
1: भारत की टीम गई थी तभी माना जा रहा था कि वो प्रबल दावेदारों में से होंगे और 10,000 मीटर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए। और आपने अगर उनकी रेस देखी हो तो आखिरी लैप में जिस तरह उन्होंने जबरदस्त तेजी दिखाते हुए बहुत कम समय निकाला और वहीं से वो दूसरे स्थान पर आगे थे, तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन है और एशियाई खेलों से पहले जरूर भारत का मनोबल काफी बड़ा होगा।
2: जो राष्ट्रमंडल खेल है वहाँ एक कड़ा कंपटीशन होता है ट्रैक एंड फील्ड में, और जैसे आपने कहा कि आप रेस में एक बड़ा कड़ी प्रतिस्पर्धा थी और बारिश भी हो रही थी और उसके बीच में मौसम भी एक चैलेंज है, तो वहां भी उन्होंने चुनौतियों से पार पाया।
1: एक्चुअली जब इन लोगों की जो ट्रेनिंग हुई है वो भी इतनी अच्छी व्यवस्थित हुई है कि हर तरह की परिस्थिति के लिए अब इनको ट्रेन किया जाता है, तो यहाँ सारी कठिन प्रतिस्पर्धा थी, मौसम खराब था, लेकिन स्टेमिना और एंड्योरेंस का खेल होता है सारा, और वहां पर गुलवीर ने काफी अच्छा प्रदर्शन उनका रहा।
2: अगर वेटलिफ्टिंग की बात करें तो वहां भी एक वेटलिफ्टर भी अच्छे पदक दिला रहे हैं, 7 पदक अब तक दिला चुके हैं, और गोल्ड की बात करें तो भारतीय महिलाएं भी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, दोनों गोल्ड मीराबाई और शर्मिला ने दिलाए हैं।
1: जी बिल्कुल, भारोत्तोलन में मीराबाई चानू की खासतौर पर यहाँ तारीफ करनी होगी क्योंकि उनकी हैट्रिक है। उन्होंने गोल्ड कोस्ट में गोल्ड मेडल जीता था, बर्मिंघम में गोल्ड मेडल जीता था और यहाँ उस प्रदर्शन को दोहराया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंधे की बहुत ही गंभीर चोट से उबरने के बाद उन्होंने वापसी की है। उस चोट की वजह से वो एशियाई चैंपियनशिप नहीं खेल पाई थी और ग्लासगो, क्योंकि 2014 में ग्लासगो में ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का पहली बार सबूत दिया था और वहां से ओलंपिक में जो उनका प्रदर्शन रहा वहां टोक्यो में उन्होंने रजत पदक जीता और उसके बाद लगातार अच्छा कंसिस्टेंसी जिसको कहते हैं वो उनके प्रदर्शन में नजर आती है। और यहाँ भी पहले दोनों स्नैच और क्लीन एंड जर्क में पहले दोनों लिफ्ट उनके क्लीन नहीं थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरह से वजन उठाया वाकई में 190 किलो कुल वजन, और जो दूसरे स्थान पर रही वो 168 किलो वजन था, तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना गैप था पहले और दूसरे स्थान के बीच में। तो मीराबाई से जो उम्मीद की गई थी वो उस पर अब बिल्कुल खरी उतरी,
2: बिल्कुल 16 आने खरी उतरी हैं। लेकिन अभी ये जो वेटलिफ्टिंग में जो परफॉर्मेंस है मीरा ने जो किया उसके बाद पूरी टीम जो है वेटलिफ्टिंग की एक अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हरजिंदर कौर ने 69 भार वर्ग में मेडल दिलाया है।
1: जी बिल्कुल, हरजिंदर कौर ने तीनों में अपना सर्वश्रेष्ठ निजी प्रदर्शन भी किया, क्लीन एंड जर्क में, स्नैच में और कुल वजन में, और बर्मिंघम में भी आपको याद होगा कि उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और यहाँ पर उन्होंने उसका कलर बेटर किया है। तो दो बार राष्ट्रमंडल खेलों का उन्होंने स्नैच में रिकॉर्ड बेहतर किया और फिर 99 किलो वजन उठाया, फिर एक रिकॉर्ड बनाया और आखिरी प्रयास में 101 किलो वजन उठाया, फिर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। और इसी तरह क्लीन एंड जर्क में भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया।

0: मामूली अंतर से वो स्वर्ण पदक से चूक गई, लेकिन वाकई में उनका प्रदर्शन बहुत ही काबिले तारीफ रहा।
1: तो राष्ट्रमंडल खेलों का जो प्रदर्शन अच्छा रहेगा तो इससे आगे फिर एशिया में भी एक मनोबल बढ़ता है।
0: जी बिल्कुल, वैसे देखा जाए तो देखिए दोनों में प्रतियोगिता का जो स्तर है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। कुछ खेलों में, एशियाई खेलों में ज्यादा कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है और कुछ खेलों में, राष्ट्रमंडल खेलों में कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। लेकिन ये जरूर है कि आप एक किसी बड़े टूर्नामेंट से अच्छा प्रदर्शन करके जाते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि ग्लासगो में जो भारत का डोमिनेंस जिन खेलों में है, चाहे वो कुश्ती हो, चाहे वो हॉकी हो, बैडमिंटन हो, वो खेल राष्ट्रमंडल खेलों का इस बार हिस्सा नहीं है। उसके बावजूद जिस तरह से पदक आ रहे हैं तो एशियाई खेल बहुत ज्यादा दूर रह नहीं गए हैं, उनके लिए खिलाड़ियों का जरूर मनोबल बढ़ेगा।
1: पदकों की बात की तो अभी मुक्केबाज जिस तरह उन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक तय किया है, रंग तय करना है रिंग में, कि उनका प्रदर्शन भी शानदार है लगातार।
0: मुक्केबाजी में देखिए लवलीना जो तो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं वो तो बिना रिंग में उतरे ही उनका पदक पक्का हो गया था सेमीफाइनल में, क्योंकि अगर आप सेमीफाइनल में पहुंच गए तो आपका ब्रॉन्ज जो है वो पक्का हो जाता है। तो मुक्केबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और प्रीति पवार हो, प्रिया घंगास हो, जादू मणि सिंह हो, सबने भारत के लिए पदक सुनिश्चित किए। तो एक अच्छा इसको वो कहा जाएगा तैयारी जिसको कहते हैं वो एशियाई खेलों के लिए बहुत अच्छी तैयारी कही जाएगी। और आप पहले शर्मिला की बात करते हैं, शॉटपुट पैरा एथलीट है, 2 साल की उम्र में पोलियो का शिकार हो गई थी, उन्होंने प्रदर्शन किया है। मतलब पैरा एथलीटों की जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहता है वो खास तौर पे वाकई प्रेरणा स्रोत होता है। और यहाँ पर शर्मिला ने शॉटपुट में जो गोल्ड मेडल लिया है उससे कई खिलाड़ियों को प्रेरणा मिली होगी।
1: जी बिल्कुल, भारतीय खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और पदकों का ये सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है और लगातार उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही प्रदर्शन शानदार रहेगा और जो खिलाड़ी पदक जीते हैं, जीत चुके हैं, वो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। उनके जज्बे और साहस और प्रदर्शन को सलाम। आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोजी।
2: जी हाँ, बात ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की जारी रखते हैं। जारी इसलिए रखते हैं कि भारतीयों का प्रदर्शन इतना पंचदार, दमदार और शानदार है कि अभी अभी ताज़ा अपडेट ये है कि महिलाओं के 70 भार वर्ग मुक्केबाजी मुकाबले में भारत की अरुंधति चौधरी ने न्यूजीलैंड के एंडरसन को अंकों के आधार पर 3-1 से जीत हासिल की है क्वार्टर फाइनल में और सेमीफाइनल में पहुँच कर पदक तय कर लिया है। जैसा हमने पहले कहा कि रिंग में अब पदकों का रंग तय होना है। जिस तरह भारतीय मुक्केबाज शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं दोनों ही वर्गों में, निश्चित रूप से भारतीय मुक्केबाज इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में एक शानदार और ऐतिहासिक प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। बात तैराकी की भी कर लेते हैं। साजन प्रकाश राष्ट्रमंडल खेलों की पुरुषों की 200 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा के फाइनल में नहीं पहुंच सके हैं और अपनी हीट में 5वें और कुल 20वें स्थान पर रहे 8 सर्वश्रेष्ठ तैराकी फाइनल में पहुंचते हैं। साजन 1.21.99 सेकंड का समय निकालकर काफी पीछे थे। उनका सर्वश्रेष्ठ निजी प्रदर्शन और राष्ट्रीय रिकॉर्ड 1.4661 सेकंड का है। 32 वर्ष के साजन भारत के अनिश गौड़ा से भी पीछे रहे जो पदार्पण करते हुए पहला अपना राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार हिस्सा ले रहे हैं और वो 1.5164 सेकंड का समय निकालकर 18वें स्थान पर रहे। इससे पहले साजन पुरुषों की 50 मीटर बटरफ्लाई और 200 मीटर बटरफ्लाई में भी सेमीफाइनल में नहीं जा सके थे। तो राष्ट्रमंडल खेलों और अन्य खेलों पर हम अपडेट से अवगत कराते रहेंगे।

0: बात राष्ट्रमंडल खेलों के बाद एशियाई खेल भी होने हैं साल, और इसके लिए हॉकी टीम भी चुनी गई है। तो अभिषेक क्या बताना चाहेंगे जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम चुनी गई है?
1: जापान के एची नागोया में आयोजित होने वाले 20वें एशियाई खेल 2026 के लिए हॉकी इंडिया ने 20 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम का ऐलान कर दिया है। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इन खेलों में भारतीय टीम अपने खिताब की रक्षा करने और स्वर्ण पदक पर फिर से कब्जा जमाने के इरादे से मैदान में उतरेगी। हॉकी प्रतियोगिता के सभी मुकाबले जापान के काकामिगारा स्थित गिफो प्रीफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में खेले जाएंगे। और सबसे अहम बात, इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम को सीधे लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक का टिकट मिलेगा। अब बात करते हैं हमारी मैन इन ब्लू टीम इंडिया की। टीम की कमान एक बार फिर स्टार ट्रैक फ्लिकर और कप्तान हरमनप्रीत सिंह के हाथों में होगी, जिन्होंने 2023 हांगझाऊ एशियाई खेलों में भारत को ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाया था। वहीं टीम में अनुभव का तड़का लगाने के लिए भारत के सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले अनुभवी मिडफील्डर मनप्रीत सिंह भी मौजूद हैं। भारत को इस बार पूल ए में रखा गया है, जहां उसका सामना मेजबान जापान, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया से होगा। भारत अपना पहला मुकाबला 20 सितंबर को इंडोनेशिया के खिलाफ खेलेगा। आइए एक नजर डालते हैं पूरी टीम पर। गोलकीपर के लिए मोहित एचएस और सूरज करकेरा को चुना गया है, जबकि डिफेंडर्स के लिए जर्मनप्रीत सिंह, कप्तान हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय सुमित और यशदीप सिवाच का चयन हुआ है। मिडफील्डर्स में राजविंदर सिंह, राजकुमार पाल, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलकंठ शर्मा और विवेक सागर प्रसाद को जगह मिली है। फॉरवर्ड्स के लिए दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मनदीप सिंह और अभिषेक को टीम में चुना गया है। टीम के मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने कहा है कि ये एक बेहद संतुलित और अनुभवी टीम है, जिसका एकमात्र लक्ष्य जापान में जीत हासिल कर ओलंपिक क्वालिफिकेशन पक्का करना है। अगर एशियाई खेलों में भारत के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बात करें तो एशियाई खेलों के इतिहास में भारतीय हॉकी टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है। भारत ने अब तक एशियन गेम्स में 4 बार स्वर्ण और 9 रजत और 3 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं।
0: और अब बात हॉकी के बाद क्यों ना क्रिकेट की करें अभिषेक। और क्रिकेट पे जो श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज होनी है अगले महीने, उस पर क्या अपडेट है, भारतीय टीम की क्या संभावनाएं हैं, क्या एक खास रिपोर्ट अभिषेक कपिल की।
1: बीसीसीआई ने अगले महीने श्रीलंका दौरे पर होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत खेले जाने वाली इस श्रृंखला में शुभमन गिल टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि केएल राहुल उपकप्तान होंगे। टीम में यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड, देवदत्त पडिकल और पहली बार टेस्ट टीम में चुने गए सारांश जैन को जगह मिली है। अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है। आईपीएल 2026 के दौरान एल्बो की चोट के कारण वे टेस्ट टीम से बाहर थे। श्रीलंका के स्पिन अनुकूल परिस्थितियों में उनकी वापसी भारतीय टीम के लिए बड़ा मजबूती का कारण मानी जा रही है। वहीं साई सुदर्शन और जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया गया है, लेकिन पहले टेस्ट में उनका खेलना बीसीसीआई की मेडिकल टीम से मिलने वाली फिटनेस मंजूरी पर निर्भर करेगा। भारतीय टीम में पहली बार जगह बनाने वाले सारांश जैन पर भी सबकी नजरें रहेंगी। घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर उन्होंने राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई है। वहीं वॉशिंगटन सुंदर चोट के कारण इस दौरे के लिए उपलब्ध नहीं है। भारत और श्रीलंका के बीच ये टेस्ट सीरीज करीब 9 साल बाद श्रीलंका में खेली जा रही पूर्ण टेस्ट श्रृंखला होगी। दोनों मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं और दोनों टीमें अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। श्रृंखला से पहले भारतीय टीम 7 अगस्त से कोलंबो में 4 दिवसीय अभ्यास मैच खेलेगी। इसके बाद पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा और अंतिम टेस्ट 23 से 27 अगस्त के बीच कोलंबो के सिन्हलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर होगा। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अभी अपनी टीम की घोषणा नहीं की है। हालांकि कप्तान धनंजय डी सिल्वा के नेतृत्व में कमिंदु मेंदिस, पथुम निशांका, दिनेश चांदीमल, कुशल मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, अस्तिता फर्नाडो और लाहिरू कुमारा जैसे खिलाड़ियों के चयन की संभावना है। भारतीय टीम का श्रीलंका में रिकॉर्ड काफी मजबूत रहा है। भारत ने वर्ष 2008 के बाद से श्रीलंका के खिलाफ कोई द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज नहीं गंवाई है। हालांकि घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर श्रीलंका इस बार उस रिकॉर्ड को बदलने की कोशिश करेगा।
0: और अभिषेक, क्यों ना अभी राष्ट्रमंडल खेलों की बात कर रहे हैं, शानदार प्रदर्शन चल रहा है भारतीयों का और राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस भी चल रही है। और पहले, लेकिन उससे पहले आप खास बातचीत की रविंदर सिंह जो कि जाने माने कोच हैं उनसे, भारतीय टीम की जो श्रीलंका टेस्ट सीरीज होनी है उस पर, तो क्या कहा उन्होंने भारतीय संभावनाओं पर, आइए जानते हैं।
2: यंग लड़के हैं और अब सब में इतना जोश है अपने परफॉर्म करने का, सबको पता है कि एक बार ये अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उससे अपनी जगह पक्की बनाते हैं। तो नए लड़कों ने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया और श्रीलंका में पहले भी भारतीय टीम अच्छा परफॉर्म कर चुकी है। 2017-18 में गई थी टीम खेलने और 2-3, 3-0 की से हराया था उन्होंने वहां। विकेट आपको पता है कि इस समय जो मौसम है वहां बारिश और से ज्यादा होती है, विकेट तो टर्निंग ट्रैक होते हैं, स्पिनर्स को मदद ज्यादा करता है। यही देखने देखेंगे भारतीय टीम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है।
3: तो सर अभी शुभमन

0: खुद एक अच्छे कप्तान भी रहे, कप्तान भी साबित कर रहे, युवा कप्तान है और बैटिंग में टीम की एक स्ट्रेंथ है, तो इससे एक ये बेनिफिट है कि अग्रिम मोर्चे से नेतृत्व की बात होती है। तो शुभमन गिल,
1: बिल्कुल हाँ बिल्कुल, शुभमन गिल देखिए इस समय बहुत अच्छी फॉर्म में भी है और उन्होंने काफी करके भी दिखाया है, यहाँ पे आईपीएल में दिखाया, उसके बाद टेस्ट सीरीज में जो भी हुई है उनमें भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, वनडे में अच्छा परफॉर्म किया, एक टेस्टेड प्लेयर है और कप्तान है वो, बेबाकी और इस समय लीडिंग फॉर्म में फ्रंट है और उनको देख के सारे जो नए लड़के हैं वो भी जरूर मोटिवेट होंगे।
0: तो सर वो स्पिन का एक डोमिनेशन रहता है, तो रविंद्र जडेजा हालांकि चोट से वापसी कर रहे हैं लेकिन अनुभवी हैं, कुलदीप है।
1: बिल्कुल बढ़िया अटैक है, मुझे और सब मुझे पता है, और वे देखे मैं कि सरान जैन को भी लिया ने डेब्यू कराया है, सरान जैन अभी काफी मेरे ख्याल से उनकी एज काफी है लेकिन काफी दिन से मेहनत कर रहे थे और डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, मानव सुतर भी है मेरे ख्याल से टीम में, उन्होंने भी लिया उनको भी, तो टीम एक अच्छी है, यंगस्टर लड़के हैं और कुलदीप और जडेजा का जो अनुभव है वो बिल्कुल बिल्कुल काफी काम आएगा वहां।
0: सर अभी अगर पेस अटैक की बात करें तो बुमराह, हालांकि बुमराह का कार्यभार प्रबंधन को एक रहता है कि भाई आगे उन्हें, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, आकाश।
1: हाँ बिल्कुल, देखिए मीडियम पेसर अच्छे हैं, ये प्रसिद्ध किस्ता बहुत देर से खेल रहे हैं, अच्छा अच्छा मीडियम पेस और बॉलिंग का अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये विकेट्स पर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ तीन मीडियम तीन से चार मीडियम पेसर खिलाने हैं या तीन मीडियम पेसर या तीन स्पिनर्स खिलाने हैं, वो विकेट देखिए पता चल पाए।
0: सिराज भी लगा चाहेंगे कि वो बेहतर करके अपना एक वो अपने स्थान जो है वो पक्का करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आगे सीरीज वगैरह इंग्लैंड वगैरह की सीरीज भी है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की भी है, तो इसमें डेफिनेटली ये होगा कि सिराज और अर्शदीप और आकाशदीप, आकाशदीप ने काफी टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्म पहले ही कर चुके हैं आकाशदीप, और ये एक चार प्लेयर्स है प्रसिद्ध कृष्णा, ये चार मीडियम पेसर है, अब उनमें से सबको पता है कि एक बार अच्छा परफॉर्म करने के बाद आपका प्लेस आगे सुरक्षित हो जाता है।
2: जी हाँ बिल्कुल, एक बार श्रेष्ठ अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको अपनी इस टीम में स्थान पक्का करते हैं। और अब बात राष्ट्रमंडल खेल चैंपियनशिप की करेंगे, राष्ट्रमंडल जो चैंपियनशिप चल रही है टेबल टेनिस की दिल्ली में, उस पर क्या रिपोर्ट है अभिषेक?
3: नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने अभियान को जीत के साथ आगे बढ़ाया है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारतीय टीमों ने लगातार प्रभावशाली खेल दिखाते हुए शानदार खेल का प्रदर्शन किया। पुरुष वर्ग में शीर्ष वर्गीय खिलाड़ी मानव ठक्कर ने एक बार फिर अपनी शानदार फॉर्म का परिचय दिया। चोट से जूझने के बावजूद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के चुलोंग नी को सीधे तीन गेमों में 11-7, 11-6 और 11-4 से हराकर भारत को मजबूत बढ़त दिलाई। इससे पहले अनुभवी खिलाड़ी साथियान ज्ञानशेखरन ने आदित्य सरीन को 11-8, 11-8 और 11-8 से मात देकर टीम का खाता खोला। इसके बाद मानुष शाह ने रोमांचक मुकाबले में निकोलस वेन झेंगलम को 5 गेमों तक चले संघर्ष में 11-7, 9-11, 12-10, 11-13 और 11-3 से हराकर भारत को ऑस्ट्रेलिया पर 3-0 की शानदार जीत दिलाई। इससे पहले भारतीय पुरुष टीम ने श्रीलंका और वेल्स को भी 3-0 के समान अंतर से हराकर अपनी दावेदारी मजबूत कर दी थी। वेल्स के खिलाफ मानव ठक्कर ने हैरिसन डोचर्टी को सीधे गेमों में हराया, जबकि श्रीलंका के विरुद्ध भी भारतीय खिलाड़ियों ने एक तरफा जीत दर्ज करते हुए अपनी जीत का सिलसिला कायम रखा। लगातार 3 मुकाबले जीतने के बाद भारतीय पुरुष टीम ग्रुप में मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। महिला वर्ग में भी भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। दूसरे वर्गीय भारत ने अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका को 3-0 से हराकर अभियान की बेहतरीन शुरुआत की। श्रीजा अकुला, स्वास्तिका घोष और सुतीर्ता मुखर्जी ने अपने अपने मुकाबले जीतकर टीम को आसान जीत दिलाई।
2: अभिषेक कौन ने क्या खबर है आप?
3: वहीं बात करें इस चैंपियनशिप में आज के मुकाबलों में, तो भारतीय पुरुष टीम ने पहले कनाडा को 3-0 से हराया। इसके बाद अपने अगले मुकाबले में न्यूजीलैंड को भी 3-0 से शिकस्त दी। वहीं भारतीय महिला टीम ने भी कनाडा के खिलाफ बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए 3-0 से जीत दर्ज की। इसके बाद अगर हम बात करें अजरबैजान की राजधानी बाकू में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की, तो ग्रीको रोमन में भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। सिर्फ भारतीय ग्रीको रोमन रेसलर कुनाल डागर ही मेडल राउंड तक पहुंचे, लेकिन अजरबैजान के ओरखान हबीबली से 2 पॉइंट से हारकर मेडल जीतने से चूक गए। फाइनल स्कोर 5-7 रहा। पिछले साल इसी चैंपियनशिप में भारतीय ग्रीको रोमन रेसलर ने गोल्ड मेडल जीता था। हरदीप ने 110 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिला कुश्ती में भी भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा।
2: अब बात डोरेंट कप की, तो TRAUFC ने नेरोका को से गोल रहित ड्रॉ खेला, जबकि साउथ यूनाइटेड ने CSF प्रोटेक्टर को 2-0 से पराजित कर दिया है। वनडे रैंकिंग में शुभमन गिल नंबर वन बने हुए हैं। ताइपे सिटी में चल रही बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रणय ने शानदार प्रदर्शन किया है और उन्नति हुड्डा दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। फिलहाल मुझे यानी नवीन कुमार शर्मा को और अपने साथी अभिषेक कपिल के साथ और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ अनुमति प्रदान करें। नमस्कार।
4: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
6: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
5: नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं। विपक्ष के आचरण पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि जब एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष सुझाव देने के बजाय राजनीति कर रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उधर राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की राजनीति को दर्शाता है जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका, नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली, सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बम्बई शेयर बाजार का सूचकांक आज 889 अंक बढ़कर 77,655 पर पहुंच गया। निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट फाइनल में जगह बना ली है। अनिमेश कुजूर 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आज रात मनप्रीत कौर महिला शॉटपुट फाइनल में खेलेंगी। श्री शंकर मुरली और लोकेश सत्यनाथन ऊंची कूद के फाइनल में और पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में चुनौती पेश करेंगी। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ

0: हिंदी वार्ता कार्यक्रम के इस अंक में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्रकृति संरक्षण, हमारी जीवन शैली और नैतिक जिम्मेदारी। वार्ताकार हैं वरिष्ठ पर्यावरणविद सी के वार्ष्णेय।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के आलोक में हमें यह याद रखना बहुत जरूरी है कि एक स्वस्थ पर्यावरण एक स्थिर और उत्पादक समाज की असली नींव होता है। हमारे ग्रह की जीवन रेखाएं जैसे पानी, हवा, मिट्टी और तरह तरह के जीव जंतु इंसानों के अत्यधिक दोहन के कारण तेजी से खत्म हो रहे हैं। अपनी आंखें बंद करके किसी हरे भरे पेड़ के बारे में कल्पना करें और सोचें, जो सांस इसी पल आपके फेफड़ों में जा रही है वो सिर्फ हमारी नहीं है। जिस ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं उसे पेड़ों ने ही छोड़ा था, जंगलों ने उसे साफ किया था, उड़ने वाले पक्षियों ने उसे साझा किया था। इससे हमें एक बुनियादी सच का पता चलता है, सभी जीव जंतु एक ही तरह के प्राकृतिक संसाधनों को साझा करते। हवा, नदियाँ और बहता पानी और पैरों के नीचे की जमीन हमारी पीढ़ी की निजी संपत्ति नहीं है। वे एक ऐसी वैश्विक ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा हैं जहाँ हर प्रजाति की बराबर जगह है। प्रकृति ने पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए एक जैविक स्वच्छता सेना बनाई थी। इसमें जमीन के नीचे सूक्ष्म जीव और आसमान में गिद्ध, कौवे कचरे को साफ कर गंभीर बीमारियों को रोकते थे। हालांकि अब प्लास्टिक और सिंथेटिक कपड़े नालों और गटरों को पूरी तरह ब्लॉक कर रहे हैं। इस अवरोध के कारण बारिश में गंदा पानी सड़कों पर फैल जाता है और मच्छरों के पनपने का बड़ा कारण बनता है। नतीजन आज हमारी जमीन, पानी और सांस लेने वाली हवा तीनों ही एक समान गंभीर रूप से संकट से जूझ रही हैं। इसलिए न्याय का तकाजा है कि हम संसाधनों को भी बराबरी से बांटें, धरती को एक बुफे की तरह और केवल अपने लिए ही ना समझें। गाय, ऊंट, हाथी, बकरी, मोर, गिलहरी जैसे बड़े जीवों से लेकर परागण करने वाली मधुमक्खियों और नीम व बरगद के पेड़ों से लेकर घास फूस तक सभी की अपनी भूमिका है। हर पौधे, जानवर और पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का अपना एक खास महत्व है और इन्हें जीने और फलने फूलने का अधिकार है। इंसानों ने अभूतपूर्व प्रगति की है। हम परमाणु को विभाजित कर सकते हैं, गगनचुंबी इमारतें बना सकते हैं और मंगल ग्रह पर रॉकेट भेज सकते हैं। इतनी अपार शक्ति होने के साथ किसी को नुकसान न पहुंचाने की नैतिक जिम्मेदारी भी हमारी है। हमें इस तथ्य को समझना होगा कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, प्रकृति का ही हिस्सा हैं। हम और हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं रोजमर्रा की जरूरी बुनियादी चीजों के लिए पूरी तरह से जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और सशक्त और स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर हैं। जरा सोचिए, जब हम इस मूल तथ्य को भूल जाते हैं तो क्या होता है? पर्यावरण में नुकसान का असर दूर दूर तक फैलता है। जीवन के जाल से किसी एक हिस्से को नष्ट करने से खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है जो आखिरकार हम तक ही वापस आती है। इसी एक बुने हुए कपड़े की तरह समझिए, सिर्फ एक ढीला धागा खींचने से यह सोचकर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आखिरकार पूरा कपड़ा ही उससे उधड़ जाता है। हमने आसपास के हरे भरे इलाकों को साफ कर दिया, खेती के परंपरागत तरीकों को बदल दिया और हवा को प्रदूषण से भर दिया। दिल्ली और पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण और जहरी धुएं की भारी संकट से बच्चों और बुजुर्गों के लिए सांस लेना भी खतरनाक हो जाता है। प्रदूषण सीधे हमारे फेफड़ों पर असर डालता है। दक्षिण की ओर जाएं तो आपको नाजुक और बेहद खूबसूरत पश्चिमी घाट दिखाई देंगे। दशकों से हम इन प्राचीन पहाड़ों को नुकसान पहुँचाते रहे हैं, बिना नियम कानून के रिसोर्ट बनाना, माइनिंग करना, खनन करना और यहाँ के मूल वर्षा वनों को काटना। और नतीजा क्या होता है? जब मानसून की भारी बारिश होती है तो पहाड़, जिनकी मिट्टी को पकड़कर रखने वाले पेड़ों की गहरी जड़ें खत्म हो चुकी होती हैं, ये पहाड़ धड़ाम से

0: नीचे गिर जाते हैं। दुखद भूस्खलन का असर नीचे घाटियों में रहने वाले लोगों की जिंदगी और गांव को तबाह कर देता है। हमारी जीवन रेखाएं गंगा और यमुना जैसी नदियां हैं, को ही देख लीजिए। हम सिर्फ उनका इस्तेमाल ही नहीं करते बल्कि इंडस्ट्रियल कचरा और बिना साफ किए गए सीवेज से उन्हें बर्बाद भी करते हैं। नदी की प्राकृतिक जैव विविधता और पानी साफ करने वाली प्राकृतिक क्षमता खत्म हो जाती है। नतीजा, नदी के बहाव की दिशा में रहने वाले समुदायों को जहरीला पानी, खराब होती फसलें और स्वास्थ्य संबंधी बढ़ते संकट का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि शहरीकरण और कीटनाशकों के इस्तेमाल की वजह से भारत में घरेलू गौरैया, देसी मधुमक्खियों की तेजी से घटती संख्या भी एक चेतावनी है। इन छोटे छोटे परागण करने वाले जीवों के बिना हमारी खेती की पैदावार पर बुरा असर पड़ता है और देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली हर घटना शांत तालाब में फेंके गए एक पत्थर की तरह है। उसकी लहरें तब तक फैलती रहेंगी जब तक वे हमारे किनारों तक न पहुंच जाएं। अगर हम आज ही सब कुछ इस्तेमाल कर लेंगे, सारे जीवाश्म ईंधन उपयोग में ले लेंगे, आखिरी जंगल काट देंगे, आखिरी बचे कुचे साफ पानी के स्रोतों को भी प्रदूषण कर देंगे, तो असल में हम अपने ही बच्चों का हक छीन रहे होंगे। यही वजह है कि प्रकृति को बचाना कोई दान्य पुण्य का काम नहीं है, यह एक जरूरी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। धरती के मालिक बनने के बजाय हमें इसका सक्रिय संरक्षण बनना होगा। लेकिन आप पूछ सकते हैं, क्या एक व्यक्ति सच में कोई बदलाव ला सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। हमें कभी भी ये कम नहीं आंकना चाहिए कि छोटी छोटी कोशिशें और प्रकृति की देखभाल से हमारे संसाधनों को टिकाऊ तरीके से बचाने में कितने बड़े बदलाव आ सकते हैं। इसकी शुरुआत रोजाना की आदतों की एक आसान सी चेकलिस्ट से होती है, जैसे कमरे से निकलते ही लाइट और पंखे बंद कर दें, टपकते नल को आज ही ठीक करवाएं, जहां भी हो सके पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें, बिजली बचाने और सेहत सुधारने के लिए लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का प्रयोग करें, छोटी छोटी यात्राओं के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें, बायोमास या सूखी पत्ती न जलाएं, इसके बजाय उन्हें धरती के लिए उपजाऊ और जीवन देने वाली खाद में बदलें, स्थानीय उपलब्ध संसाधनों को प्राथमिकता दें और सोच समझकर चीज़ें इस्तेमाल करें। सिंगल या एकल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करें, वही खरीदें जिसकी कि आपको सच में ज़रूरत हो। अपनी निजी चीज़ें जैसे कपड़े, किताबें और अन्य सामान जिनकी आपको अब आवश्यकता नहीं है, ज़रूरतमंदों को दान करें। इससे हमारे संसाधनों का जीवन काल बढ़ेगा और लैंडफिल में कचरे की भी कमी होगी। जब लाखों लोग नियमित छोटे छोटे काम करते हैं तो हमारी सामूहिक देखभाल एक बड़ी ढाल बन जाती है जो धरती की रक्षा करती है। हो सकता है ये बातें आधुनिक पर्यावरण विज्ञान जैसी लगें, लेकिन सच ये है कि यह गहरी समझ हमारी सांस्कृतिक डीएनए में बसी हुई है। हमारे पूर्वज हजारों साल पहले ही ये बात समझ गए थे कि जब क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन शब्द का अस्तित्व भी नहीं था। संस्कृत का एक बहुत सुंदर उदाहरण है, कई लोगों ने बचपन से सुना होगा। आज जब हम अपने नैतिक कर्तव्य के बारे में सोच रहे हैं तो इस श्लोक को अपने मन में गूंजने दें। सर्वे भवन्तु सुखनम, सर्वे संत निरामया, सभी सुखी हों और दुखों से मुक्त हों। यानी हर कोई आसमान में उड़ते पक्षी, समुद्र में मछलियाँ, घाटियों में पेड़ पौधे, हमारी नैतिकता साफ तौर पर कहती है कि हमें पूरी सृष्टि की खुशी की कामना करनी चाहिए और उसके लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। प्रकृति रक्षित रक्षिता पारंपरिक रूप से अर्थात उनकी रक्षा करती है जो प्रकृति की रक्षा करते हैं। जब हम मिट्टी का ध्यान रखते हैं तो मिट्टी हमें पौष्टिक अन्न देती है। जब हम जंगलों की रक्षा करते हैं तो वे हमें भयंकर बाढ़ से बचाते हैं और मौसम को संतुलित रखते हैं। प्रकृति का संरक्षण कोई दान्य पुण्य नहीं है, बल्कि यह खुद को सुरक्षित रखने की एक नैतिक आवश्यकता है। प्राकृतिक और जैव विविधता की सुरक्षा सिर्फ सरकारों की ही नहीं बल्कि साझा जिम्मेदारी है और हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। सार्थक प्राकृतिक संरक्षण बड़ी वैश्विक नीतियों से शुरू नहीं होता, ये हमारे द्वारा चुने गए छोटे प्रयासों से शुरू होता है। आइए आज हम जंगलों, जल स्रोतों और वन्य जीवों के संरक्षण के तौर पर आगे बढ़ें और यह सुनिश्चित करें कि हम आने वाली पीढ़ियों को एक समृद्ध और हरा भरा ग्रह सौंपेंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रकृति संरक्षण हमारी जीवन शैली और नैतिक जिम्मेदारी विषय पर वार्ता। वार्ताकार थे सी के वार्षणेय, वरिष्ठ पर्यावरणविद, प्रस्तुतकर्ता संतोष द्विवेदी।

0: बहवः जनाः व्रणिताः अभवन्। प्रतिवेदनानि उद्धृत्य युनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी इत्यनेन बुधवासरे आरोपितं यत् ट्राइबल कोर्ट इत्यत्र 27-28 पर्यन्तं जनाः मारिताः इति वारित इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और लीजिए श्रोताओं, आप सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार में आप सभी का स्वागत है और हम कार्यक्रम को लेकर आए हैं। मैं अश्विनी और मेरे साथ हैं राजेश।
1: बिल्कुल, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए
0: जी।
1: यानी गुरु और भगवान दोनों सामने हो तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है कि गुरु के प्रति सम्मान कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, ज्ञान और संस्कारों का महत्व समझने के लिए, अपने जीवन में अच्छे मार्गदर्शन का संकल्प लेने के लिए, शिक्षा संस्कृति और नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज गुरु पूर्णिमा का ये खास दिन है और एक जो गुरु के प्रति जो हमें अच्छे संस्कार अपने विचार जो हमें देते हैं, जो हमें संसार का सांसारिक जो मार्गदर्शन कराते हैं, उनका ये आज खास जो दिन है। और अश्विनी, आज के इस दिन पर हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी योजनाओं के बारे में बात करेंगे, अपने भाइयों को कुछ मनोरंजक जो गाने हैं वो भी सुनाएंगे और उनके जो कृषि से संबंधित कुछ खास बातचीत है वो भी हम लेकर के आए हैं। लेकिन सबसे पहले बात आज करेंगे उस एक्शन प्लान की जो सरकार की तरफ से लेकर आई है सरकार, वो है नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज।
0: तो राजेश, जैसे नेक्शन जैसे खिलौनों के लिए नेशनल एक्शन प्लान जो जिसे बोलते हैं NAPT, भारत सरकार की पहली पहल है, जिसमें जिसको 2020 में 14 मंत्रालयों ने शुरू किया गया तथा इसमें ट्रेड्स को बढ़ावा देने के लिए और लोकल मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देने के लिए और देसी डिज़ाइन को बढ़ावा देने के लिए 21 खास एडिशन पॉइंट हैं। ये बेसिक कस्टम ड्यूटी को 70% तक बढ़ाता है और भारत को सुरक्षित खिलौनों का ग्लोबल हब बनाने के लिए एक सख्त क्वालिटी कंट्रोल नियम लागू करता है।
1: बिल्कुल, तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज, इसका मतलब ये हुआ कि खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना यानी आत्मनिर्भर भारत की ओर एक सशक्त पहल।
0: राजेश, या यूं कहें कि देखिए ना, खिलौने की अगर बात आती है तो मन आपका ये कहता होगा खिलौने मतलब कि जो हमारे बच्चे जिन खिलौने से खेलते हैं, एक आम साधारण अगर सोच को सोचा जाएगा कि आदमी का यही सोच हो कि हाँ, नेशनल प्लान जो हो, वो एक्शन प्लान जो फॉर टॉयज है, वो वहाँ पर खिलौनों की अगर बात की जाएगी, तो वहीं पर अगर हम बात करें जो बच्चों की मुस्कान, भारतीय संस्कृति, स्थानीय कार्यक्रमों की आजीविका और देश की अर्थव्यवस्था, इन सभी को एक साथ मजबूत अगर बनाने के काम कर रही है, वो है पहल खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज। खिलौने केवल बच्चों के मनोरंजन का साधन नहीं होते राजेश, बल्कि उन्हें मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक संरचना का विकास एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसी की सोच के साथ भारत ने देश को खिलौनों निर्माण और निर्यात का एक वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है।
1: बिल्कुल ठीक कहा सुनिए आपने कि जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज है, आखिर सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या है, उद्देश्य क्या है। तो आपने बखूबी बताया कि राष्ट्रीय कार्य योजना का उद्देश्य भारत में सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण, पर्यावरण अनुकूल और भारतीय संस्कृति से जुड़े खिलौने का निर्माण बढ़ाना है। ये पहल आत्मनिर्भर भारत अभियान और वोकल फॉर लोकल की भावना को भी मजबूत करती है। और जब बात हुई कि इसकी आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी है,
0: बिल्कुल,
1: तो ये एक समय भारत में बिकने वाले अधिकांश जो खिलौने होते थे विदेशों से आयात किए जाते थे। इससे देश के कारीगरों और छोटे उद्योगों को पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते थे। लेकिन भारत के पास लकड़ी, मिट्टी, बांस, कपड़े और प्राकृतिक सामग्री से खिलौने बनाने की सदियों पुरानी परंपरा रही है और इस विरासत को नया जीवन देने के लिए ही राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत हो गई, यानी नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज की शुरुआत की है।
0: भाई, इस योजना के जो अगर यूं कहें कि मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या क्यों जरूरत पड़ी और क्यों इस योजना को 2020 में लॉन्च किया गया, भारत को खिलौना निर्माण की वैश्विक केंद्र बनाना है, स्थानीय कार्यक्रमों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योगों को प्रोत्साहन देना, जैसे आप बात कर रहे थे, बच्चों को सुरक्षित और गुणवत्ता वाले खिलौनों को उपलब्ध कराना है, जिससे वो खेलते खेलते कुछ ऐसी चीज़ों को सीखें जिससे जिनको उनका चरित्र का विकास हो, सोच बड़ी सोच हो और कभी कभार क्या होता है कि खेलते खेलते अपने माँ बाप के बच्चे काफ़ी यानी क्लोज आ जाते हैं, और ऐसी प्रतिक्रिया में माँ बाप भी उनका उनका ध्यान रखते हैं। और भारतीय संस्कृति लोकल फॉर वोकल की जो आपने बात करी, जमाई पर पारंपरिक खेलों और को बढ़ावा देना, खेलों के आयात पर निर्भरता को कम करना जो आप कह रहे थे, खिलौनों के निर्यात में वृद्धि करना और रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर, देखिए ना कहीं पर अगर लकड़ी भी हमारी, मिट्टी भी हमारी और बांस के डंडे भी हमारे, सामग्री भी हमारी, तो फिर हम पीछे क्यों रहें? क्यों ना हम अपने उन छोटे छोटे लघु उद्योगों को आगे ले जाएं। एक तो देखिए वहाँ पर रोज़गार जो है, आदमी राजेश क्यों बाहर निकलता है गांव से? इसलिए निकलता है कि क्योंकि गांव में रहकर अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो आदमी सोचता है कि चलो गांव से शहर जाके कोई नौकरी कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे। तो इस सोच को तोड़ने के लिए, इस सोच को कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए, युवाओं में वो एनर्जी डालने के लिए इस स्कीम को, इस योजना को लाया गया, जिससे आप गांव में रह के जो सरकार की योजना स्टैंडअप योजना है, स्टार्टअप योजना है, वही इन सब चीज़ों को करके अपना और अपने परिवार का, अपने गांव का विकास स्वतः क्यों नहीं करते? बाहर निकलने की जरूरत क्या? इतने सारे कच्चे माल की सब व्यवस्था हमारे जब गांव में मिल जाती है, क्यों ना वहां पर सब मिलकर स्वरोजगार की संभावनाओं को ऐसे ऊंचाइयों पर ले जाया जाए कि गांव में रहकर ही क्यों ना गांव का विकास किया जाए।
1: बिल्कुल, मतलब ये है कि जहां आप रह रहे हैं अपने गांव में, अपनी मिट्टी की सुगंध लेते हुए आप वहां पर अपने काम से, अपने काम के बूते से आप कुछ लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ये इस तरह के विचारों के साथ बढ़ना है, और इसी में इसकी कोशिश में जो एक प्रयास है वो नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज है।
0: यस, जो कुछ लाभ भी उनके, राजेश भाई कुछ लाभ भी उनके हैं, जैसे इस योजना केवल शहरों तक सीमित नहीं रह गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसके अनेक लाभ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, जैसे बांस है, लकड़ी है, प्राकृतिक साधनों से जुड़े हुए कुटीर उद्योग और विकसित उद्योग हैं, महिलाओं, देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें क्या मुझे लगा पूरी स्कीम में कि महिलाएं, जहां पर महिलाएं जुड़ जाती हैं पुरुषों के साथ में, तो आप मान लीजिए कि वहां पर विकास होना की संभावनाएं कहीं ना कहीं 70-80% बढ़ जाती हैं। कंधे से कंधा मिलाकर हमारे सभी किसान हैं, युवा हैं, हमारी महिलाएं हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से सबको रोजगार कहीं ना कहीं प्राप्त होता है, और जहां पर रह रहे हैं वहीं पर रहकर अपना विकास कीजिए, अपने गांव का विकास कीजिए, कहीं ना कहीं अगर हमारे गांव का विकास होता है तो हमारे शहरों का विकास होगा, शहर अगर विकास करेंगे तो पूरा संपूर्ण भारत का विकास यहां पर ज़रूर आप देख पाएंगे कि आज हम कहां हैं और कल हम कहां पहुंच जाएंगे।
1: बिल्कुल, तो विकास भी होगा, और अब जानकारी वाली बातें हम और भी करेंगे, लेकिन भाइयों को मनोरंजन कराते हैं, और आज क्योंकि गुरु पूर्णिमा का दिन है तो शुरुआत गुरु सत्यदेव सागर क्या कुछ कह रहे हैं गुरु को लेकर, तो पहले वहीं से शुरुआत करेंगे।

0: तो अभी हमारे भाइयों ने सत्यदेव सागर से ये उपदेश सुना गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर, और अब जो है वो अपने भाइयों को सुनाएंगे एक रिपोर्ट।
1: रिपोर्ट देखिए ना आप राजेश भाई, कहीं ना कहीं अगर हम खेती की बात कहीं ना कहीं करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले जहन में मेरे तो यही आता है कि मिट्टी अच्छी हो,
0: बिल्कुल,
1: और उर्वरक भी डाले जाएं, और सब चीज़ें सही होने के बावजूद भी राजेश कई बार हमें लगता है कि फसल जो हमें उत्पादन मिलना था, जो जिस सही ढंग से उसका ग्रोथ होना था, वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे लगता है कि कहीं मैंने बीज खराब तो नहीं ले लिया, और अगर बीज खराब ले लिया तो कहीं ना कहीं राजेश हमारे उत्पादन पे फर्क पड़ना लाजमी है, क्योंकि हमने सारी प्रक्रियाएं करी, हमने खेत को शुरू से उसको जो भी पलावा करना था, मट्टी पलटनी थी, उर्वरक डाले हमने, उसमें
0: खाद पानी सब कुछ किया हमने,
1: सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कहीं ना कहीं मन को या हम खेती को देखने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी पौध की जो बढ़वार है वो उस प्रकार नहीं आ पाई जिस प्रकार से वो पौध और फसल को बढ़ना था। तो हम यही देखते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हम बीज अच्छा लेते तो शायद हमारी वो जो पैदावार होनी थी वो कहीं ना कहीं रात जोगनी हमें ज़रूर मिलता। इसका यही ये वार्ता है जो हम आपको आगे सुनवाने जा रहे हैं, और भी उसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसमें बातचीत शिवनंदन जी बातचीत कर रहे हैं हमारे।
0: बिल्कुल, तो ये बातचीत है बीज उत्पादन को व्यावसायिक रूप में अपनाना, और डॉक्टर एल के पांडे से बात कर रहे हैं और जो कि प्रबंध निदेशक हैं अनन्या सीड्स नई दिल्ली, उनसे जो बात कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो आइए सुनते हैं ये पूरी बातचीत।
2: किसान भाइयों नमस्कार। किसी भी फसल उत्पादन के लिए उसके अगर प्रमुख घटकों की बात की जाए तो उसमें आपका मिट्टी के साथ साथ उर्वरकों का महत्व होता है, लेकिन मुख्य घटक की अगर बात की जाए तो उसमें बीज का अपना अलग महत्व होता है, क्योंकि कोई भी फसल बीज से ही लगाई जाती है, बीज से ही उसका उत्पादन होता है, और अगर बीज अच्छा है तो निश्चित तौर पे उस फसल से उम्मीद की जाती है कि अच्छा उत्पादन मिलेगा, खाने वाले को अच्छा उत्पाद मिलेगा। और अगर बीज की बात की जाए तो बीज का क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। अगर कोई भी किसान, कोई भी युवा इससे जुड़ना चाहता है तो अगर चाहे उसको व्यवसाय के रूप में अपना सकता है, या चाहे अपने लिए भी बीज का उत्पादन कर सकता है। और अगर कोई भी किसान FPO के माध्यम से बीज उत्पादन करना चाहता है तो किस तरीके से करे, उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, और उसको बाजार तक ले जाने में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी को, जो कि प्रबंध निदेशक हैं अनन्या सीड में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: तो डॉक्टर साहब, जो हमारे युवा हैं या युवा किसान हैं
3: जी,
2: बीज उत्पादन से जुड़ना चाहते हैं या FPO के माध्यम से बीज उत्पादन करना चाहते हैं, तो किस तरीके से शुरू करें, और सबसे मुख्य बात है कि थोड़ा FPO के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई बीज उत्पादन का FPO बनाना चाहता है तो कैसे बना सकता है।
3: सबसे पहले चूंकि ये बीज के ऊपर बात हो रही है तो मैं बीज का महिमा मंडन कर दूं कि सुबीजम सुक्षेत्रे जायते संपद्यते, यानी अच्छी क्वालिटी का बीज हो, अच्छे खेत में लगा हो, और एक तरह अच्छे समय पे भी लगा हो। आज का समय भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, तो उसका उत्पादन निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात पे आते हैं, FPO। FPO क्या है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसको FPC भी कहते हैं,
2: किसान उत्पादक संघ।
3: इसको एक कंपनी का दर्जा मिलता है, जिस तरह कंपनी का स्टेटस है उसी तरह से FPC का स्टेटस है। इसमें भी डायरेक्टर होते हैं, इसमें भी शेयर होल्डर होते हैं, मेंबर होते हैं, और अपने देश में कृषि को आगे ले जाने के लिए या उसका व्यवसायीकरण करने के लिए जिससे किसान को अब व्यवसाय के रूप में किसान अपनी खेती को देखे, इसके लिए एफपीओ एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और इसकी जितना उपयोग हम लोग कर सकते हैं करना चाहिए।
2: सब सरकार भी एफपीओ को बढ़ाने के लिए मदद कर रही है और सरकार का जोर है कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा एफपीओ बने।
3: जी हाँ, जो पहला लक्ष्य है वो तो 10,000 एफपीओ इस देश में खोलने का मुहिम चला
2: जी।
3: और मुझे लगता है काफ़ी संख्या में एफपीओ हैं और एफपीओ की खासियत एक होती है कि हर एफपीओ अपना एक कार्य क्षेत्र निर्धारित करता है, अपना एक कोई एजेंडा निर्धारित करता है। कोई हो सकता है फूड प्रोसेसिंग के ऊपर बनाना चाहे, कोई जो हो सकता है सब्जियों के ऊपर बनाना चाहता है कोई ग्रुप, कोई है तो बीज के ऊपर भी एफपीओ बना ले। तो मुझे लगता है कि एफपीओ अपने आप में उसकी जो स्थापना ही होती है वो एक बड़े सक्षम ढंग से की जाती है और उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसको आवश्यकता पड़ने पर बैंक से लोन भी मिल सकता है और बड़े ट्रांसपेरेंसी से पूरे ग्रुप को मैनेज किया जाता है।
2: डॉक्टर साहब, जैसे बीज का एफपीओ अगर कोई बनाना चाहता है तो उसके लिए तकनीकी क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी?
3: तो आपने मान लीजिए कि एफपीओ बना लिया, आपके ग्रुप में मान लीजिए 100 किसान हैं या 500 किसान हैं। अब आप ये समझिए कि आप बीज उत्पादन का कार्यक्रम व्यावसायिक स्तर पर शुरू करना है। व्यावसायिक इसलिए बोल रहा हूँ कि आप छोटा मोटा क्षेत्र में बीज उत्पादन कर लेंगे लेकिन उससे आपको वो आमदनी नहीं मिलेगी जो आप एक बड़े क्षेत्र में करेंगे और एक ऑर्गेनाइज तरीके से करिए। इसलिए मैं इस पे विशेष जोर दे रहा हूँ कि इसको व्यावसायिकता की दृष्टि से देखना बहुत आवश्यक है कि बीज उत्पादन एक व्यवसाय के रूप में देखिए। सो इसमें जो कड़ियाँ होती हैं कि पहले तो अपने जो मेंबर हैं, अपने जो किसान भाई हैं, ये समझ लें कि बीज उत्पादन फसल उत्पादन से थोड़ा सा अलग है। इसमें पूरे जब तक फसल रहती है बुआई करने के पहले से ही आपको अपना क्षेत्र, अपना जो खेत है उसमें सबसे पहले आपको देखना है कि वो उस फसल के उत्पादन के लिए उचित है या नहीं है, मिट्टी कैसी है, जांच करा ले वहाँ का पानी कैसा है। उसके साथ साथ आसपास वो फसल नहीं होनी चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस, यानी आपका जो सीड प्लॉट होगा वो उसी वैरायटी के सीड प्लॉट से दूसरे कमर्शियल प्लॉट से अलग होना चाहिए, दूर होना चाहिए और हर फसल की एक दूरी निर्धारित की गई है जिसको हम लोग पृथक्करण कहते हैं या आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं। सो इसमें जो पहले से आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको क्या उत्पादन करना है, उसकी प्लानिंग करना है, कैसे उसका रो टू रो डिस्टेंस, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या मेंटेन करना है और बुआई के पहले उसके बीज का, आपका बीज क्या है, ब्रीडर सीड है या आपका बीज फाउंडेशन सीड है, आपके किस क्लास का बीज उत्पादन करना चाह रहे हैं। अगर आप ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड बनाएंगे तो वो एक क्लास हो गया, फाउंडेशन सीड से आप सर्टिफाइड सीड जब बनाएंगे तो सर्टिफाइड को आप बेच सकते हैं बाजार में, तो फाउंडेशन एक मदर सोर्स ही तक सीमित रहता है। इसके बाद आप जब फसल की बुआई कर दिए, उसकी देख रेख कर रहे हैं, उस पर खरपतवार कीड़े मकोड़े इन सबको इतना साफ सुथरा रखना होता है, उसमें कल को कोई दूसरे वैरायटी का पौधा आता है जिसको हम लोग ऑफ टाइप बोलते हैं या उसके आसपास कोई वॉलंटियर पौधा आ जाता है कि जो अपने आप उगाया पहले के फसल से, सो इन सब चीज़ों को आपको समय समय पर रिमूव करना होता है, निकालना होता है जिसको हम लोग कहते हैं रोगिंग करना
2: जी।
3: तो ये रोगिंग करके आपको ये देखना आपका प्लाट एक यूनिफॉर्म दिखना चाहिए, एक तरह के ही पौधे दिखना चाहिए, एक ऊंचाई के दिखना चाहिए, एक रंग के दिखना चाहिए, जिससे ये आपको समझ में आएगा कि ये आनुवंशिक शुद्धता इसमें है क्योंकि वो आनुवंशिक शुद्ध है इसलिए वो सब सारे पौधे एक जैसे होंगे। उसके बाद जब उसमें और कोई काम करना है, मतलब फ्लावरिंग के टाइम में अगर आप स्ट्रेट वैरायटी कर रहे हैं, ओपन पॉलिनेटेड है, तो वहाँ पर आपको कोई परागण या इस तरह का व्यवस्था नहीं करना है, लेकिन जब आप हाइब्रिड की तरफ जाते हैं तो एक दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है। सो कहने का मतलब कि जब आपकी फसल मैच्योर होती है, जब आपकी राइपनिंग की टाइम आ गया, उस समय आपको हार्वेस्ट करिए और अपने थ्रेसिंग यार्ड में ये इंश्योर करिए कि कोई दूसरी फसल का बीज या दाना उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए, कोई मैकेनिकल मिक्सचर ना हो। तो इसको सब करके फिर आप प्रॉपर उसमें मॉइस्चर कम करिए, ड्राई करिए और ड्राई करके फिर बैगिंग करिए और हवादार बैग हो जिससे कि उसकी लाइफ बनी रहे। और फिर आपने रख लिया, बाद में अगर वो सर्टिफाइड है तो उसमें सर्टिफिकेशन एजेंसी इन्वॉल्व होगी, अगर सर्टिफाइड नहीं है, ट्रूथफुली लेबल्ड आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप उसके आनुवंशिक शुद्धता, उसके जर्मिनेशन, उसमें कोई डिजीज नहीं है और साथ के साथ उसमें मॉइस्चर लेबल और कोई उसमें खरपतवार या कोई टुकड़े नहीं है, साफ सुथरा करके उसको रखिए, फिर बाद में छोटे पैकेट में उसको बना के आप बेच सकते हैं, आसपास बेच सकते हैं, आप कंपनियों से संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं और ज्यादा एरिया में आप बेच सकते हो, हर साल और कई फसलों में आप काम कर सकते हैं।
2: जी डॉक्टर साहब, काफी आपने विस्तार से बताया, लेकिन कोई भी किसान अगर शुरू करना चाहता है तो मान लीजिए कभी वो बेचने के लिए उत्पादन कर रहा है, कभी कभी किसी दूसरी एजेंसी के लिए भी बीज का उत्पादन करता है जो बीज खरीद लेती है
3: जी,
2: और फिर वो अपना टैग लगा के उसको बाजार में बेचती है, तो उस स्थिति में उसकी जो देख रेख है वो कैसे होती है, और दूसरी बात अगर कोई स्टार्टिंग करना चाहता है तो उसके लिए, क्योंकि ये नया काम होगा तो उसको कहीं से ट्रेनिंग या प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है।
3: जी हाँ, इसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि स्वयं या पीओ अपनी जिम्मेदारी पे फाउंडेशन सीड यूनिवर्सिटी से लेकर आवे, राज्य स्तर पे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं या केवीके हैं वो भी फाउंडेशन सीड कई बार देती हैं, तो उसको लाके बीज उत्पादन कर सकती हैं। लेकिन फिर उसमें जो दिक्कत आती है कि अगर ज़्यादा मात्रा में हुआ तो उसका विपणन कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो आपने दूसरा रास्ता आपने सजेस्ट किया कि वो किसी एजेंसी के जरिए आपने आपको उनके साथ
2: जोड़ लें,
3: उससे क्या होगा कि आपको पहले ही सारी एग्रीमेंट हो जाती हैं, आपको मालूम होगा कि आपको क्या रेट मिलेगा, कितना उत्पादन करना है, इसका मतलब कितने किसानों के खेतों में लगाना है और उसके बाद कितना जो है आपका रेट मिलेगा, तो आपको फिर बाजार में भटकना नहीं पड़ेगा कि आपने बीज बनाया और उसको अब बेचे कहाँ। तो ये सुविधा जरूर है और मैं इसको कहूँगा कि वो जिस कंपनी के साथ या जिस संस्था के साथ जुड़ेंगे उनके साथ एक एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट करें, एग्रीमेंट को समझ लें, उसमें अपनी बात भी रखें और जो संस्था है उसकी बात भी रहेगी, यानी कि संस्था को ही आप अपना बीज उत्पादन करके दें और संस्था भी आपसे जो उत्पादन हो वो लेकर जाए, ये इसके फायदे हैं।
2: तो डॉक्टर साहब, जैसे संस्था के साथ जुड़ के बीज उत्पादन करना चाहता है तो क्या संस्था खाली उसका उत्पादन ही लेती है या कि अपनी कुछ तकनीकी सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है, जैसे बीज हो गया, दवाएं हो गई, बीच बीच में जरूरत पड़ती है वो?
3: जब आप किसी संस्था के साथ संपर्क में रहेंगे तो पहला काम तो करेगा एग्रीमेंट करेगा, दूसरा ये करेगा कि आपको बीज उपलब्ध कराएगा, फाउंडेशन सीड
2: उसे जिस बीज की जरूरत होगी उसी, वो उपलब्ध कराएगा।
3: उसी के लिए वो उसकी जिम्मेदारी होगी, उसकी क्वालिटी की जिम्मेदारी होगी और बीज बीच में उसके जो अधिकारी होंगे, जो उनके इंस्पेक्टर्स होंगे, वो पूरे फसल के दौरान कम से कम 3 से 4 बार वो आके विजिट करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि आपको ये प्रक्रिया इसमें करनी है, जिससे कि उनकी भी जिम्मेदारी रहती है कि लास्ट में आके उनका बीज अच्छी क्वालिटी का बने।
2: तो इस प्रक्रिया में जो हमारे किसान भाई या एफपीओ फार्मर्स जो भी उसके साथ जुड़ेंगे तो उन्हें अपने द्वारा उत्पादन करते हैं तो प्रॉफिट किस में ज़्यादा रहेगा?
3: मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि विपणन आप कैसे कर लेते हैं, और विपणन के लिए जब आप संस्था के साथ जुड़ते हैं, किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, किसी कॉरपोरेशन के साथ जुड़ते हैं, इसमें आपको विपणन की कोई टेंशन नहीं होती है और आप दूसरे कामों में बिजी रह सकते हैं और आपको उसमें भी एक उचित मूल्य, उचित फायदा आपको मिलता है। इसमें आपको फायदा ज्यादा मिल सकता है लेकिन उसके साथ साथ आपकी मेहनत बहुत लग सकती है, रिस्क होता है, हो सकता है सीजन ऐसा आवे कि वो बेच ना पाए, लेकिन जब दूसरी संस्था रहेगी तो वो अपने आप माहिर है अपने कार्य में, तो आपको एक बार आपसे खरीद लिया वो उसकी जिम्मेदारी है।
2: लेकिन फिर भी अगर किसान चाहता है कि नहीं, हमने उत्पादन किया है, हम उस पर अपना टैग लगाएंगे।
0: पूरी बातचीत आप सुन रहे थे डॉक्टर एल के पांडे, प्रबंध निदेशक अनन्य सीड्स नई दिल्ली से शिवनंद लाल की, और इसी के साथ घड़ी कह रही है कि अब कार्यक्रम को संपन्न करने का यहीं पर वक्त हो गया है, तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम राम, राम।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और लीजिए अब वक्त है समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
2: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
1: राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना वर्तमान कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की नीति को दर्शाता है, जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि व्यापक और विस्तृत परीक्षणों के बाद कवच के चौथे संस्करण को 20 जुलाई तक दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा के व्यस्ततम मार्गों पर 2,500 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने खराब वायु गुणवत्ता की समस्या से निपटने के लिए परिवर्तन नामक एक वाहन बेड़ा नवीनीकरण पहल को मंजूरी दी है। परिवर्तन परिवहन वायु प्रदूषण और उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन परिसंपत्तियों के त्वरित नवीनीकरण और प्रोत्साहन का कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पुराने और अधिक उत्सर्जन वाले ट्रकों और बसों को स्वच्छ भारत स्टेज BS6 मानकों के अनुरूप और इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में महिला मुक्केबाजी में अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग और साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। पुरुष मुक्केबाजी में सचिन सिवाच ने 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं एथलेटिक्स स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने पुरुष शॉर्टपुट फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: The Lok Sabha today passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and seizure of properties of convicted offenders. Replying to the discussion,
1: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहनों को राजेश और अश्विनी का
2: राम राम।
1: तो अश्विनी भाई, आज कार्यक्रम में भाइयों को उपदेश सुनाएंगे, कल के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, साथ में कुछ ज्ञान की बातें भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कृषि समाचार दर्शन से। ये रिपोर्ट संध्या गुप्ता की है, तो आइए सबसे पहले शुरुआत इस रिपोर्ट से करते हैं।
3: नमस्कार, कृषि समाचार दर्शन में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। आज के अंक में स्टीविया की खेती, प्रसंस्करण और विपणन करने वाले किसान मित्र अपने अनुभव साझा कर रहे हैं।
4: मेरा नाम आशीष तिवारी है, मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी से बिलोंग करता हूँ और मैं स्टीविया की खेती करता हूँ उधम सिंह नगर जिले में। ये थोड़ा सा तराई में यहाँ गिना जाता है। यहाँ स्टीविया की खेती करने के लिए पौध की अवेलेबिलिटी और की किस तरीके से करनी है, ये सब का गाइडेंस हमें जानकारों से मिला, जिनमें कुछ लोग पुणे से और महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। तो उन लोगों के ही थ्रू हमें शुरुआत में स्टीविया की पौध मिली और हमने स्टीविया का 3 एकड़ में खेती करी है। स्टीविया में जो साइज होता है वो, मतलब जब वो फुल ग्रोन पूरा बना हुआ पौधा होता है, उस समय उसका जो साइज होता है वो लगभग 1 से 2 फीट की कैनोपी होती है उसकी। तो इसकी जो मार्केट में डिमांड है वो इसके पत्ते की भी है और कुछ इस चूरा निकल जाता है उसकी भी रहती है। जो इसमें जो 2 कंटेंट हैं स्टीविया की खेती करने में जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो इसके साइंटिफिक नेम में भी यूज होते हैं, जो कि जिसको स्टीविया रिबोडियाना कहा जाता है। तो स्टीवियोसाइड और रिबोडिसाइड, ये 2 कंटेंट मिलके इसमें मिठास लाते हैं इसके पत्ते में। लगभग एक बार लगाने के बाद 5 साल तक आपको उपज देती है और हर 3 महीने में ये उपज देती है। और ये पत्ते जब पूरे तैयार हो जाते हैं तो उनका साइज लगभग 3 इंच से 4 इंच के बीच में रहता है। इसके उसमें समस्या भी आती है, वो फ्लावरिंग को लेके होती है कि कब इसमें फूल आ जाएगा। तो फूल आने के लिए क्या होता है कि ये किसी भी मौसम में, मतलब पत्तियां बढ़ती हैं जब आप पहली हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके बाद जब दोबारा से नीचे से कल्ले फूटते हैं और आप एक दोबारा से पूरा 2 से 3 फीट का पौधा तैयार हो जाता है पत्तियों से लदा हुआ। बादलों का मौसम हो, उस समय बादलों के मौसम की वजह से अगर वो प्रोलोंग हो रहा है, कुछ एक दिन के लिए चल जाएगा, तो उस समय इसमें फूल आने लग जाते हैं और वो फूल के आने के टाइम पे फिर इसकी पत्तियों में जो है वो मिठास कम होती है। और फूल आने के बाद फिर बीज भी आते हैं, कुछ लोग बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आगे के पौध बनाने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा जटिल रहता है। मैंने जो खेती करी वो खेती इसके पत्तियों को लेकर ही करी और पत्तियों की मार्केट में डिमांड काफी अच्छी है। अगर मैं आपको रिटेल में बताऊं, लगभग 3,000 रुपए किलो से 5,000 रुपए किलो तक आराम से चली जाती हैं फुटकर में, मतलब छोटे छोटे पैकेट बना के जब हम इसको, इसकी सूखी पत्तियों को बेचते हैं। थोक में जो डिमांड है वो डिमांड भी ठीक ठाक रहती है। अगर आपकी पत्तियां साबुत हैं और अच्छी क्वालिटी की हैं और साइज में अच्छी हैं, तो वो पत्तियां लगभग 300 से 400 रुपए किलो मार्केट में चली जाती हैं। फ्लेवर चाय को थोड़ा सा मीठा फ्लेवर देने के लिए और उसको सेहतमंद रहते देने के लिए भी स्टीविया को की मिक्सिंग करी जाती है। कि सबसे अच्छी चीज है कि इसको पशु चरते नहीं है, पशुओं से इसकी देखभाल करने की खास आवश्यकता नहीं होती है। हर 4th महीने में आप फसल ले सकते हैं, अच्छे पत्तों वाली, जो चमकदार पत्ते जिसमें हो रहे हैं वो वाली फसल अगर आप लेना चाहते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होती है जो इसकी थोड़ी सी लागत बढ़ाती है। धूप में भी सुखाया जा सकता है, छाया में भी सुखाया जा सकता है। जिस दिन फसल कटती है आपको उसी दिन सुखाना होता है, आप इसको बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर सकते कि अगर आपने इसका ढेर बना के काट के रख दिया तो कुछ ही घंटों में पूरी तरीके से सड़ जाता है। थोड़ा सा प्लानिंग के साथ आपको इसकी उपज लेनी होती है, जब सुखाने के लिए आपके पास जगह भी तैयार हो और आपको पता हो कि धूप टेम्परेचर का अच्छा लेवल है और बारिश नहीं आ रही है, उस समय आप इससे उपज इसकी ले सकते हैं, इसकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करना भी आसान है, आप जड़ से बस 2 इंच 3 इंच का ठूंठ छोड़ के आप इसको पूरा का पूरा पौधा काट सकते हैं, फर्टिलाइजर डालेंगे तो उसके बाद ये पौधा फिर से तैयार हो जाता है अगले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर।

0: वातावरण में नमी ज्यादा होती है और उमस होता है, उस समय इसकी फसल ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन उस समय एक दूसरी परेशानी है कि इस पौधे में कहीं पे भी पानी रुकने की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही इसकी जड़ में जरूरत से ज्यादा पानी जाता है, सड़ जाता है और पौधा खराब होने लगता है। पौधे से पौधा बनाने का और तरीके भी होते हैं कि आप एक पौधे के नीचे जड़ के साइड से कई कल्ले फूटते रहते हैं, तो कई बार वो अपने आप में एक पूरा मदर प्लांट बना देते हैं। हर फसल लेने के बाद आपको गोबर जड़ में डालना होता है, सामान्य इसकी सिंचाई करनी होती है। अगर इस्तेमाल करा जा सके तो ड्रिप इरिगेशन सर्वोत्तम रहता है। जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है, पौधे की ग्रोथ भी बढ़ती जाती है, पौधा में बहुत ज्यादा कीट पतंगे की समस्या भी नहीं रहती है, ना इसकी जड़ में कीट पतंगे की समस्या रहती है, ना इसके पत्ते में कीट पतंगे की समस्या रहती है। तो उससे भी ये काफी अच्छा पौधा है, कीटनाशक के रूप में बहुत खर्चा उठाने की जरूरत नहीं होती है। सरकार इसको मेडिसिनल प्लांट के अंतर्गत इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए सहायता देती है, तो सरकार इसके लिए ड्रिप इरिगेशन की भी सहायता देती है और पौधे हैं उनके लिए भी सहायता देती है कि कई किस्में होती हैं। कुछ किस्म मतलब ये किस्में किस तरीके से होती है मैं आपको बताता हूँ कि कुछ किस्में ऐसी होती हैं जो उस वातावरण में चलती हैं जिसमें सर्दियों में तापमान 4 डिग्री से नीचे चला जाता है, क्योंकि उस समय फिर उसके पौधा जमने लगता है। जो भारत में मौजूद वैरायटीज हैं वो भारत में ही डेवलप करी गई हैं, तो बहुत ज्यादा उनमें वेरिएशन नहीं है। आप एक सामान्य कोई भी वैरायटी लगाएंगे तो वो भारत के टेम्परेचर के हिसाब से सामान्य
1: चलिए,
0: ही रहता है।
1: सभी कृषकगणों को मेरा संजय कुमार का बहुत बहुत नमस्कार। मैं पिछले 6-7 वर्षों से कृषि क्षेत्र के साथ जुड़ा हूँ। जुड़ाव तो पहले से था, लेकिन कुछ आधुनिक और जिस तरह से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तरफ हमने कार्य करा है, जिसमें एक हमारा बहुत ही उपयोगी फसल जो निकल के सामने आया है वो है स्टीविया। स्टीविया की खेती हमने कुछ 6-7 सालों से बहुत सारे किसानों के साथ मिलके करा है, और स्टीविया की उत्पत्ति थी तो पहले से, लेकिन लोगों का रुझान उस तरफ तब बढ़ा जब हमारे भारत के अंदर बहुत सारे लोग डायबिटीज से पीड़ित होने लगे। उसके बाद लोगों का रुझान उस तरफ बढ़ा। मीठी तुलसी भी कहते हैं। स्टीविया एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि नेचुरल स्वीटनर का काम करता है। इसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा नहीं होती। चाय बनाने में उसकी पत्तियों को यूज कर सकते हैं, या उसके पाउडर को यूज कर सकते हैं, या उससे रैप बनाया जाता है। उस रैप को आज के दिन में बहुत सारी मिठाई दुकानों में भी आप देखते होंगे कि शुगर फ्री मिठाइयां मिलती हैं जिनके अंदर उनके एक्सट्रैक्ट का यूज किया जाता है। हम लोगों ने किसानों में जागरूकता फैलाई कि ये अच्छे प्रोडक्ट हैं, फिर हमने उसके कुछ प्रोडक्ट भी बना के आगे मार्केट में सेल करा। स्टीविया जस्ट लाइक अगर तुलसी के पौधों के देखे थे वैसा ही पौधा होता है। व्यावसायिक खेती के रूप में अगर आप देखें तो एक स्टीविया के पौधे को हम, ऐसा नहीं है कि उसकी जो हार्वेस्टिंग मतलब फसल की कटाई जो होती है वो एक बार में पूरी की पूरी फिनिश नहीं हो जाती। उसको एक पौधे को अगर हम क्यारी बना के उस पे मल्चिंग सीट लगा के और 1-1 फीट के डिस्टेंस पे अगर स्टीविया के पौधों को हम लगाएं, लगाने से पहले क्यारी बनाने से पहले उसके अंदर में जो नेचुरल फार्मिंग के हिसाब से उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट खाद है, गाय के गोबर से खाद बनाई जाती है, उस खाद को मिला के फिर उसकी क्यारी तैयार करके, तैयार करने के बाद ऊपर से अगर मल्चिंग सीट बिछा दें तो उससे क्या फायदा होता है कि उसमें उसकी नमी बनी रह जाती है। जैसे आप एक बार अगर क्यारी के अंदर पानी डाल दिए तो वो नमी उन पौधों को एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 दिनों तक नमी उसकी बरकरार रहेगी और पत्तियों का विकास अच्छी तरह से हो सकेगा। उपयोग तो उनके डंठलों का भी होता है, लेकिन ज्यादा उपयोग उनके पत्तियों का होता है। इसलिए पत्तियों को अच्छे रूप देने के लिए, बड़ी पत्तियां आने के लिए मिट्टी में नमी है वो रेगुलर बनी रहनी चाहिए। इसलिए मल्चिंग सीट बिछा के उसकी खेती की जाती है, और खेती करने के बाद 3 महीने के अंतराल पे इस पौधे से पत्तियों की कटाई की जाती है। पत्तियों को कटाई करने के बाद उसको इधर सोलर ड्रायर के अंदर या फिर ग्रीन नेट हाउस के अंदर पत्तियों को सुखाया जाता है। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं सुखाया जाता कि पत्तियां पीले पड़ जाएंगे। ग्रीन नेट के अंदर उन पत्तियों को सुखाया जाता है। सूखने के बाद जब पत्तियां हरे रूप में ही सूख जाती हैं फिर उनको पाउडर बनाया जाता है। फिर उन पाउडर को हम उपयोग ले सकते हैं। अगर कोई हमारे किसान या घर के किचन गार्डन के अंदर भी कुछ लोग अगर उगा रखे हैं तो उनको डायरेक्ट भी पत्तियों को आप लेके, अगर आप पत्तियों को सीधा भी खा के देखें

0: तो वो मीठा ही लगता है। तो आप अगर चाय बना रहे हैं तो उसमें चाय में डायरेक्ट ग्रीन पत्तियों को भी यूज कर सकते हैं, या ग्रीन हरी सूखी पत्तियों को भी यूज कर सकते हैं, या उसके पाउडर को भी यूज कर सकते हैं। और आज के दिन में अगर इस स्टीविया की खेती विदेश में, हमने इसकी ट्रेनिंग और ऑनलाइन ट्रेनिंग और बीज की उपलब्धता हमने मॉरिशस में भी कराई, घाना में कराई, वियतनाम में कराया है। हमारे एक दो मित्र हैं जिन्होंने वियतनाम में जाके, भूटान में जाके वहाँ किसानों को ट्रेनिंग भी दिया है वहाँ के सरकार के सहयोग से। विदेशों में भी इसकी बहुत ही डिमांड आने लगी है। अगर हम अपने देश भारत, भारत के अंदर की खेती पे नजर डालें, कम से कम 300 से 400 हेक्टेयर लैंड पे इसकी व्यावसायिक खेती की जा रही है, हमारे किसान कर रहे हैं। स्टीविया हमारा आज के दिन में हमारे लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही उपयोगी पौधा है। किसान जनों को प्रेरित करते हैं इसकी खेती करने के लिए और इसके उत्पाद को आगे से आगे मार्केट में पहुंचाने के लिए। 1 एकड़ की खेती की अगर गणना करें तो 1 एकड़ के अंदर कुल लागत जो है वो 60 से 80 हजार रुपए की लागत इसमें आती है। एक पौधे को हम 1 साल के लिए लगाते हैं, उससे ज्यादा दिनों तक भी ये पौधा रह सकता है, बशर्ते कि जमीन और सिंचाई उसके अनुकूल हुआ तो। उसे 3-3 महीने पे हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। 60 से 80 हजार रुपए जमीन बनाने और बीज लगाने, पौधों को लगाने में खर्च आती है। और खर्च करने के बाद जो साल के अंदर 4 बार, 3-3 महीने पे 4 बार जब इसकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उसमें पर हार्वेस्टिंग जो हमारी इनकम आती है, तो उसको अगर एवरेज भी रही तो 30 से 35 हजार होगी, और अगर अच्छी पत्तियां निकल आई तो 40 से 50 हजार तक की पत्तियां होती है। तो अगर 4 बार हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, 70 से 80 हजार लागत में से 1,60,000 रुपए की रिटर्न उससे हमें मिल जाती है पूरे साल के अंदर। बिलो 10 डिग्री टेम्परेचर में इनकी पत्तियों का ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए लास्ट जो ठंड के दिनों का जो हार्वेस्टिंग होता है उसकी परसेंटेज थोड़ी कम होती है, बशर्ते बाकी 3 हार्वेस्टिंग जो है पूरे साल में इसकी अच्छी तरह से हो जाती है।
1: नमस्कार, मेरा नाम रजिया खातून है, मैं शाहजहांपुर से बिलोंग करती हूँ। लगभग 15 से 18 साल हो गए हैं हम लोग जड़ी बूटियों वगैरह की खेती। स्टीविया है, मीठी तुलसी बोला जाता है। इसके लिए सबसे ज्यादा जो बेहतर एक चीज होती है मिट्टी, दोमट मिट्टी जो होती है वो बहुत ज्यादा इसके लिए बेहतर होती है। क्योंकि ऐसा होता है स्टीविया जब हम लगाते हैं ढलान वाली जगह जो होती है, जैसे पानी बह जाता है, पानी अगर हम लगा रहे हैं तो उस जगह पे पानी रुकना नहीं चाहिए। कम से कम पानी रहेगा तो उसमें ज्यादा अच्छे से वो ग्रोथ करेगा। हम जब इसको हम तैयार करते हैं, जब ये तैयार हो जाता है तो इसको हम हर 3 महीने के बाद इसको हम काट सकते हैं। साल में 4 बार इसकी हम कटाई कर सकते हैं। ये 2-3 महीने छोड़ के हम कभी भी लगा सकते हैं, दिसंबर, जनवरी और 1 फरवरी। लगाने के हर 3 महीने के बाद हम इसको काटने के लिए तैयार हो जाता है। इसका पौधा होता है उसी को हम लगाते हैं। अगर हमारे पास अवेलेबल होता है तो हम उसको लगा लेते हैं, नहीं होता तो मंगवा लेते हैं। स्टीविया के लिए बहुत बेहतर है। 1 साल में मैक्सिमम 3 से 4 लाख के आसपास, क्योंकि इसमें 4 कटान होते हैं। इसके हर 3 महीने के बाद इसको काटा जाता है। कटान करने के लिए लोगों को रख रखा है। स्टीविया जब हम उसको काटें तो हमारी जो जमीन होती है उसमें नमी ना हो, क्योंकि जब उसमें नमी होगी तो पौधे में भी फिर नमी होगी। उसको काट के छोड़ देंगे फिर वो अच्छे से सूख जाएगा। स्टीविया को स्टोर करने के लिए ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर नमी ना हो, धूप जैसे गर्माहट सी चीज ये खराब ना हो, जैसे जानवर इसको नहीं खाते हैं। व्यापारी हमारे घर आते हैं, स्टीविया ले जाते हैं, और जैसे नहीं कोई आ पाता है तो हम खुद से उसको प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैम ये शुगर के जो मरीज होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है स्टीविया को। भी मतलब सलाह देते हैं किसान लोगों को, मैं बहुत से लोग कर रहे हैं स्टीविया को। पाउडर वगैरह भी बनता है ज्यादातर स्टीविया की, जो है इसकी पत्ती ही जाती है।
2: कृषि समाचार दर्शन का यह अंक संपन्न होता है। मैं संध्या, प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शिवनंदन लाल के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: तो अश्विनी, देखिए, इस दुनिया में जब आप आए हैं तो उसमें सत्य कर्म के साथ में जरूरी है कि आप सम्मान करें, आदर करें, और गुरुओं का ही नहीं अपने माता पिता का भी, वही सम्मान, वही सेवा। और ये आप जैसा करेंगे आपके बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे।

0: तने महल की काया रे, तो ये मूर्ख बंदे कर ले सेवा। ये आप सुन रहे थे उपदेश संतलाल से।
1: जी
0: और देखिए, सरकार की तरफ से कई ऐसी योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही है जिसका हमारे किसान भाई खूब फायदा उठा रहे हैं, ले रहे हैं, और कृषि कार्य में उसका जमकर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन्हीं योजनाओं में से एक है किसान, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।
1: जी
0: तो अश्विनी, किसानों के लिए केंद्र सरकार की ये एक स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद नियमित पेंशन देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। एक तरीके से कह सकते हैं ये PMKMY
1: जी
0: यानी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, एक तरीके से सामाजिक सुरक्षा इससे मिलती है। और इसकी शुरुआत मोदी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, जो इंडिया गवर्नमेंट है, 12 सितंबर 2019 को हुई। ये 18 से 40 वर्ष आयु के पात्र किसानों के लिए है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है। किसानों को आयु के अनुसार 55 से लेकर 200 रुपये प्रति माह तक अंशदान करना होता है। और किसान जितना अंशदान करता है उतना ही योगदान केंद्र सरकार भी करती है। योजना छोटे और सीमांत भूमिधारक किसानों के लिए बनाई गई है। यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो पात्र जीवन साथी को पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है।
1: जी
0: इसका
1: देखिए
0: हाँ
1: जी आप देखिए राजेश भाई भाई आज हमें इस योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि हम बात कर रहे हैं मानधन योजना की, जिसमें जो किसान वर्तमान ही नहीं बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास भी करता है। हम सभी जानते हैं कि किसान पूरी ज़िंदगी खेत में मेहनत करना करता है, देश के अन्नदाता को बनकर करोड़ों लोगों का पेट भी भरता है, लेकिन जब उम्र ढलने लगती है और काम करने की क्षमता किसान की कम हो जाती है, तब नियमित आय का कोई ना कोई साधन ज़रूर होता है। इसी चिंता को दूर करने के लिए भारत सरकार ने शुरू की प्रधानमंत्री मानधन योजना। देखिए बाकी राजेश जी ने
0: बिल्कुल
1: हमें हमें लगातार बता भी रहे हैं, मेरा मकसद यही था कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी।
0: बिल्कुल। और दूसरा अश्विनी, मैं अपने किसान भाई बहनों को ये कहना चाहूँगा कि जिन किसानों ने जो
1: जी
0: मेड़ बनाकर अगर पानी की निकासी है तो उसको रोकें। साथ में इस वक्त जो मौसम, जो कृषि वैज्ञानिक है उनके हिसाब से जो काम है वो करें। किसानों को सलाह है कि वो बाजरा, मक्का, सोयाबीन, सब्जियों में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई का कार्य करें। और इसके साथ ही अब कार्यक्रम को जो है वो
1: घड़ियों की
0: समापन
1: सुई लगातार कह रही हैं कि भाई अब कृषि जगत कार्यक्रम का यहीं समापन होने जा रहा है, लेकिन बातें हमारे पास बहुत थी करने के लिए। मन तो नहीं कर रहा विदा लेने का, लेकिन फिर भी आपसे विदा लेने का समय आ गया है। ग्राम कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम।
0: राम राम। और
1: और हम
0: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार परासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कुछ गज़लों का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और लीजिए, आप सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में पेपर लीक पर 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान। वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने परिवर्तन नामक एक वाहन बेड़ा नवीनीकरण पहल को मंजूरी दी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनावश्यक नियमों को कम करने और शासन व्यवस्था को सरल बनाने के सुधारों की प्रगति की समीक्षा की। और दिल्ली यातायात पुलिस ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर आज से 12 अगस्त तक के लिए यातायात परामर्श जारी किया। इस दौरान भारी वाहनों पर प्रतिबंध और रूट डायवर्जन लागू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 का पारित होना करोड़ों विद्यार्थियों और उनके परिवारों के विश्वास को और सशक्त करने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ये निर्णय भारत की परीक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय तथा जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना वर्तमान कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 7 अगस्त से लेकर 11 तारीख तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस सत्र के दौरान दिल्ली के विकास और जनोपयोगी योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर और सार्थक चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित सर्वोपरि रखते हुए आवश्यक निर्णय लेने और उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली में अनावश्यक नियमों को कम करने और कामकाज को आसान बनाने के लिए किए जा रहे सुधारों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री संधू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को प्रभावी ढंग से लागू करना दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के कारण हुई देरी के बावजूद वर्तमान सरकार ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में जानकारी दी गई कि सुधार अभियान के पहले चरण में चिन्हित 23 प्राथमिक क्षेत्रों में से 13 का कार्यान्वयन पूरा हो चुका है, जबकि 4 सुधार श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद अप्रासंगिक हो गए हैं। समीक्षा के दौरान ये भी बताया गया कि सुधार अभियान के दूसरे चरण में जून महीने के मध्य तक लागू 3 प्राथमिक क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। इनमें दिल्ली नगर निगम की दोहरी व्यापार लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करना, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से जुड़े नियमों को उदार बनाना और बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को तेज करना जैसे प्रमुख सुधार शामिल हैं। बैठक में दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 के मसूदे पर हुई प्रगति की भी जानकारी दी गई। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सर्टिफिकेट में दाहिने ट्रिगर्स के

0: सामने एक कटा हुआ घाव दर्ज है जिसे हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार ये एक साधारण चोट है और गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि चिकित्सा निष्कर्षों में गोली लगने की आशंका नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने परिवर्तन नामक एक वाहन बेड़ा नवीनीकरण पहल को मंजूरी दी है। परिवर्तन परिवहन वायु प्रदूषण और उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन परिसंपत्तियों के त्वरित नवीनीकरण और प्रोत्साहन का कार्यक्रम है।
1: इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पुराने और अधिक उत्सर्जन वाले ट्रकों और बसों को स्वच्छ भारत स्टेज BS6 मानकों के अनुरूप और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि परिवर्तन योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 9,500 करोड़ रुपए से अधिक है। ये योजना केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और वाहन उद्योग के समन्वित प्रयासों से कार्यान्वित की जा रही है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के NCR जिलों को कवर करता है। भागीदार राज्य पात्र लाभार्थियों को 10 वर्षों के लिए 100% तक मोटर वाहन कर में छूट और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: दिल्ली सरकार ने दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का पुनर्गठन किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस आयोग की अध्यक्षता सुनीता कांगड़ा के नेतृत्व में की जाएगी। वहीं मनोज कुमार और सुशांत सागर को अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये पुनर्गठन आयोग की कार्यक्षमता को और अधिक बढ़ाते हुए सफाई कर्मचारियों के हितों के संरक्षण तथा उनके कल्याण के प्रयासों को और प्रभावी बनाएगा। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना की मंजूरी के फैसले के बाद आज बड़ी संख्या में महिलाएं दिल्ली सचिवालय पहुंचीं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने महिलाओं के स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये योजना नारी शक्ति के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना को मंजूरी दिए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये निर्णय महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वुमेन लेड डेवलपमेंट के दृष्टिकोण को धरातल पर उतारने का प्रयास है। उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त किया।
2: मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, जिन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वुमन लेड डेवलपमेंट के मूल मंत्र को दिल्ली में पुनः चरितार्थ करने के लिए एक और योजना सुचारू रूप से शुरू करी है, जिसका नाम है लक्ष्मी योजना। लगभग 17 लाख से ज्यादा महिलाएं इससे लाभार्थी होंगी। दिल्ली की मातृशक्ति के आर्थिक सशक्तिकरण में ये बहुत ही मजबूत पहल है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान में माय भारत स्वयंसेवकों, भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSS स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों की अभूतपूर्व भागीदारी देखने को मिलेगी। अगले 100 सप्ताहों तक प्रत्येक रविवार को स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने, सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करने के लिए देशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने आज होलंबी क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। निगम ने बताया कि ये पहल नागरिकों के लिए सुलभ, किफायती और अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निगम ने कहा कि ये पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा को मजबूत करने और दिल्ली के निवासियों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए निगम के संकल्प को और मजबूत करती है। दिल्ली सरकार ने आज डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर हंसराज बवेजा, डॉक्टर एस के टंडन और डॉक्टर विनोद कुमार मोंगा को दिल्ली चिकित्सा परिषद का सदस्य नियुक्त किया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि ये नियुक्तियां परिषद के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाते हुए दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने कल से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के मद्देनजर आज से 12 अगस्त तक राजधानी में सुचारू आवाजाही और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। इस अवधि के दौरान भारी वाहनों पर प्रतिबंध और रूट डायवर्जन लागू किए गए हैं।
3: यातायात पुलिस के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान

0: वाहनों की आवाजाही बढ़ने और सुरक्षा व्यवस्था के कारण कई प्रमुख मार्गों और चौराहों पर यातायात प्रभावित हो सकता है। यातायात पुलिस ने बताया कि वजीराबाद रोड, विकास मार्ग, जीटी रोड और उनसे जुड़े मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही को सीमित किया जा सकता है या दूसरे मार्ग पर मोड़ा जा सकता है। उन्होंने बताया कि पुष्ता रोड, आशाराम त्यागी मार्ग और लोनी रोड सहित कई प्रमुख चौराहों पर भी यातायात प्रभावित रहने की आशंका है। यातायात पुलिस ने लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और सड़क के किनारे अपने वाहन खड़ा न करने की सलाह दी है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: देश भर में आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये दिन अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज मंदिर मार्ग स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि गुरु ही व्यक्ति के भीतर ज्ञान, संस्कार, अनुशासन और सेवा की भावना का संचार करते हैं। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति की उन महान परंपराओं का पर्व है जो हमें अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है।
2: जीवन में गुरु धारण करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ गुरु पूर्णिमा की। और गुरु के सानिध्य में ही हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता है, दिल्ली को विकसित करने का रास्ता है और भारत को आगे ले जाने का है।
1: चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्लॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में युवाओं के साथ पूजा अर्चना की। श्री खंडेलवाल ने कहा कि गुरु पूर्णिमा केवल गुरुजनों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का पर्व नहीं है बल्कि ज्ञान, संस्कार, अनुशासन और जीवन मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्मरण करने का भी दिवस है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा सरमा से टेलीफोन पर बात कर असम में आई बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा ने अनगिनत लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। श्रीमती गुप्ता ने राहत और बचाव कार्यों में असम सरकार द्वारा किए जा रहे समर्पित और सतत प्रयासों की सराहना की। राजधानी दिल्ली में आज दिनभर आंशिक रूप से बादल छाए रहे और लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल भी बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्यजीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित है और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित है। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में पेपर लीक पर 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने परिवर्तन नामक एक वाहन बेड़ा नवीनीकरण पहल को मंजूरी दी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनावश्यक नियमों को कम करने और शासन व्यवस्था को सरल बनाने के सुधारों की प्रगति की समीक्षा की। और दिल्ली यातायात पुलिस ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर आज से 12 अगस्त तक के लिए यातायात परामर्श जारी किया। इस दौरान भारी वाहनों पर प्रतिबंध और रूट डायवर्जन लागू रहेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी, डीन वेद वेदांत संकाय, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली। भेंटकर्ता नीलम मलकानिया।
4: गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या होता है, क्या प्रासंगिकता है आज के डिजिटल युग में गुरु पूर्णिमा की, ये सब हम समझेंगे। इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी को। आप डीन हैं वेद वेदांत

0: संकाय श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में। प्रोफेसर देवी प्रसाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: प्रोफेसर देवी प्रसाद, आप बताएं कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है?
1: भारतीय परंपरा में गुरु का स्थान सबसे उन्नत जगह पर है और वेदों का भारतीय परंपरा में वेदों का उद्देश्य है या वेदों का अध्ययन है। वेदों का अध्ययन ही इसलिए किया जाता है कि वो एक गुरु के स्थान पर जो वेद का अध्ययन करता है उसको पूरे ज्ञान का उत्सव कहा गया है। पूरे भारतीय ज्ञान का जो एक स्रोत है वह वेद है। महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों को चार भागों में विभक्त किया, जिसमें पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। वेद व्यास जी की जो जन्म तिथि है उसको ही आषाढ़ पूर्णिमा कहा जाता है और आषाढ़ पूर्णिमा को ही व्यास जयंती, व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आदिकाल से जो गुरुकुल हैं, जो गुरुकुलीय व्यवस्थाएं थी, उस व्यवस्था में आषाढ़ पूर्णिमा को प्रत्येक गुरुकुल में वेद व्यास जी का पूजन, वेदों का पूजन, ज्ञान का पूजन। वेदों का पूजन का अभिप्राय है विद ज्ञाने धातु से, वेद ज्ञान है, और प्रत्येक गुरुकुल में ज्ञान की पूजा होती थी और प्रत्येक गुरुकुल में गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास पूजन, वेद की पूजा के रूप में इस पूरे उत्सव को मनाया जाता था।
0: जी,
1: आज भी बहुत से गुरुकुल ऐसे हैं जहां पर वेद व्यास जी का पूजन होता है, वेदों का पूजन होता है और भारतीय परंपरा में गुरु पूर्णिमा के रूप में इस उत्सव को मनाया जाता है। यही उत्सव आषाढ़ पूर्णिमा के रूप में कहा जाता है। वेद व्यास जी एक ऐसे आचार्य हैं, एक ऐसे महर्षि हैं जो चिरंजीवी हैं, जो सात हमारे चिरंजीवी हैं, उन सात चिरंजीवियों में वेद व्यास जी भी हैं। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामस्य सप्ते ते चिरजीविनः। ये सात चिरंजीवी हैं, उसमें ज्ञान की जो प्रकाष्ठा है, ज्ञान के रूप में जिनकी पूजा होती है और जिन्होंने भारतीय संस्कृति को, एक वैदिक संस्कृति को एक नया आयाम दिया, इसलिए वहां पर वेद व्यास जी का पूजन होता है।
0: प्रोफेसर देवी प्रसाद, आमतौर पर हम ऐसा मानते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर जिन्हें भी हम अपना गुरु मानते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सही तरीका क्या है गुरु पूर्णिमा मनाने का और हम ऐसा कैसा आचरण रखें, हम क्या करें, विधि विधान में क्या इसके नियम है ताकि हम अधिकतम लाभ गुरु पूर्णिमा का ले पाएं।
1: गुरु किसी भी व्यक्ति को अगर मिल जाए तो उसके जीवन का जो नया रास्ता है या जीवन ही सुधर जाता है, जीवन में पूर्ण सुधार आ जाता है यदि उसको कोई अच्छा गुरु मिल जाता है। कई दृष्टियों से अगर हम इस प्रकार की बात को करते हैं, आज गुरु का कॉन्सेप्ट बहुत कम हो गया है। आज हम विश्वविद्यालयों में हो चाहे महाविद्यालयों में हो, आज गुरु को कम कहा गया है, परंतु जो गुरु है, जो व्यक्ति को, व्यक्ति के जीवन को संवारता है, उसको बनाता है, उसको सही मार्ग पर ले जाता है, तो सही मार्ग दिखाना, सही समाज में सही रूप से व्यवस्थित करना और उस व्यक्ति को इस प्रकार से व्यवस्थित करना कि समाज में उसकी मान बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, गुरु का भी सम्मान बढ़े। परंतु गुरु का एक मुख्य उद्देश्य ये नहीं रहता है कि मेरा सम्मान बढ़े, उसका उद्देश्य ये होता है कि जो व्यक्ति है इस व्यक्ति का उद्धार हो, यह व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो और यह समाज में अपने कार्य में सबसे उन्नत स्थिति पर रहे, इसीलिए वहां गुरु का सम्मान है। और गुरु भी यह चाहता है कि जब उसका शिष्य आगे बढ़े तो उसको सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है। भारतीय संस्कृति में यही कहा गया है कि सर्वत्रम विजयम इच्छेत शिष्यात् पुत्रात् पराजयम। एक पिता और एक गुरु, पिता अपने पुत्र को अपने से आगे देखना चाहता है, उसी प्रकार समाज में एक गुरु जो होता है वह अपने शिष्य को अपने से आगे देखना चाहता है। जिस दिन उसका शिष्य उससे आगे निकल जाता है, जिस दिन उसका पुत्र उससे आगे निकल जाता है, उस दिन वह सबसे ज्यादा उसको प्रसन्नता होती है, खुशी होती है कि आज मेरा शिष्य मुझसे आगे निकल गया है, अर्थात मैं सबसे ज्यादा सफल गुरु हूँ। गुरु पूर्णिमा पर पूजन कैसे करना चाहिए? हर व्यक्ति अपने गुरु का स्मरण करे। गुरु के कई प्रकार हैं। एक तो हमारा जो शिक्षा गुरु है, कुछ यहाँ पे दीक्षा गुरु हैं। आजकल दीक्षा गुरुओं का ज्यादा प्रचलन रह गया है, जिससे हम कोई दीक्षा लेते हैं, जिनसे हम कोई मंत्र लेते हैं, जिसे हम अपने जीवन को सिद्ध करने के लिए कोई रास्ता लेते हैं, उस रास्ते पे अगर हम चलते हैं, अपने कार्य में हम सफल होते हैं, उन गुरुओं की वंदना करना, उनका स्मरण करना, उनका पूजन करना और उनको जाकर के उनसे मिलना। आज वेद व्यास जी की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि वेद व्यास जी आज भी इस हैं क्योंकि वह चिरंजीवी हैं। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी को वेद व्यास जी ने दर्शन

0: दिए, वेद व्यास जी उनसे मिले और उनको नया रास्ता दिखाया। जब उन्होंने ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की बात आई थी तो वेद व्यास जी उनसे मिले। हमारे गुरुओं की जो एक परंपरा है वह मात्र अध्ययन कराने से ही गुरु नहीं होता है, गुरु अपने आचरण से होता है। यदि गुरु का आचरण बहुत सभ्य है, गुरु का आचरण आदरणीय है, गुरु का आचरण पूजनीय है, तो आचरण की जो एक शिक्षा समाज में जाती है वह सबसे बड़ी शिक्षा है। आचरण से ही ज्ञान दिया जाता है। भारतीय परंपरा में गुरुओं की स्थिति बहुत ही उन्नत है। हमारे यहाँ तक कहा गया है, बट तरोर मूरे विद्या शिष्या गुरुर युवा, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्या छिन संशया। एक बट वृक्ष के नीचे गुरु और शिष्य दोनों बैठे हैं, उसमें उनका गुरु जो है युवा है और जो शिष्य है वो वृद्ध है, परंतु गुरु का जो व्याख्यान हो रहा है वो मौन है, मौन व्याख्यान दे रहे हैं, परंतु उस मौन व्याख्यान में भी जो उनके शिष्य है उनका सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। तो सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं और व्याख्यान मौन चल रहा है। ये भारतीय परंपरा का गुरु है जो मौन होते हुए भी अपने शिष्यों को बहुत बड़ी शिक्षा देता है, वह शिष्य अपने ज्ञान में मुक्त हो जाते हैं। तो अगर जिस दिन गुरु चाह ले, जिस दिन गुरु की व्यवस्था बन जाए, तो अपने शिष्य को बहुत ही उन्नत स्थिति पर वह पहुंचाता है।
1: आपसे हमने ये जाना कि अगर श्रद्धा हो, लग्न हो और परिश्रम किया जाए, साधना की जाए, तो स्वयं वेद व्यास जी के दर्शन भी पाए जा सकते हैं, जो कि गुरुओं के गुरु हैं, और अपने गुरुओं का मान तो हमेशा रखना ही चाहिए। गुरु से ज्ञान पाने की बहुत सारी विधियां होती हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो विद्यालय शिक्षा में हमारे शिक्षक होते हैं वही गुरु हैं, क्या शाब्दिक अर्थ को छोड़े तो इनमें कोई भिन्नता है, कोई भेद है?
0: गुरु की जहाँ तक दृष्टि आती है, सबसे पहला गुरु माँ को कहा गया है, क्योंकि माँ सबसे प्रथम गुरु है। बच्चा जब पालने में होता है, बच्चा माँ की गोदी में होता है, तो वहां से ही माँ बच्चे को धीरे धीरे धीरे धीरे उसको शिक्षा देना प्रारंभ करती है। उसके बाद पिता उसका गुरु होता है, वह भी उसको शिक्षा देता है, परंतु जब माता और पिता के बाद उसको कुछ और शिक्षा देने की आवश्यकता होती है, समाज की दृष्टि की आवश्यकता होती है, और माँ पिता से हट करके उसको जब शिक्षा देने की आवश्यकता होती है, गुरुकुल में भेजा जाता है। उसी प्रकार आज हम माता पिता अपने बच्चे को किसी विद्यालय में उसको अध्ययन के लिए भेजते हैं, वहां पर उसका जो गुरु है वो उसके अध्ययन को आगे बढ़ाता है, उसको जो शिक्षा देता है, उसको अक्षर ज्ञान देता है, और उसके बाद धीरे धीरे धीरे वो उसके चरित्र का निर्माण करता है। आप देखिए, एक गुरु के पास बहुत से शिष्य होते हैं, एक कक्षा में बहुत से छात्र होते हैं, परंतु उन सभी छात्रों को एक ही अध्यापक या एक ही गुरु उनको पढ़ाता है। उसमें से बहुत ही कम शिष्य ऐसे होते हैं जो उस गुरु की बात को सुन करके, उस गुरु की बात को मान करके वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और शिखर तक पहुंचते हैं। शिष्य और गुरु का एक तादात्म्य संबंध होता है, वह संबंध सिर्फ भौतिक संबंध नहीं होता है। तो तादात्म्य संबंध का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है, जहां पर गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है समाज के लिए। और आज के संदर्भ में मैं मानता हूं कि आज ऐसे गुरुओं की बहुत अधिक आवश्यकता है, जो आचरण से पवित्र हों, ज्ञान से पूर्ण हों, और जो सामाजिक व्यवहार को बच्चों को दें। तो आज भी ऐसे गुरुओं की आवश्यकता है, और ऐसे गुरु जब तक समाज में रहेंगे, धीरे धीरे समाज उन्नति की ओर चलता चला जाएगा।
1: हम मानते हैं कि ज्ञान में पात्रता जो है उसका बहुत महत्व है। शिक्षा अर्जित करने के लिए तो पात्रता पर हमेशा ही ध्यान दिया जाता है कि जो शिष्य है वो कैसे हैं, लेकिन क्या हम गुरु की पात्रता पर भी विचार कर सकते हैं, किन्हें अपना गुरु मानना चाहिए?
0: पात्रता ज्ञान में है, परंतु उसके जो गुण हैं, आचार्य के, गुरु के जो गुण होने चाहिए, वो ज्ञान की गंभीरता के बजाय यदि उसके आचरण के और उसके गुण यदि ज्यादा अच्छे हैं, तो ज्ञान धीरे धीरे वो आ जाएगा। ज्ञान एक ऐसी चीज है, वो हर व्यक्ति में होता है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा बिंदु है, अर्थात ज्ञान का दूसरा रूप वेद भी है। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसका जो अधिकरण है, ज्ञान हमेशा आत्म तत्व में रहता है और आत्म तत्व शरीर में रहता है, तो ज्ञान सभी व्यक्तियों में बराबर होता है। अंतर इतना होता है कि कोई जो ज्ञानी है या जो गुरु है या जो शिष्य है, उन दोनों में धीरे धीरे धीरे धीरे जो सामिप्य बनता है, आपस का जो झिझक है, आपस की जो समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे जब हटती हैं, तो गुरु और शिष्य का एकाकार हो जाता है। जब वो एकाकार होने लगता है तो शिष्य अपने गुरु के पास जब जैसे जैसे एक पुत्र अपने माँ से बहुत करीब होता है, अगर उसी प्रकार एक शिष्य अपने गुरु के बहुत करीब हो जाता है, तो कवि बहुत दृष्टि से गुरु का जो ज्ञान है वो शिष्य में अपने आप संप्रेरित हो जाता है, और उस संप्रेरित हो जाने

0: के कारण शिष्य भी वहां पर जो कम से कम जानने वाला शिष्य अगर हम यहाँ कहें बोलने लग जाता है सिर्फ गुरु की कृपा से। ये सामान्यतया हम आज की दृष्टि से इसको कहते हैं कि ऐसे कैसे संभव है, परंतु जो एक प्रकार के जो सिद्ध गुरु हैं या जिन गुरु में जिनका गुण बहुत ज्यादा है, ऐसे गुणी जो गुरु हैं जिनमें गुण संपन्नता आचरण संपन्नता बहुत रहती है, उन गुरुओं के द्वारा ज्ञान का संप्रेषण छात्रों में सबसे अधिक होता है। तो जहां गुरु के पास शिक्षा का नॉलेज होना चाहिए, जिसको आज नॉलेज कहते हैं, ज्ञान होना चाहिए, वो बहुत कुछ जानता है, वो भी उसके पास होने चाहिए, परंतु यदि उसमें गुण नहीं है और गुरु का जो गुण होने चाहिए, गुरु के अंदर जो आवश्यकताएं होनी चाहिए, यदि वो चीजें उसमें नहीं है तो उसके ज्ञान का संप्रेषण कभी भी उसके पास नहीं जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, रावण को वेद का ज्ञान था, रावण को बहुत से शास्त्रों का ज्ञान था, फिर भी रावण गुरु नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? रावण का जो आचरण था वो उसके अनुकूल नहीं था। रावण का आचरण उसके अनुकूल न होने के, तो आचरण का मुख्य उद्देश्य आचरण होता है, गुण होते हैं। यदि उसके गुण, उसका आचरण, उसका जो पूरा एक समग्र औरा जो होता है, यदि उसका उस छात्र के अनुकूल है या उस शिष्य के अनुकूल है, तो शिष्य हमेशा ज्ञान में परिपूर्ण होगा ही। बहुत से किस्म के शिष्य होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो पढ़ने से दूर जाते हैं, पर जिस दिन यदि गुरु चाह लेगा कि मुझे इस शिष्य को ठीक करना है, तो उस दिन वह शिष्य निश्चित रूप में ठीक होगा, क्योंकि गुरु के पास ही वह गुण है और वह गुरु ही जानता है कि मुझे इसे ठीक कैसे करना है।
1: जी,
0: कभी कभी समाज की ऐसी व्यवस्थाएं रहती हैं, बहुत से अच्छे गुरु भी इस प्रक्रिया में आगे नहीं आ पाते, और वो आगे नहीं आ पाने के कारण वो ये चाहते हैं पर वो कर नहीं पाते हैं। आदिकाल में क्या था, गुरु के आश्रम में शिष्य रहता था, आश्रम में शिष्य रहने के कारण गुरु वहां पर स्वतंत्र होता था अपने शिष्यों को ठीक से व्यवस्थित करने की दृष्टि से। वो धीरे धीरे धीरे धीरे, क्योंकि बहुत से शिष्य ऐसे होते हैं जो ज्ञान को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, बहुत से शिष्य ऐसे होते हैं जो बहुत स्लो लर्नर आज हम उसको कहते हैं, तो स्लो चलना तीव्र चलना, परंतु अगर गुरु चाहे तो उसको ठीक कर सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य के संदर्भ में एक बहुत अच्छा ऐसा ही उपाख्यान आता है कि उनके चार शिष्य थे, चार शिष्यों में सारे शिष्य प्रख्यात थे, बहुत अच्छे ज्ञानवान थे, विद्वान थे। उन्होंने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी हमको पाठ पढ़ाइए, हमको पढ़ना है। तो उनका एक शिष्य जो है कोई काम से, उनकी सेवा के काम से तालाब के पास गया था और उनका वस्त्र प्रक्षालन कर रहा था। उनने कहा उसको भी आने दो, फिर पाठ शुरू करते हैं। अन्य शिष्यों ने कहा नहीं, उसको आना नाना बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा कुछ जानता नहीं है, कुछ समझता नहीं बात को। परंतु गुरु को ये बात बहुत बुरी लगी। उनने कहा मेरा एक शिष्य है, बहुत अच्छा है, सेवा करता है, सब कुछ करता है, परंतु उसमें ज्ञान का वो संप्रेषण बहुत जल्दी नहीं होता है। ये तीन जो शेष हैं, इन्होंने सोचा कि हम तो बहुत विद्वान हैं, तो हम शायद ऐसा अहंकार आ गया है कि उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। ये गुरु को जब बात खराब लगी तो उन्होंने तुरंत, जैसे वो शिष्य आया, उनने पूछा तुम कहाँ थे? इतने देरी में गुरु ने अपना पूरा ज्ञान उसको दे दिया, और देने के बाद उसे पूछा तुम कहाँ थे, तो उसने कहा कि हम ऐसे ऐसे, और वो सारी विद्या जो सारी चीजें उसने अपने त्रोटक छंद में बताई और बाद में आकर के वही त्रोटकाचार्य हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, यदि व्यक्ति को कोई अच्छा गुरु मिल जाए तो निश्चित है कि उसके जीवन का कल्याण होगा, उसका उद्धार होगा और वह अपने उद्देश्य में सफल होगा।
1: और अच्छे गुरु की बात आपने कही, तो भारतीय दर्शन में गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना गया है, या ईश्वर के समकक्ष तो माना ही गया है।
0: बिल्कुल ठीक।
1: मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या ऐसा केवल श्रद्धावश कहा जाता है या इसका दार्शनिक आधार
0: भी? नहीं, इसका दार्शनिक आधार भी है, इसका वैज्ञानिक आधार भी है और इसका मनोवैज्ञानिक भी। कहा गया है, गुरु गोविंद दोऊं खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। सामान्य बात है कि एक व्यक्ति है, वो बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को कुछ पता नहीं है। बच्चा पैदा होते ही जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो पूछता है कि मुझे क्या करना है, अपनी माँ से कई बार लड़ता है। अगर उसकी माँ ही उसको ठीक रास्ते पे पहुंचा दे तो माँ ही गुरु हो जाती। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन माताओं ने अपने बच्चों को ऐसी रास्ता दिखा करके बहुत महान ऋषि बनाया। जब वो गुरु के पास जाते तो रास्ता कौन सही है, ईश्वर का अभिप्राय है कि जो उन्नत, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी स्थिति जहां उन्नत की स्थिति है, जहां पर जाकर के सभी ऐश्वर्य मिल जाते हैं, उस ऐश्वर्यवान व्यक्ति के पास तक जाने के लिए रास्ता कौन दिखाएगा? रास्ता दिखाने वाला गुरु ही है। तो जब गुरु रास्ता दिखाएगा तो व्यक्ति ईश्वर से भी मिल सकता है। गुरु रास्ता दिखाएगा तो व्यक्ति धीरे धीरे एक सामान्य स्थिति, जिसको कुछ नहीं समझ में आता था, उसको भी गुरु कहां से कहां पहुंचा सकता है। आप चंद्रगुप्त मौर्य की बात देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य कहां था, चंद्रगुप्त मौर्य को कहां से प्राप्त किया चाणक्य ने, और उस चाणक्य ने उसको सम्राट बनाया। तो ये गुरु का ही प्रताप है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए चाणक्य ही सबसे बड़े ईश्वर हैं। इसलिए जब अपने जीवन में कोई व्यक्ति सफल होता है, जब अपने जीवन में परम तत्व पर पहुंचता है, तो उसके लिए उस तत्व तक पहुंचाने वाला एक ही व्यक्ति है, और वह है गुरु। इसलिए वो व्यक्ति अपने गुरु को ही परम ईश्वर मानेगा, वो अपने गुरु के सिवा दूसरे को ईश्वर नहीं मानेगा। इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि यहां तक पहुंचाने वाला उसका ही गुरु है। तो इसीलिए गुरु का महत्व सबसे बड़ा है। दूसरी बात है कि विज्ञान की दृष्टि से और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यही एक तारतम्य होता है कि जब गुरु और शिष्य के बीच का जब अंतर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, तो गुरु भी खुल करके अपने शिष्य से अपनी बात बताता है, शिष्य भी और गुरु भी एक दूसरे के साथ आदान प्रदान जब उन निसंकोच होने लगता है, तो धीरे धीरे ज्ञान का संप्रेषण होता है, आचरण से, व्यवहार से, मानसिक स्थितियों से, तो एक दूसरे में उनका ज्ञान भी ट्रांसफर होता चला जाता है। और ये धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती हैं, ये बहुत माइन्यूट स्तर पर जाकर के बातें बनती हैं। आज के दृष्टि से, भौतिक प्रयोगशालाओं की दृष्टि से अगर हम इस बात को समझना चाहेंगे तो समझ में नहीं आएंगे, परंतु जब हम बहुत माइन्यूट लेवल पे जाकर के परा मेटा लेवल्स के, विज्ञान के भी मेटाफिजिक्स के लेवल, किसी ज्ञान के उस परम तत्व के लेवल पर अगर हम जाएंगे, तो ज्ञान हमको गुरु से ही मिल सकता है और वह गुरु हमको अपने उद्देश्य तक पहुंचा सकता है। इसीलिए गुरु को परम तत्व कहा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कभी अगर व्यक्ति अपने मन में अपने गुरु का ध्यान कर ले और उसको पता है कि मेरा ये गुरु है और मुझे इससे ज्ञान प्राप्त करना है, तो वो गुरु के पास भौतिक रूप में न जा करके भी अपनी साधना के द्वारा, अपने निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने गुरु के पास का सारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यही ज्ञान प्राप्त किया था एकलव्य ने। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई थी। मूर्ति बनाने के बाद जब एकलव्य को पूछा गया कि तुमने ज्ञान किससे प्राप्त किया, तो उन्होंने, मैंने गुरु द्रोणाचार्य से किया। गुरु द्रोणाचार्य ने उसको भौतिक रूप में ज्ञान नहीं दिया, किस रूप में दिया? इसलिए गुरु का जो गुरु तत्व है, गुरु तत्व जो है वो हर व्यक्ति के अंदर है। वो जो गुरु तत्व है, यदि गुरु में वो गुरु तत्व है, गुरुत्व है, अगर वो बात है, तो वो अपने शिष्य तक पहुंचा लेगा। परंतु यदि योग्य शिष्य है और शिष्य में यदि ये गंभीरता है, तो वो गुरु का उस ज्ञान को भी प्राप्त कर लेगा। दोनों में ये बात आती है, गुरु चाहे तो अपने शिष्य को वह ज्ञान दे सकता है, परंतु अगर शिष्य भी चाहे तो उस गुरु से पूरा का पूरा ज्ञान ले सकता है।
1: बहुत ही सुंदर बात आपने बताई उदाहरण के साथ भी। यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आज के डिजिटल युग में जब हम कहते हैं कि हमारे हाथ में मोबाइल है और उस मोबाइल में हमारे हर सवाल का जवाब है, AI जो है तुरंत वो समाधान करती है समस्याओं का, ऐसे में पारंपरिक गुरु की भूमिका के बारे में क्या प्रासंगिकता है?
0: देखिए, जहाँ तक AI की बात है, जहाँ तक डिजिटल की बात है, जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, ये सारा का सारा जो सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम हमारे पास उस लॉजिक पर चल रहा है जिस लॉजिक पर हमने सारा का सारा ज्ञान उसको इनपुट कर रखा है, डाल रखा है, और डिजिटल लेवल पे कहीं वो एक जगह भंडारित हो रखा। उस भंडारित ज्ञान में से हमने उसको एक प्रश्न पूछा, तो उसने क्या किया कि वहां से उसमें से टटोल करके जितना उसको समझ में आया उसने उठा के आपको दे दिया, जैसे आपकी ChatGPT है या AI के द्वारा प्राप्त किया ज्ञान है। परंतु किसी न किसी के द्वारा तो वह ज्ञान एक जगह रखा गया है,
1: बिल्कुल,
0: वहीं से वो इकट्ठा करके लाएगा। यदि मेरी लाइब्रेरी में कोई पुस्तक है, तो तभी वो पुस्तक मुझे मिल पाएगी, क्योंकि वो पुस्तक मेरी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। जो ज्ञान मुझे आज AI या लोग सोचते हैं यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा, यदि मेरे AI में या मेरे उस भंडार में वो चीज है तभी मिल पाएगी, यदि उसमें नहीं है तो कहाँ से मिलेगी। परंतु जो वास्तविक गुरु है, उसके पास जो गुरु का गुरुत्व है, जो उसमें मूल रूप में गुरु है, उसने ज्ञान को कैसे प्राप्त किया, वो तो सजीव है ना
1: जी।
0: और वो एक प्रकार का हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम को हमने ऐसा बना रखा है, वहां पे नॉलेज है। आज हमारी लाइब्रेरी भौतिक रूप में नहीं होकर के इलेक्ट्रॉनिक रूप में है, तो उसके द्वारा ज्ञान को लेना, लाइब्रेरी से ज्ञान को लेना, परंतु गुरु से ज्ञान को लेने में बहुत बड़ा अंतर है। ये इतना बड़ा अंतर है कि गुरु, मैंने आपको कहा कि जैसे वो अपने ज्ञान को पूरा का पूरा संप्रेषित कर सकता है, ऐसे इंटरनेट से ज्ञान को लेकर के हमारी उसमें नहीं आ सकता है। गुरु का जो महत्व है वो किसी भी स्थिति में कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। और अच्छे शिष्य को अगर कोई गुरु, वास्तविक रूप में उसका कोई गुरु, जो जिसको हम ऑफलाइन गुरु जिसको

0: कहते हैं, अगर
1: जी
0: उसको कोई ऑफलाइन गुरु मिलता है तो वही उसका सही प्रश्नों का जवाब दे सकता है। बहुत से गुरु ऐसे हो सकते, ठीक, इंटरनेट ये आवश्यक है जीवन में, ये आपके ज्ञान को संपुष्ट करने के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत अच्छे हैं। जो ज्ञान गुरु ने आपको बताया उसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए या उस लेवल पे दुनिया क्या क्या सोच रही है उसको जानने के लिए ये डिजिटल मीडिया बहुत अच्छा है। परंतु हम ये माने कि डिजिटल मीडिया ही सब कुछ है और इसके द्वारा ही हम पढ़ सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा खतरा होगा ज्ञान के संप्रेषण के लिए, आने वाली शिक्षा के लिए, देने वाले शिक्षक के लिए। अच्छा शिष्य कार्यकर्ता या अच्छा व्यक्ति तभी बन सकता है जब वो एक अच्छे गुरु के पास हो।
1: जी
0: ये नहीं बन सकता कि वो एक अच्छे, उसके पास बहुत अच्छा डाटा बैंक है, उसके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, उसके पास बहुत बड़े सुपर कंप्यूटर लगे हुए हैं तो बहुत अच्छा होगा। इससे सहमत नहीं हूं और मैं कहता हूं कि यह संभव भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान हमको जो अभी मिल रहा है वो अभौतिक है और जो हमारे पास ये सारी चीजें ये भौतिक है। ज्ञान इतना ही नहीं है, ज्ञान का जो मूल, ज्ञान का जो आधार है वो आत्म तत्व है। और आत्म तत्व को अगर हम समझते हैं, जैसे मेरा ये जो हाड़ मांस का शरीर है और इसमें मैं रह रहा हूं, तो ज्ञान मैं में है, ज्ञान शरीर में नहीं है।
1: जी।
0: तो जो मैं वाला व्यक्ति है, जो व्यक्ति है, जो जीवात्मा है, उसमें ज्ञान होता है। वो कैसे रूप में संप्रेषित होता है, आज के विज्ञान की दृष्टि से ये व्यवहार अभी भी हमारा इंस्ट्रूमेंटल नहीं हुआ, और जिस दिन ये इंस्ट्रूमेंटल हो जाएगा उस दिन लोगों को ठीक समझ में आएगा। इसलिए लोग आज की दृष्टि, भौतिक विज्ञान की दृष्टि से लोग इतना ही समझते हैं, ज्ञान सिर्फ इतना ही है जो लाइब्रेरियों में है, ज्ञान इतना ही है जो इंटरनेट में है, ज्ञान इतना ही है जो हमको AI बता रहा है, ज्ञान इतना ही है जो हमको कंप्यूटर बता रहा है। इस सब को पूर्ण करने के बाद भी जो बचता है वही ज्ञान है और वो गुरु ही दे सकता है।
1: बिना सीखे हम ये सब भी नहीं कर पाएंगे। तो आपने कहा कि गुरु की जो भूमिका है वो हमेशा रहती है और जितना हम समझते हैं उससे इतर बहुत सारा ज्ञान है जो हमें गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है। चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारा जो समाज है उसमें आध्यात्मिक स्तर पर गुरु का जो स्थान है उसे तो अक्षुण्य रखा ही गया है, लेकिन घर परिवारों में अनुष्ठान से जुड़े हुए भी बहुत सारे गुरुजी होते हैं जिन्हें सम्मान दिया जाता है समय समय पर। अगर हम अपने गुरु के प्रति आदर भाव प्रकट करना चाहें गुरु पूर्णिमा में, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं?
0: हर परंपरा में अपनी एक व्यवस्थाएं होती है। कुछ लोग अपने शिक्षा गुरु के पास जाते हैं,
1: जी,
0: उनको अपना जो भी उनका पत्रम पुष्पम फलम तोयम से उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, एक पक्ष ये है। दूसरा ये है कोई दीक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु का भारतीय परंपरा में कोई मंत्र लिया, किसी भी कार्य विशेष को दृष्टिगत लेकर के उन्होंने उसको लिया और उसका धीरे धीरे उन्होंने दीक्षा ली, तो उसके आधार पर वो दीक्षा गुरु के पास जाते हैं। जो दीक्षा गुरु हैं तो दीक्षा गुरु उनके पास जाकर के भी वो उनको मिलना, पूजन करना। पूजन का अर्थ और मिलने का अर्थ, आजकल पूजा का अर्थ सिर्फ लोग सोचते हैं कि जो हम एक कर्मकांड करते हैं उसकी दृष्टि से उसका, ये कुछ आवश्यक नहीं है। जब अगर हम अपने गुरु के पास जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनसे प्रणाम करके चले आते हैं, तो उससे उनके मन में या उनको भी एक बहुत बड़ा सम्मान मिलता है। कारण इतना है कि पूजन का अभिप्राय है कृतज्ञता।
1: जी,
0: अगर हम किसी भी व्यक्ति के पीछे कृतज्ञ हैं कि हमने सोचा कि मेरे गुरु ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया या मैं आज अपने गुरु की कृपा से कुछ कर पा रहा हूँ, तो उनके प्रति मेरा एक सम्मान रहना चाहिए।
1: जी।
0: मेरी एक कृतज्ञता रहनी चाहिए, मुझे एक न एक दिन जाकर के उनके पास जाकर के मिलना चाहिए। तो समाज में जो गुरु तत्व या गुरुत्व का या जो मूल आधार है वो है कृतज्ञता। यदि कृतज्ञता बनी रहे, अगर हमारे गुरु ने हमको पढ़ाया और हमने कहा कि कोई बात नहीं, पढ़ाया था तो उन्होंने तो अपनी नौकरी की थी, कौन बड़ी बात की, एक पक्ष ये है। दूसरे ने कहा नहीं, उन्होंने हमें बहुत कुछ किया, दूसरा पक्ष ये है। तो जिस पक्ष ने ये कहा कि उन्होंने मेरे जीवन को संवारा है, उन्होंने मुझे पढ़ाया है और मैं उनकी कृपा से आगे बढ़ा हूं, ये पक्ष है कृतज्ञता का। और ये पक्ष है कि कौन से उन्होंने क्या किया, वो है कृतज्ञता का। इसलिए कभी भी गुरु आचार्य शिक्षिता शिष्य निरोगाच चिकित्सका, हमारे यहाँ कहा गया है कि आचार्य से पढ़ने वाले बहुत से छात्र पढ़ करके निकल जाते हैं। कितने ऐसे शिष्य हैं जो अपने आचार्य को, अपने गुरु को याद करते हैं, बहुत कम करते हैं।
1: जी,
0: बहुत कम करते हैं। परंतु कभी गुरु को इस चीज का कोई मलाल नहीं रहता है कि मेरे शिष्यों ने मुझे याद नहीं किया। परंतु जो शिष्य अपने गुरु को याद रखता है उस शिष्य के, और जो शिष्य अपने गुरु को याद नहीं रखता, उन दो

0: बहुत बड़ा फर्क आता है। अगर आप इन दोनों को लेकर के आप चलते हैं, एक अपने गुरु को याद रखने वाला और एक अपने गुरु को भूल जाने वाला, ये दोनों को अगर आप याद देखते हैं तो जो गुरु को याद रखता है उसके जीवन के बहुत से डाउट उत्तरोत्तर क्लियर भी होते हैं। कुछ नहीं तो अपने जा करके अपने गुरु से पूछ सकता है कि मुझे इसका क्या करना है, मुझे इसके संदर्भ में क्या आपका हो, तो गुरु उसका उद्धरण देगा। जो याद नहीं रखता, जो कृतघ्नता, जो इस प्रकार की स्थिति में पहुंच जाता है जहां हम उसको कृतघ्नता भी कह सकते हैं, उस स्टेज पे जाकर के उस व्यक्ति का धीरे धीरे जीवन में बिखराव रहता है। अगर वो आगे गया तो उसको कोई समस्या है तो मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, परंतु अगर उसके पास एक चैनल है तो वो जाकर के पूछ सकता है, अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। इसको आज की दृष्टि में इसको मेंटर कहते हैं। हमको कम से कम एक मेंटर चाहिए, तो वो आप गुरु के रूप में लोगों ने, क्योंकि ये बाहर से आया हुआ शब्द है, ये हमारा शब्द नहीं है, परंतु आजकल धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्थाओं में ये चीज आ रही है, वो गुरु को गुरु की व्यवस्थाएं नहीं है। तो ये बहुत से कारण है, ये लोकतंत्र की दृष्टि भी बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो हमारे चीजों को हम देश काल परिस्थिति के अनुसार बदल करके उनको लेते हैं। और नेचर का ये गुण है, इसीलिए हमने मेंटर की बात की, नेचर का ये गुण है कि उसको व्यक्ति को जीवन में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने में सहायक है, उसी को हम गुरु कहते हैं। और आज हम धीरे धीरे उसके नए नए रूप दे रहे हैं, परंतु जो प्राचीन मध्यम था जहां गुरु का संबंध था, गुरु किसी भी चीज से बंधा नहीं रहता था। गुरु अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप गुरु जी को कुछ दे दो, नहीं है तो मत दो। उसने क्या कहा, पत्र पुष्प फल और तोय, ये चार चीजें कही गई है, और इन चार चीजों में से कोई भी चीज आपके पास आपने गुरु जी को दे दो, नहीं है तो जाकर के मिल लो। परंतु आज का जो दृष्टि है, आज हम हर स्टेप पर वहां पर आगे जहां हम धन के आधार पर परिसीमित हो गए हैं।
1: जी, इन चारों का क्या अर्थ है मैं आपसे जानना चाहूंगी।
0: पत्र का अर्थ है कोई भी गुरु के पास जाए तो कोई पत्ता ले लो। हमने आम का पत्ता लिया, पीपल का पत्ता लिया, कोई भी समाज का कोई भी पत्ता लेके गुरु जी को दे दिया, साबुन के पास गए, खाली हाथ नहीं जाना। पुष्प है, कोई फूल ले लिया, फूल माला ले ली, गुरु जी के पास गए, आज गुरु पूर्णिमा है तो हमने भाई गुरु जी के पास गए, कुछ फूलों का गुच्छा ले गया या कुछ गुलदस्ता ले लिया, माला ले ली, गुरु जी को चढ़ा दिया,
1: चाहे चरण वंदन किया,
0: चरण वंदन
1: किया, उन्हें पहनाई,
0: पुष्प ले लिया, पत्र पुष्प फल, कोई फल ले लिया, अतोय पानी ले लिया, जल ले लिया, एक कलश ले लिया, उस कलश में हमने आम के पत्ते डाल दिए। तो ये सब लेकर ईश्वर के पास जाने का भी यही विधान है। अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं तो यही चीजें ले जाना, पत्र पुष्प फल तोय, और अगर गुरु के पास जाते हैं तो यही ले जाना है। हम गुरु तुल्य के पास भी जाते हैं तो यही विधान कहा गया है।
1: भारतीय दर्शन में गुरु शिष्य की बेहद प्रेरक कथाएं हमारे सामने हैं। हम उनसे भी ये सीख सकते हैं कि जीवन में हम अपने लिए कोई भी लक्ष्य तय करें उसमें गुरुओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे। प्रोफेसर देवी प्रसाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया, बहुत ही रोचक ज्ञान आपने हमें ये दिया। गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: अभी आप गुरु पूर्णिमा का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व विषय पर विशेष भेंटवार्ता सुन रहे थे। आमंत्रित अतिथि थे प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी, डीन वेद वेदांत संकाय श्री लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली। भेंटकर्ता नीलम मलकानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका, और इस खूबसूरत शाम में बेहतरीन नगमों के साथ आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी खिदमत में तरन्नुम जहां। लीजिए सुनिए ये पहला गीत फिल्म आशिकी से।

8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। अब समाचार होंगे।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने वाला पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति

0: सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
1: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
0: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
4: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठी चार्ज, टियर गैस, कैनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
0: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर

0: विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र थंका नायका, केरल भित्तिचित्र बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
1: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है, जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
2: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से 2 दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
3: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में 1 मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के

0: लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से सातवें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री की ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है, डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
1: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपए पर बंद हुआ।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपराध अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Lok Sabha passes anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. Rajya Sabha clears legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, makes insult to national song a criminal offence. Flood situation grim in Odisha, claiming 4 lives and affecting nearly 4 lakh people. Heavy rainfall also disrupts normal life in Chhattisgarh. UN Human Rights Office voices concern over Islamabad's crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Death toll rises to 40. At the Commonwealth Games, 9 Indian boxers assure medals for the country after sealing semi-final berths.
0: The
2: The Lok Sabha today passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties, such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, said the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases.
3: The earlier bill and the amendment today are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
2: Dr. Singh criticized leader of the opposition and Congress MP Rahul Gandhi for using unparliamentary language, saying it is inappropriate and unfortunate. Replying to Mr. Gandhi's accusation against Union Home Minister Amit Shah, Dr. Singh said the government repeatedly clarified that no shots were fired and only tear gas was used.
4: The government repeatedly clarified that no bullets were fired and that tear gas was used. And if no bullets were fired, then the question of giving an order to fire does not arise at all. Moreover, the authority to issue such an order rests with the magistrate, not the minister.
2: Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju strongly objected to the remarks of Mr. Gandhi and demanded an apology from him in the House. Earlier, participating in the discussion, Congress MP Rahul Gandhi said the students' protest on the NEET issue was not violence or hatred, but a deep expression of the youth, and all political parties must respect this expression. After the passage of the bill, the lower house was adjourned till tomorrow. On the passage of the anti-paper leak bill in the Lok Sabha, Education Minister Prahlad Joshi said the legislation aims to dismantle the paper leak ecosystem and increase transparency, credibility and fairness in the examination process. Home Minister Amit Shah has congratulated every student in India on the passage of the bill. In a social media post, Mr. Shah assured that the Narendra Modi government will spare no one who attempts to imperil the future of students and will leave no stone unturned to ensure that they face the full wrath of the law. The Rajya Sabha has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. The bill will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The proposed legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Mana and making insult to the national song a criminal offence. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine, or both. Replying to a discussion on the bill, Minister of State for Home, Nityananda Rai, said the amendment in the bill reflects the collective commitment to the soul of India, national consciousness, cultural heritage, and the ideals of the freedom struggle.
4: I humbly urge the Honourable House to pass the Prevention of Insults to National Honour Bill 2026 unanimously and contribute towards further strengthening the unity and honour of our nation and preserving the immortal history of our freedom struggle.
2: After the passage of the bill, the Upper House was adjourned till tomorrow. Our correspondent brings a report on today's proceedings in both Houses of Parliament.
5: Both the Houses of Parliament today transacted legislative business. The Lok Sabha passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, while the Rajya Sabha cleared the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Minister of State for Home, Nityanand Rai, introduced the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The Lower House also extended the tenure of Joint Parliamentary Committee examining the legislation related to One Nation, One Election up to the first day of the last week of the winter session of Parliament 2026. Both Lok Sabha and Rajya Sabha also faced adjournments today as opposition created uproar over alleged police action during students' protest over NEET issue, and due to this, question hour in both the houses could not be taken up. The Lok Sabha is scheduled to take up Supreme Court

पर श्रीनगर में मैसोमा के तारीखी दशनामी अखाड़े से अपना रस्मी सफ़र शुरू किया। छड़ी मुबारक पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंचने से पहले पहलगाम, चंदनवाड़ी, शीशनाग और पंचतरणी के अपने रिवायती रास्ते का सफ़र करेगी। ये पवित्र सफ़र श्रवण पूर्णिमा पर पवित्र गुफा में खुसूसी पूजा और मजहबी रसूमात के साथ इख्तिताम पजीर होगा, जिसके साथ इस साल की अमरनाथ यात्रा भी मुकम्मल हो जाएगी। अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब की फोर्सेस ने मगरबी एशिया के खित्ते में तैनात अमरीकी फोर्सेस पर अचानक हमले की कोशिश करते हुए कल रात कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमेरिका की मरकजी कमान ने कहा कि ईरान के सभी मिसाइलों को कामयाबी के साथ मार गिराया गया और अमरीकी फोर्सेज पूरी तरह चौकस और मुस्तैद हैं। अमरीका ने यह दावा भी किया कि गुज़श्ता 72 घंटे के दौरान ईरान के पासदारा ने इनकलाब की फोर्सेज ने 30 ड्रोन हमले किए। जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका की मरकजी कमान और सऊदी अरब की मुसल्ला फोर्सेज ने इराक में यह इल्ज़ाम लगाते हुए हमले किए कि ईरान के पासदारान इंकलाब की फोर्सेज ने ईरान से वाबस्ता ग्रुपों को अमरीकी फोर्सेज और सऊदी अरब की तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले करने को कहा है। अमरीका और सऊदी अरब के लड़ाका हवाई जहाज़ों ने मशरक़ी इराक में कई लॉजिस्टिक्स और असलाह रखने के मकाम को निशाना बनाया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस में यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और इसराइल के वजीर आज़म बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ अलग अलग मीटिंगें की। दोनों मीटिंगें ओवल ऑफिस में बंद कमरे में हुईं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सदर ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की और वजीर आज़म नेतन्याहू के साथ अपनी मीटिंगें ख़त्म की हैं और दोनों मीटिंगें मस्बत और नतीजा खेज रही हैं। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारतीय मुक्केबाजों अरुंधति चौधरी, साक्षी चौधरी, सचिन सिवाच, अंकुश पांगल और नरेंद्र बैरवाल अपने अपने जुमरों में मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इस तरह उन्होंने मुल्क के लिए तमगे यकीनी बना लिए हैं। आज का दिन भारत के मुक्केबाजी दस्ते के लिए बेहतरीन रहा, क्योंकि भारतीय मुक्केबाजों ने अपने सभी 5 मुकाबले जीत लिए हैं। इन फतूहत के साथ ही सेमीफाइनल में पहुंचे भारत के मुक्केबाजों की तादाद 9 हो गई है। वहीं ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की जानिब से जीते गए कुल तमगों की तादाद 12 हो गई है, जिनमें सोने के 2, चांदी के 7 और कांसे के 3 तमगे शामिल हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। लोकसभा में पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक बिल मंजूर हो गया है, जिसमें सख्त जुर्माना आयद किए जाने और इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम किए जाने के इल्तजाम हैं। राज्यसभा ने वंदे मातरम को कौमी तराने की तरह कानूनी तहफ्फुज फराहम करने से मुतालिक कानून मंजूर कर लिया है। इसने कौमी गीत की तौहीन को जुर्म करार दिया है। उड़ीसा में सैलाब के सबब 4 अमवात और तकरीबन 4 लाख लोगों के मुतासर होने से सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी शदीद बारिश से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम है। और दौलत मुश्तरका खेलों में 9 भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही मुल्क के लिए तमगे यकीनी कर लिए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है मॉनसून में आपदाओं से बचाव के उपाय और जन जागरूकता पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डीआर पटनायक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: नमस्कार। एक तरफ आसमान से बरसती जिंदगी तो दूसरी तरफ उसी बारिश का रौद्र रूप। कहीं किसान की आंखों में अच्छी फसल के सपने हैं तो कहीं बाढ़ का पानी घरों की चौखट लांघ चुका है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं शहर कुछ घंटों की बारिश में थम जा रहे हैं और कहीं एक मोबाइल पर आया छोटा सा मौसम अलर्ट हजारों जिंदगियां बचाने की उम्मीद बन जाता है। आज मॉनसून केवल एक मौसम नहीं रहा, ये विज्ञान की परीक्षा भी है, प्रशासन की तैयारी भी और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी भी। बदलते जलवायु परिदृश्य में मॉनसून का स्वरूप लगातार बदल रहा है। कहीं कुछ घंटों में पूरे महीने जितनी बारिश हो जाती है तो कहीं लंबे समय तक वर्षा का इंतजार बना रहता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम आने वाले खतरों को समय रहते पहचान पा रहे हैं? क्या हमारी चेतावनी प्रणाली, हमारा आपदा प्रबंधन तंत्र और हमारी सामुदायिक तैयारी इस बदलती चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज होगी चर्चा। हमारे साथ हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक, जो मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली के विशेषज्ञ हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के विशेषज्ञ, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन की रणनीतियों पर वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम चर्चा का विषय है में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: डॉक्टर पटनायक, शुरुआत आपके साथ करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि कुल मॉनसूनी बारिश भले सामान्य रहे, लेकिन जिसे कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, यानी कम समय में बहुत ज्यादा बारिश की घटनाएं बढ़ गई हैं। आईएमडी अपने मेशो स्केल और अर्ली वार्निंग मॉडल्स को इस सूक्ष्म स्तर के पूर्वानुमान के लिए पिछले कुछ वर्षों में अगर हम कहें तो किस तरीके का अपडेट उसमें आया है, क्या नई तकनीक आई है और उसका कितना असर आप देख रहे हैं?
4: जैसे आपने पहले भी बताया कि ये क्लाइमेट चेंज जो बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण जो हाई इंटेंसिटी रेनफॉल उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर बढ़ रहा है। ये एक बहुत परिमाण में हमारा जितने सारे भी डाटा देखा गया है पिछला 100 साल 50 साल अगर हम देखेंगे तो ये जो जितना हैवी रेनफॉल एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का इवेंट जो है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। ये क्लाइमेट चेंज के कारण इसलिए हो रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें जो मॉइस्चर है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसका काफी बढ़ जाता एटमॉस्फेयर में और जब इंस्टेबिलिटी होता है तो वो हैवी डाउनपोर हो जाता है। इसलिए अगर पूरा रेनफॉल अगर सीजन का मॉनसून सीजन जैसे जून टू सितंबर में अगर टोटल रेनफॉल अगर कंट्री एज ए होल अगर हम देखेंगे पिछले 30-40 साल में 50 साल में तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट ट्रेंड नहीं दिखने को मिलता है। वो बहुत अच्छी बात है, हमारा एग्रीकल्चर देश है। लेकिन तो हमारा जो एग्रीकल्चर देश है उसमें क्या होगा कि ये तो हमको अच्छी बात है कि रेनफॉल जो है डिक्रीजिंग ट्रेंड या इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है। लेकिन जब हम टोटल रेनफॉल को हम डिवाइड देते हैं कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा या 20 सेंटीमीटर से ज्यादा एक दिन में अगर ऐसा होता है तो उसका अगर काउंट करेंगे तो वो सब दिन का बढ़ रहा है। तो आप जैसे सवाल किया कि हमारा प्रणाली में पिछले 5-10 साल में हमने क्या सुधार किया है जो कि उसका आलियन, तो हमने काफी हमारा इम्प्रूवमेंट इसमें किया है। पहली तो बात यह है कि ये शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन इवेंट को पहले मॉनिटर करना पड़ता है। मॉनिटर करने पर कि अगर कोई चीज क्लाउड डेवलपमेंट हो रहा है या कुछ इसमें हो रहा है तो ये कि ऐसा इमीडिएटली अगर एक दिन में या 12 घंटा में दे देगा तो उसको हम मॉनिटर कैसे करेंगे? हमारे पास मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे हैं, सरफेस ऑब्जर्वेशन है, हम बैलून छोड़ते हैं, हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, राडार है, सैटेलाइट है, उसमें कंटिन्यूअसली हमारे पास आज 50 राडार है तो हमने इसमें से कंटिन्यूअसली हम देखते रहते हैं कि कोई ये मैंने कन्वेक्टिव क्लाउड बन रहा है क्या। उसके बाद ये जब हो जाता है तो इमीडिएटली हमने इसका सूचित करते हैं कि इसी एरिया में बहुत हैवी रेनफॉल होगा। दूसरा है कि हमारे पास न्यूमेरिकल मॉडल, ये जो वेदर प्रेडिक्शन है खाली हम सैटेलाइट या राडार इमेज देख के हम फोरकास्ट नहीं देते, उसमें से नहीं होगा, वो थोड़े से थोड़े हमारा 2-3 घंटा के लिए हम बता पाएंगे। लेकिन हम जब 5 दिन पहले कुछ बता रहे हैं कि 7 दिन पहले बता रहे हैं तो इस टाइप का इवेंट होने वाला है 2 दिन के बाद, इसके लिए हमें न्यूमेरिकल मॉडल चाहिए। तो न्यूमेरिकल मॉडल में हमने काफी इम्प्रूव किया है, हमारा सब जितना सारे डाटा अभी सैटेलाइट से AWS से सब आ रहा है वो मॉडल में जा रहा है, मॉडल में प्रोसेस हो रहा है, मॉडल का इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारे पास सुपर कंप्यूटर आया है। सुपर कंप्यूटर क्यों इसलिए चाहे कि बहुत पावरफुल कंप्यूटर का जरूरत पड़ता है जब वेदर प्रेडिक्शन करना पड़ता है। तो पावरफुल कंप्यूटर पहले नहीं था हमारा, अभी अभी हमने लाया है पावरफुल कंप्यूटर, जो कि अभी हमारे पास 20 पेटाफ्लॉप से भी ज्यादा मशीन है। इसका चलते हुए हमारा जो मॉडल का जो भी है अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया है। तो इसलिए अर्ली वार्निंग जो मॉडल फोरकास्ट दे देगा तो हम अर्ली वार्निंग इसमें अच्छा से कर पा रहे हैं, और अर्ली वार्निंग के कारण चलते हमारा वार्निंग जो मैकेनिज्म बाद में, और एक चीज़ है ऑब्जर्वेशन हो गया, मॉडलिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद हमारा जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक जो बोलते हैं हम जब एक डिसीजन लेते हैं जो कि डिजास्टर मैनेजर को हेल्पफुल होगा, क्योंकि डिजास्टर मैनेजर खाली हम ये हो जाएगा कि ओडिशा में बारिश हो जाएगा ऐसा बोलने से उन्होंने पिन पॉइंट एक्शन नहीं ले पाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको एक्यूरेसी चाहिए, आपको लोकेशन स्पेसिफिक चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में, उसको हम स्टेट लेवल से फिर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल में आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर कौन सा सिटी लेवल में आते हैं, तो वो इतना फाइन ट्यून करने के लिए हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम काफी मददगार होता है। और उसके लिए हमारा सैटेलाइट रडार के साथ साथ हमारा जितना भी मॉडल आउटपुट सब बन रहा है, हमारा मॉडल और हम कस्टमाइजली दूसरा मॉडल को भी यूटिलाइज करके हम एक कस्टमाइज फोरकास्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि हैवी रेनफॉल अभी जैसे ओडिशा में चल रहा है, ये काफी दिन से हमने रेड कलर वार्निंग दिया है। तो ये सब संभव है कि काफी जो ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग, कम्युनिकेशन, हमारा डाटा एसिमिलेशन, न्यूमेरिकल मॉडल, फिर

0: हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये सारे कंबाइन अगर हम देखेंगे पिछले 10 साल में तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स साइंस इंडिया में डिपार्टमेंट, उसके चलते हुए हमारा ये फोरकास्ट एक्यूरेसी भी काफी इम्प्रूव।
1: जी डॉक्टर सूर्य प्रकाश, जैसा कि डॉक्टर पटनायक कह रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं मौसम विभाग की प्रणालियों में, जिससे कि जो पूर्वानुमान है वो 100% लगभग सही होने लगे हैं। अब एक व्यवहारिक सवाल पर आते हैं कि जब भी भारी बारिश या बाढ़ की चेतावनी जारी होती है तो एक आम परिवार को अपने घर के स्तर पर क्या सुरक्षात्मक कदम उठाने चाहिए, खासकर अगर हम जैसे बात करें तो कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए, जैसे हम फर्स्ट एड किट रखते हैं अपने घर में, क्या उस तरीके से आपदा के लिए या भारी बारिश की चेतावनी, बाढ़ की चेतावनी के लिए कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए, और उसमें कौन कौन सी जरूरी चीजें होनी चाहिए जो मुसीबत के समय जान बचा सकती है?
2: आनंद जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। जब भी भारी वर्षा की हम चेतावनी आती है तो जन समुदाय को तैयार रहने के लिए कहते हैं, न सिर्फ जन समुदाय बल्कि जो हमारे विभिन्न विभाग हैं जो आपदा प्रबंधन के लिए जिन जिम्मेदार हैं उनको भी तैयार रहने को कहा जाता है। अक्सर एक आम व्यक्ति को या परिवार को जब भारी वर्षा की चेतावनी मिलती है उस समय सबसे पहले तो यही होता है कि आपको कहीं भी घर से बाहर निकलने नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर रास्ते में कहीं पर भी बाढ़ मिल सकती है, कहीं पुल टूट सकता है, कहीं रास्ते बह सकते हैं, और इस तरह की कई संभावनाएं आपदाओं की होती हैं जो भूस्खलन या बाढ़ या भूमि के खिसकने के रूप में दिखाई दे सकती हैं। तो इमरजेंसीज में आपको एक तो टॉर्च, क्योंकि अक्सर जब भी भारी वर्षा होगी तो पावर सप्लाई ब्रेकआउट होगा, तो उस समय में आपको टॉर्च की एक आवश्यकता रहेगी, एक टॉर्च जरूर होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको जरूरी है घर से बाहर निकलना तो आपको एक प्रॉपर अम्ब्रेला या रेनकोट वगैरह की जरूरत रहेगी, और इसके साथ में आप जो है कहीं पर अगर जा रहे हैं और कहीं मिट्टी या मलबे से क्रॉस करते हैं तो अगर आप डंडा या रस्सी भी साथ में रखते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा जो जरूरी आपकी दवाइयां वगैरह हैं जो सर्वाइवल किट्स में जरूरी होती हैं, वाइटल मेडिसिन, वो भी आपके पास उपलब्ध रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में हो सकता है बाजार वगैरह भी खुले ना रहें, तो जो भी बारिश का समय होता है और आप पूरा चेतावनी आती है उसके अनुसार उस समय अवधि के लिए आपको पूर्ण तैयारियां अपने सर्वाइवल के लिए करके रखनी चाहिए। पहले से हम मॉक ड्रिल्स वगैरह करके रखते हैं, इवैक्यूएशन रूट का हमें पता है, कहीं पे फंस गए या रिक्तिकरण करना है तो कौन से सुरक्षित स्थल हैं या कौन से सुरक्षित भवन हैं जहां पर आप समय रहते हुए अपने बचाव के लिए जा सकते हैं, उनका भी आपको ज्ञान रहना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा आम व्यक्ति आजकल बारिश के सीजन में कहीं कहीं बाहर पर्वतीय स्थलों पर चले जाते हैं तो वहां पर बड़ा मतलब ध्यान से जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए भीड़भाड़ इलाके में या फिसलन वाले इलाके में नहीं जाएं, और कहीं पर भी जैसे ज्यादा लोगों के जाने की संभावना है वहां जाने को आप अवॉइड करें, बचें, ताकि वहां पर भीड़ भाड़ ना हो और किसी तरह की भगदड़ ना मच पाए। तो ये अक्सर होता है कि बारिश के टाइम पे मंदिर में या जो हमारे पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं वहां इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एकदम बारिश होती है और लोगों में भगदड़ मच जाती है, उसकी वजह से भी कई बार डेथ्स हो जाती है। तो हमको तैयारी के लिए इमरजेंसी किट, जिसमें आपके पास एक टॉर्च होनी चाहिए, वाइटल मेडिसिंस होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके पास रस्सी या लाठी हो तो और अच्छा है, और अगर सीटी भी रखते हैं तो अच्छा रहता है दूसरों को सचेत करने के लिए या बुलाने के लिए।
1: डॉक्टर पटनायक, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि मुंबई, दिल्ली और बाकी बहुत सारे महानगरों के छोटे छोटे ब्लॉक्स में अर्बन फ्लडिंग की समस्या काफी देखने को मिली है। अब इन अर्बन फ्लडिंग्स को लेकर आईएमडी के फ्लैश फ्लड गाइडलाइन सिस्टम, जिसे एफएफजीएस भी कहते हैं, उसका सटीक प्रभाव जमीनी स्तर पर नगर निगम और आपदा टीम तक कितनी तेजी से पहुंचाना संभव हुआ है, इस दिशा में क्या प्रगति हुई है?
0: आजकल जो है अर्बन फ्लडिंग जो है एक बहुत बड़ा समस्या है हमारे, जैसे अर्बनाइजेशन काफी हो रहा है, अर्बन डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बन रहा है जिसमें कि पॉपुलेशन भी बढ़ गया है, तो जब सिटी में पहले इतना बारिश होता था तो ये इतना नोटिस नहीं हो रहा था, उसका पानी ठीक से निकल गया, ड्रेनेज सिस्टम है ये है तो थोड़ा सा अगर बेहतर है तो उसमें से ये फ्लडिंग नहीं होता। लेकिन आजकल क्या है, जब इंटेंस रेनफॉल इवेंट जब होते हैं, अगर 1 घंटा में कभी क्लाउड बर्स्ट टाइप का इवेंट इवेंट, जो आपको भी पता है कि 1 घंटा में अगर 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाता है तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट टाइप का भी बोलते हैं। तो ये है हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इवेंट जब होता है अर्बन में, तो इसमें ये अर्बन फ्लडिंग का समस्या आ रहा है। तो इसलिए अर्बन फ्लडिंग को हम जो आप बता रहे हैं कि

0: एडर देते हैं, तो हर दिन हमारा सुबह भी बनता है, शाम को भी बनता है, दो बार दिन में तो बन रहा है। तो अगले 6 घंटा के लिए देते हैं, जो कि ऑब्जर्व रेनफॉल में कितना रिस्क है, और उसके बाद हमारा फोरकास्ट भी अगले 24 आवर्स में जो कहाँ कहाँ ये होने वाला है इसका देते हैं। आज जैसे कि अभी हमने मानसून डिप्रेशन चल रहा है, अभी उड़ीसा में काफी किसी जगह में 300 मिलीमीटर रेनफॉल भी हुआ है, 250 बहुत जगह में बारे उड़ीसा के इंटीरियर उड़ीसा में। तो हमारा फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम में हमने इंडिकेट किया था इसमें, जैसे कि अभी फिर छत्तीसगढ़ जाएगा, तो ये एक जो फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम है, ये आपको कम टाइम में हमको जो वार्निंग है रेनफॉल को ट्रांसलेट करके, खाली रेनफॉल कितना होगा ये इतना सफिशिएंट नहीं, रेनफॉल जो होगा उसके बाद बाकी सॉयल मॉइस्चर को भी देखा जाएगा, बाकी उसका कितना ड्रेनेज में है, सॉयल मॉइस्चर का क्वालिटी है, अभी कितना वेट है, वो सब कंसिडर करके फ्लैश फ्लड। तो वही गाइडेंस जो हम दे रहे हैं ये काफी हद तक यूजफुल है। ऑलरेडी अर्ली वार्निंग हमने दे दिया, हैवी रेनफॉल या वेरी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दे दिया, तो फिर हम जो फ्लैश फ्लड गाइडेंस भी उसके साथ साथ इमीडिएटली देते हैं कि कौन सा ब्लॉक है, कौन सा एरिया है, कौन सा वाटर शेड है जिसमें कि फ्लैश फ्लड गाइडेंस का रिस्क ज्यादा है।
1: इसी चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, जैसा डॉक्टर पटनायक बता रहे थे कि शहरों में जो कम समय में ज़्यादा बारिश होने से बाढ़ की स्थिति हो जाती है, सूर्य प्रकाश जी आपसे समझना चाहेंगे कि जब शहरों में जल भराव होता है तो अक्सर रास्तों पर चलने या बिजली के खंभों के पास जाने से हादसे हो जाते हैं, ऐसे जल भराव वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे कि सड़क पर निकलते समय और घरों के भीतर किन बुनियादी सावधानियों का पालन करें ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और आसपास के लोगों को भी वो जागरूक कर सकें?
2: आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जब भी बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ ये समस्याएं होती हैं शहरी क्षेत्रों में, कि जो अवसंरचनाएं हैं, जो हमारी पावर लाइंस हैं, इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं, वो भी कई बार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या प्रभावित होती हैं। ऐसे समय में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डेथ्स होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सभी को जो भी घर से बाहर हों, अगर सड़क पर हैं, तो ये ध्यान रखें किसी भी ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पोल या लाइव वायर्स के नीचे से ये ना क्रॉस करें और किसी तरह का रिस्क ना लें, अगर वो पैदल भी चल रहे हों। दूसरा, अगर घर में आप रह रहे हैं तो जो भूतल पर रहते हैं उनके घरों में भी बाढ़ का पानी आ जाता है, भर जाता है, और कई बार उनका इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम भी बिल्कुल भूतल पर ही होता है, जो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाता है कई बार, तो उससे को अगर हमने स्विच ऑफ नहीं किया तो उससे भी करंट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में आप जो है अपना मेन कंट्रोल रूम जो है या स्विच है उसको हमेशा ऑफ कर दीजिए, ताकि पावर कंटिन्यूटी की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट लगने के खतरे कम से कम हो जाएं। और दूसरा, अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, तो जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो सब पासिस हैं या अंडरवेज हैं, उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सबवेज में कई बार लो लाइंग एरिया होता है और काफी पानी भर जाता है जिसका अंदाजा हमें नहीं लगता है, तो ऐसे में भी डूबने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो ये दो बड़े प्रिकॉशन हैं जिसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है कि आप किसी भी पानी के भराव क्षेत्र में बिना अंदाज लगाए और अनुमान के आप कहीं भी उसमें एंटर ना करें। और दूसरा, पावर सप्लाईज और करंट का हमेशा ध्यान रखें कि उनसे दूर रहें, बच के रहें, और कोई भी ऐसी संभावना नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी को करंट लग सके। तो ये दो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसका ध्यान रखने की जरूरत है। मैं इसके अलावा ये कह रहा था कि गैस सप्लाई का भी है, हमारे यहाँ PNG है दिल्ली में जैसे, उसमें भी कई बार लीकेज या कुछ चांसेस हो सकते हैं, तो उन चीजों का भी ध्यान रखें कि गैस सिलेंडर वगैरह या आपकी जो बिलोंगिंग्स हैं वो भी आप जो है भराव वाले क्षेत्र से ऊपर रखें, मतलब जितना अगर आप ऊंचाई पर रखेंगे उतना सुरक्षित रहेंगी वो चीजें। ठीक
1: डॉक्टर
2: है,
1: पटनायक, अगर आपसे ये समझने की कोशिश करें कि हाल के वर्षों में डॉपलर वेदर रडार का नेटवर्क काफ़ी बढ़ा है और मौसम के सटीक और नाउकास्टिंग का मतलब तत्काल पूर्वानुमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रडार तकनीक से जो सुधार आया है, आपसे ये समझना चाहेंगे कि कितने प्रतिशत का सुधार आप देखते हैं और इससे आम जनमानस को कितना फायदा हो रहा है, किसानों के लिए ये कितनी राहत की बात है और सरकारी तंत्र इससे किस तरह लाभान्वित हो रहा है?
0: देखिए, ये अभी जो आप बताए कि डॉपलर राडार हमारा काफी नेटवर्क बढ़ गया है, अभी हम अगर 2014-15 में जो 15-20 राडार के नीचे ही था उसमें, आज हमारा 50 राडार के आसपास आ गया। तो ये डॉपलर राडार में क्या हो रहा है कि जब इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है तो सारे जगह में हम जब रडार रखेंगे तो उसका 300 किलोमीटर कभी 400 किलोमीटर इफेक्टिवली 200 किलोमीटर ये रेंज में रडार जो है कोई भी कन्वेक्टिव सेल जो है जो कि ये हैवी रेनफॉल जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल इवेंट को जो देता है उसको मॉनिटर करने के लिए राडार एक

0: बहुत उपयोगी है। तो पर्टिकुलरली जब हम जो जगह में जो हमारा ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन का कोई मैकेनिज्म है नहीं, जैसे पहाड़ी एरिया में, उत्तराखंड एरिया, ये एरिया में भी वो रडार जो बहुत हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि उसको मॉनिटर करेंगे। जैसे आपने बताया नाव कास्टिंग, तो ये रडार डाटा लेके हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नाव कास्टिंग देते हैं, अभी हर 3 घंटा में हम अपना नाव कास्ट देते हैं और अपडेट करते हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट एरिया में अगर कोई भी खतरा है तो उसमें रेड कलर वार्निंग दिया जाता है। तो जैसे कि आजकल ये हो रहा है कि आकाश से बिजली में बहुत सारे लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, मैंने बहुत सारे कैजुअलिटी जो डेथ हो रहा है ये आकाश से बिजली में होता है। तो ये मानसून टाइम में जो क्लाउड होता है, क्लाउड भी बिजली होता है, क्लाउड टू ग्राउंड भी बिजली होता है। तो जो क्लाउड टू ग्राउंड वाला जो बिजली स्ट्राइक होता है उसमें बहुत सारा जानमान का क्षति होता है। तो ये जो लाइटनिंग जो स्ट्राइक हो रहा है, डेथ हो रहा है, उसमें हमारा नाव कास्टिंग काफी हेल्पफुल है। तो हमने पहले इतना हमारा नहीं था, जो नाव कास्टिंग में हमने जितना इम्प्रूवमेंट किया है, तो राडार नेटवर्क के चलते हमारे पास जो आपने और भी बताया AI ML भी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसको भी हम यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई भी अगर सेल जो कन्वेक्टिव सेल बनते हैं राडार में दिखता है वो धीरे धीरे मूव होता है। वो अगर 2 घंटा पहले अगर इसी जगह में है तो ये हमारे दिल्ली की तरफ आ रहा है, 2 घंटा के बाद यहाँ हो जाएगा, तो हमने 2 घंटा पहले ये वार्निंग दे देते। तो ये छोटा सा शॉर्ट टर्म में जो वार्निंग भी है, काफी हद तक जो पॉपुलर सिटी है इसमें के लिए भी बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि लोग ट्रैफिक जाम हो जाता है, आप जैसे देखे होंगे कि बारिश के कारण। तो ये सब चीज के लिए हमारा राडार जो नेटवर्क, राडार जो इंटेंसिटी, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं राडार रिलेटेड, वो सब यूजफुल होता है। और दूसरी बात, जो गाँव के लिए भी, जो खेती में भी काम करते हैं वो एक्सपोज होते हैं, तो उसको लाइटनिंग का भी थोड़ा सा इंडिकेशन मिलना चाहिए। अगर उनको थोड़ा सा 2 घंटा पहले भी अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होने का अगर संभावना अगर बताया जाता है, तो वो क्या करते हैं कि उस जो सेफ एरिया में चले जाते हैं। तो वो सब चीज ये एक हिस्से में काफी मदद करता है हमारा राडार एंड उसका जो हमारा जो टेक्निक है।
1: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, जैसा कि डॉक्टर पटनायक बता रहे हैं कि थंडर स्ट्रॉम को लेकर भी जानकारी प्रदान की जाती है जिससे कि लोग सेफ जगह पर चले जाएं। आपसे इसी विषय पर समझना चाहते हैं कि जो सुरक्षित जगह है उसको लेकर भी बहुत सारी धारणाएं हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो खुले में हैं तो किसी टीन शेड के नीचे चले जाएं या फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो वो सुरक्षित रहेंगे। जो किसान खेतों में रहते हैं वो कहाँ जाएं, चूंकि आसपास कोई छिपने की जगह नहीं होती है, पक्की छत नहीं होती है, तो वो क्या करें। और एक और बड़ा मिथ है, जो लोग समझते हैं कि वो घर में हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें किसी तरह की सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, वो घर में हैं, वो सुरक्षित हैं। तीनों ही स्थितियों के लिए आप आकाशवाणी के श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें क्या सलाह देंगे?
2: बहुत ही संबंधित सवाल है, क्योंकि जब भी हमारे भारी वर्षा होती है उसके साथ थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग, ये दोनों इवेंट्स भी अक्सर होती हैं, पर्टिकुलरली क्लाउड वर्स के टाइम पर। तो उस समय में बड़े ये ध्यान देने की बात है कि आप अगर खेत में हैं किसान लोग, तो वो पेड़ तले ना जाएं। पेड़ तले बिजली लगने की जगह घटनाएं ज्यादा होती हैं, और अगर आप खुले मैदान में दोनों पैर एक साथ इकट्ठे करके उड़कू बैठ जाते हैं जैसे मुर्गा बैठता है, तो उसमें करंट लगने की घटनाएं कम होती हैं। लाइटनिंग से हमारे यहाँ काफी डेथ्स होती रही हैं, और इसकी मेन वजह जैसे आपने कहा कि आप टीन शेड के नीचे चले गए, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल है, तो वहां पर करंट लगने का खतरा ज्यादा होता है। अगर ग्राउंड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और आपके जरिए अगर करंट पास करता है तो आपके बॉडी पे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो अक्सर लोग सोचते हैं छाता ले लें, पेड़ के नीचे चले जाएं तो हम सेफ हैं, परंतु ऐसे में सेफ्टी आपके एक्शन पर है कि आप अगर उस समय में खुले में हैं और पास में नजदीक कोई सेफ शेल्टर नहीं है, तो आपको वहीं पर उकड़ू दोनों पैर जोड़ के बैठना चाहिए, ताकि आपके बॉडी के थ्रू मिनिमम लेवल से करंट पास हो और सीधा ग्राउंड में चला जाए। तो ये सबसे बड़ी प्रिकॉशन होती है। और दूसरा, शहरों की हम बात कर रहे हैं, शहरों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हम बहुत यूज करते हैं। जब भी लाइटनिंग होती है तो उसमें अक्सर ये संभावना होती है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के जरिए जो लाइटनिंग का करंट फ्लो कर जाए और आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी फेल हो सकते हैं। तो कभी भी लाइटनिंग होती है तो उसमें अक्सर हमें प्लग्स को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के निकाल देना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि घर में लाइटनिंग की वजह से कोई करंट का प्रवाह ना हो। तो ये दोनों प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं, और अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं तो भी आप सेफ साइड में होकर अपनी गाड़ी खड़ी कर दें, ताकि आपको करंट की संभावना कम से कम रहे।
1: डॉक्टर पटनायक, आकाशवाणी के श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि अलग अलग राज्यों में इस समय मॉनसून की वर्तमान स्थिति अलग अलग है। अगले 15 दिनों या अगले 1 महीने की

0: बात करें तो भारत के कुछ राज्यों का जिक्र करते हुए अगर समझा पाएं आप कि मानसून की क्या स्थिति रहने वाली है।
1: आज तो 29 जुलाई है, आज अगर हम देखेंगे तो एक मानसून टाइम में जो बारिश देता है, मानसून डिप्रेशन सिस्टम जो है, बे ऑफ बंगाल के से होते हुए उड़ीसा, उड़ीसा के बाद इंटीरियर उड़ीसा, थोड़ा सा झारखंड एरिया, छत्तीसगढ़ तरफ मूव हो रहा है। तो आज अभी वो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के तरफ भी एंटर हो रहा है। इससे चलते काफ़ी जो वेस्टर्न उड़ीसा में है, इंटीरियर उड़ीसा में आज जो है रिपोर्ट हो गया, बहुत बारिश रिपोर्ट हुआ है। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो गया है, कुछ कुछ जगह में 300 मिलीमीटर रेनफॉल भी ज़्यादा हुआ है, उससे भी ज़्यादा हुआ है। बहुत सारे स्टेशन में है 200 से भी ज़्यादा रेनफॉल हुआ है, तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ है। तो ये एक बहुत हैवी रेनफॉल जो है वहाँ उसी एरिया में काफ़ी फ्लडिंग उसके भी चलते, और वो थोड़ा सा वेस्टवर्ड जाएगा तो छत्तीसगढ़ एरिया में भी हमने चेतावनी दिया है, थोड़ा सा विदर्भा एरिया में भी चेतावनी दिए हैं। तो ये जो अभी एक्टिव जो मानसून सेंट्रल इंडिया मध्य भाग में है, एक दो दिन चलेगा वो, जब तक ये सिस्टम थोड़ा सा वीक ना हो जाए। तब जब ये उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है कि मानसून ट्रफ ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया के पार्ट में भी थोड़ा सा बारिश होगा। जुलाई महीना एंड होने वाला है, जुलाई तो आप रेनी मंथ है, आपको पता है जुलाई में सबसे ज़्यादा बारिश जो होता है हमारा मानसून सीजन में जुलाई महीना में होता है, और इस बार भी जुलाई खराब नहीं हुआ है, जुलाई अच्छा हुआ है। 1 जुलाई से अगर आज दिन तक देखेंगे तो हमारा जस्ट 1% रेनफॉल कम हुआ है, जून में हमारा 38% कम हुआ था। तो जुलाई में इतना कम होने के कारण आज के डेट में हम जो कंट्री का रेनफॉल है, 1 जून से अगर हम 28 जुलाई का मानेंगे तो लगभग 15-75 दिन थोड़ा सा कम हुआ है, जो कि जो जून में जो कम हुआ था वो हमको जुलाई में काफी हद तक मेकअप हो गया है। लेकिन आप यस जो जैसा बता रहे हैं कि रेनफॉल जब देता है तो आपका हैवी रेनफॉल देता है, बाढ़ वगैरह भी सीमित आता है। और दूसरा, अगले महीने के हर दिन हम फोरकास्ट करते हैं 7 दिन के लिए, जैसे कि वार्निंग देते हैं पर्टिकुलरली, लेकिन महीने का जो फोरकास्ट है हम वो महीने में एंड में करेंगे। जुलाई का एंड में अभी आ गया है तो 31 जुलाई को हम अगस्त के लिए तो ओवरऑल एक फोरकास्ट भी बनाएंगे कि अगस्त मंथ कैसे रहने वाला है। और बाकी हमारा जो रेगुलर फोरकास्ट है हर दिन, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए चाहिए सिस्टम वगैरह, वार्निंग वगैरह, वो देते रहेंगे। एंड हर हफ्ते अगर गुरुवार को हमने एक 4 हफ्ते का फोरकास्ट भी देते हैं, तो वो भी हमारे आने वाले गुरुवार को ये हो जाएगा, एंड उसके बाद फिर हम मंथली फोरकास्ट भी देते हैं। तो इसलिए हमारे जो फोरकास्ट है सारा डिफरेंट टाइम स्केल के देंगे। अभी अभी फिलहाल मानसून अगर कंट्री एज ए होल अगर देखेंगे, आज तक थोड़ा सा मानसून रेनफॉल कम हुआ है, 15% कम रेनफॉल हुआ है।
0: सूर्य प्रकाश जी, आकाशवाणी के इन कार्यक्रमों की कोशिश यही होती है कि श्रोताओं की जिज्ञासाओं को हम समाधान करें और साथ ही साथ समस्याओं का समाधान भी उन तक पहुंचाएं। मानसून में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पहाड़ी इलाकों में यात्रा करना पसंद करते हैं, आपने भी कुछ समय पहले उसका जिक्र किया था। वहां अचानक लैंडस्लाइड आ जाती है या फ्लैश फ्लड का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि सैलानियों या स्थानीय लोग जो वहां की यात्रा की योजना बना रहे हैं या जो वहां हैं, फंस जाने की स्थिति में तुरंत क्या सुरक्षात्मक कदम वो उठाएं?
2: भूस्खलन काफी मात्रा में और कई जगहों पर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, और उसकी जब भी ऐसा घटना में आप अगर उसमें फंस जाते हैं तो सबसे पहला तो ये कि आप अपना बचाव के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फंस गए हैं तो अगर गाड़ी में हैं तो गाड़ी को जो भूस्खलन वाला क्षेत्र है उसे या तो पहले रोक दें या तुरंत आगे जा निकलने के बाद ही रोकें, बीच में नहीं रोकेंगे। ऐसे में भूस्खलन में दबने की चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपकी गाड़ी भूस्खलन क्षेत्र में खड़ी रहती है। दूसरा, अगर आप पैदल जा रहे हैं और अगर कहीं पर भूस्खलन में आप फंस जाते हैं तो आपको नियरेस्ट जो सुरक्षित बाउंड्री है उसकी तरफ जाना चाहिए, आप स्लोप एरिया में, नीचे की तरफ नहीं। लोग, आपने देखा होगा अभी जो पीछे धराली में हुआ था, लोग नीचे की तरफ भाग रहे थे, जिधर भूस्खलन चल रहा था उधर ही उसी दिशा में लोग भी भाग रहे थे, तो ऐसे में दबने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा, अगर आप दर्शक हैं और आप देख रहे हैं कि कोई फंस गया है या कोई गाड़ी फंस गई है तो तुरंत हमें 112 पर फोन कर देना चाहिए ताकि सहायता करने वाले जो हमारे आपदा मोचन बल के कर्मी हैं वो वहां पहुंच जाएं और समय पर उनको रेस्क्यू कर पाए। तो ये सब चीजों का ध्यान बहुत देना जरूरी है। और एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो जो है, भूस्खलन में ज्यादातर कैजुअलिटीज 2 वजह से होती है। एक, कोई पत्थर सिर पे आके गिर गया, हेड इंजरी हो जाती है, तो आपको जैसे भूकंप में हम हेड को प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे ही भूस्खलन में भी अगर आपदा में फंस जाते हैं तो अपने सिर को हमेशा बचा के रखें, उस सिर पे हाथ डाल लें या कोई और कुछ रख लें ताकि आपको हेड इंजरी नहीं हो। दूसरा, अगर मलबे में फंस जाते हैं तो मलबे में एक हम कहते हैं एस्फिक्सिएशन होता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर मलबा चला जाता है और आपको सांस लेने के लिए दिक्कत आने लग जाती है और उसकी वजह से डेथ्स होती हैं। तो ऐसे में कभी भी ऐसा

0: आपको हमेशा अपना अंदाज लगाना है कि आप कैसे फंसे हैं, ऊपर हैं या नीचे हैं। अगर आप थूकेंगे तो ग्रेविटी से थूक हमेशा आपकी ठोड़ी की तरफ आएगा, और अगर नाक की तरफ जा रहा है इसका मतलब आप उल्टे हो गए हैं। भूस्खलन में फंसने में कई बार अपने घर में है और घर पूरा उलट पलट जाता है भूस्खलन के दौरान। तो पहले तो अपनी परिस्थिति की जानकारी लेनी है कि हम सही दिशा में ऊपर की तरफ हैं या उलट गए हैं। तो ऐसे कई सारे प्रिकॉशंस को हमें देना है और ध्यान रखना है ताकि घबराहट ना हो और आप अपने बचाव के लिए उपाय कर पाए। इससे पूर्व आपको उनके संकेत भी देखने हैं। भूस्खलन जब भी शुरू होता है वर्षा के दौरान, जो पानी की वजह से भूस्खलन होते हैं, वो अक्सर पहले थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकलती है, फिर बड़े पत्थर खिसकते हैं। तो अगर कहीं से ऐसे मिट्टी खिसक रही है और बह रही है और आ रही है, तो हमेशा हम उस क्षेत्र में ध्यान पूर्वक जाएं, और जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी जहां जहां ऐसा भूस्खलन का खतरा होता है वहां पे बोर्ड लगाते हैं कि यहाँ भूस्खलन या भूधसाव की संभावनाएं हैं, तो उन क्षेत्र में वर्षा के दौरान जाने के लिए कोशिश ना करें। यही हमारे बचाव के उपाय हैं।
1: मानसून सिर्फ बादलों का बरसना भर नहीं है, यह हमारे मिट्टी की सौंधी महक है, हमारे किसानों की उम्मीद है और हमारी नदियों की रवानी है। लेकिन प्रकृति जब अपनी रौ में आती है तो एक बात हमें साफ समझा जाती है कि तैयारी ही बचाव है और जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ढाल। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा से स्पष्ट है कि मौसम विज्ञान की सटीक तकनीक और आपदा प्रबंधन की मुस्तैदी तब तक अधूरी है जब तक हम और आप एक सजग नागरिक बनकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। जरा सी सावधानी, सही जानकारी और आपदा के समय एक दूसरे का थमा हुआ हाथ किसी का घर बहने से बचा सकता है, किसी की जिंदगी बचा सकता है। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर पटनायक आपका, प्रोफेसर सूर्य प्रकाश आपका बहुत बहुत आभार।
2: नमस्कार,
0: धन्यवाद आपका भी।
3: अभी आप सुन रहे थे मानसून में आपदाओं से बचाव के उपाय और जन जागरूकता पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए, हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है।

0: मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान के ने राज्य के विशाल भूभाग को गंभीर मानवीय संकट में डाल दिया है। इस कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई और हजारों लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ की बिगड़ती और बेहद अस्थिर स्थिति के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है। बस्तर मंडल के साथ महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी सहित विभिन्न जिलों में कई नदियां उफान पर हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। नरेंद्र ने 90 किलोग्राम, अंकुश ने 80 किलोग्राम और सचिन ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक पक्का किया। वहीं महिला वर्ग में अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम और साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Lok Sabha today passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts.

0: पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए, हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से आज संसद भवन में स्काई रूट एरोस्पेस के सह संस्थापक और सीईओ पवन चंद्रा ने अपनी टीम के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में स्काई रूट एरोस्पेस की प्रेरणादायक यात्रा विक्रम

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। यहाँ फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम के साथ आज हम हैं आपके दो दोस्त तरन्नुम जहां
1: और मैं हूँ आपके साथ शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: और साथियों आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ क्योंकि आपकी फरमाइश के बिना ये कार्यक्रम जो है अधूरा है
1: जी।
0: और शिल्पा
1: जी
0: कहते हैं ना कि शाम की शुरुआत जो होती है एक बहुत खुशनुमा माहौल के साथ होती है ताकि सारी जो रात है और रातों का जो ये पूरा कारवा है यादों का और एक दिन भर की थकान है वो बड़े आराम से खुशनुमा माहौल में रात की खामोशी में एहसासों के
1: और
0: साथ।
1: तरन्नुम यहाँ मैं आपको रोकती हूँ कि एक जो खूबसूरत हमारा जो माहौल बनता है
0: बिल्कुल
1: वो बनता है संगीत से,
0: संगीत से
1: है ना।
0: तो फिल्म संगीत की अगर हम बात करें तो ये जो फिल्म के गाने हैं ये हमारी जिंदगी से भी जुड़े हुए होते हैं और यादों से भी।
1: बिल्कुल, तो क्यों ना सबसे पहले हम अपने श्रोताओं का मनोरंजन कराएं इस गीत के साथ।
0: जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं अनुराधा पौडवाल के इस खूबसूरत गीत के साथ ये कार्यक्रम।

0: और एक और मैसेज हमें मिला है नासिर शेख का, और आपके जो फरमाइशी गीत होते हैं उनको हमारी यही कोशिश रहती है कि हम ज़रूर आपको सुनवाएं, लेकिन
1: जी
0: और आप हमें ये भी मैसेज कर सकते हैं कि हम जो गीत आपको सुनवा रहे हैं आपको कैसे लग रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इसी फहरिस्त में अगला गीत।

0: इसी खूबसूरत गीत के साथ हम खूबसूरत संदेश भी अपने प्यारे साथियों के लिए ले लेते हैं।
1: जी बिल्कुल। तरन्नुम, देखो सबसे पहला जो हमारे पास इस समय संदेश आया है वो आया है छत्रपति संभाजी नगर से, राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश का।
0: अगला मैसेज है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित का। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत मैसेज आया है हमें गांव फ्रांसी हिसार से, राजकुमार दाऊदी, प्रमोद कुमार दूदी और पुष्पेंद्र कुमार दूदी का।
1: जी,

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर
1: IELO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

0: तरन्नुम अगला जो संदेश आया है हमारे पास वो आया है ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसोलिया आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया का।
1: नीलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर, मलकापुर महाराष्ट्र से सोपान तायडे, नारायण इंगले और आशीष मोहर्रेकर।
0: अगला संदेश है मारहरा दरवाज़ा एटा से नवी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद

0: सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24/7 पर हमारे प्रसारण अब भी जारी है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक में अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों

0: जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari.

क्या बात है, अमिताभ बच्चन और रेखा जी पर फिल्माया ये गाना आज भी दिल को छू लेता है। दोस्तों, शिव हरी की जोड़ी जितनी खास फिल्मी पर्दे पर रही, उनकी निजी जिंदगी और संघर्ष की कहानी भी उतनी ही प्रेरणादायक है। 13 जनवरी 1938 को जम्मू में जन्मे पंडित शिव कुमार शर्मा को संगीत विरासत में मिला। उनके पिता पंडित उमादत्त शर्मा ने उन्हें संतूर बजाना सिखाया, जो उस वक्त केवल कश्मीर का एक लोक वाद्य था। शिवजी ने अपनी मेहनत से इसे शास्त्रीय संगीत के सर्वोच्च मंच पर पहुंचाया और उनका विवाह मनोरमा जी से हुआ। उनके बेटे राहुल शर्मा आज उन्हीं की परंपरा को आगे भी बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ, 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में जन्मे

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है।

सिनेमा में संगीत के एक युग की शुरुआत की। 80 के दशक के उत्तरार्ध में जब फिल्मों में एक्शन का बोलबाला था, तब शिवहरि के संगीत से सजी चांदनी ने पूरे देश को फिर से प्यार और संगीत के रंग में रंग दिया। श्रीदेवी और ऋषि कपूर पर फिल्माए गए इस फिल्म के गानों ने रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की। चांदनी का संगीत इतना लोकप्रिय हुआ कि हर शादी और उत्सव में इसके गाने गूंजने लगे। आइए सुनवाते हैं फिल्म चांदनी के ये गीत।

आई फिल्म लम्हे शिवहरि की फिल्मी करियर का एक और सबसे बड़ा मील का पत्थर मानी जाती है। दोस्तों, राजस्थान की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म में शिवहरि ने राजस्थानी लोक संगीत और शास्त्रीय रागों का ऐसा बेजोड़ मिश्रण पेश किया कि संगीत समीक्षक हैरान रह गए। मोहे छेड़ो ना हो या मोरनी बाग में बोले, हर गाना आज भी एक मास्टरपीस माना जाता है। आइए सुनते हैं लम्हे का ये रंगीन गीत।

नामांकन मिले। लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार है करोड़ों संगीत प्रेमियों का प्यार, जो आज भी उनके गानों के जरिए जिंदा है। तो आइए सुनवाते हैं फिल्म लम्हे का ये बेहद भावुक और सुरीला गीत।

ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, नई तकनीक, स्टार्टअप, लघु एवं मध्यम उद्योग और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण भारत की आर्थिक विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें JRD टाटा स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को गुणवत्ता, नवाचार और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करनी होगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण की थीम जारी की है। एशिया के सबसे बड़े डिजिटल टेक्नोलॉजी मंचों में शामिल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से अक्टूबर में किया जाएगा। इसमें दुनिया भर के तकनीकी विशेषज्ञ, टेलीकॉम कंपनियां, स्टार्टअप

दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। द लोक सभा हैज पास्ड द एंटी पेपर लीक बिल प्रपोजिंग टफर पेनल्टीज एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू कर्ब एग्जाम माल प्रैक्टिसेस यस्टरडे। द बिल सीक्स टू अमेंड द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024।

0: Five pugilists, including Arundhati Chaudhary in women's 70 kg, Sakshi Chaudhary in women's 51 kg, Sachin Sivach, men's 60 kg, Ankush Panghal in men's 80 kg semifinals, and Narinder Berwal in men's 90 plus kg categories registered victories today. And that is the end of this news bulletin.
1: आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के AR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर मध्य रात्रि के 1:10 कार्यक्रम गीत सुनहरे लेकर हाजिर है आपकी दोस्त कीर्ति। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी नगमे, तो आइए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ फिल्म मुगले आजम से लता मंगेशकर व अन्य आवाजों में।

अभी आप आनंद ले रहे थे दिल अपना और प्रीत पराई के शीर्षक गीत से, और इसमें आवाज़ थी लता मंगेशकर की, बोल शैलेंद्र के थे और संगीत से पिरोया था शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के स्वर में।

अभी आपने सुना ये गीत मन्ना डे और असरानी की आवाज़ों में। अगला गीत फिल्म गाइड से सुनवाते हैं, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ है। बोल शैलेंद्र के हैं और संगीत दिया है SD बर्मन ने।

0: की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
1: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का

0: जीत दर्ज की। उन्होंने कैमरून के इमैनुअल एसेमे को पीछे छोड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। The Lok Sabha has passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2000.

0: कानून में है।
1: हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
2: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण की थीम जारी की है। एशिया के सबसे बड़े डिजिटल टेक्नोलॉजी मंचों में शामिल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दूर संचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से अक्टूबर में किया जाएगा। श्री सिंधिया ने बताया कि इस बार की थीम है सीमाओं के बिना विस्तार, जिसका उद्देश्य भारतीय तकनीक और डिजिटल समाधानों को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। बढ़ने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी इलाके और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में भी भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में जारी चुनावी प्रक्रिया, पाकिस्तान द्वारा अपने इस क्षेत्र में अपने अवैध कब्जे को छिपाने और क्षेत्र में हो रहे

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी में रात के 3:10 हो चुके हैं। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम गीत और गज़लों का। आज के गीत गज़ल कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ सरिता। कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं पंकज उदास की आवाज के साथ।
1: पहली बार एक गजल पेश कर रहा हूं जो उर्दू बहर या मीटर के बजाय हिंदी छंदों के वजन पर है। उम्मीद है ये तजुर्बा आपको पसंद आएगा। मुलाहिजा फरमाएं।

श्री रामचरितमानस से पाठ का। आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग दो। संगीतिका, इस कार्यक्रम का वक्त रहेगा आज सुबह 7:10 पर। प्रातः 7:30 पर आप सुन सकते हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग ये कार्यक्रम। 8:45 का वक्त रहेगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा का। स्वर गंगा कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्री मनोज कुमार शर्मा का संतूर वादन। उद्योग पत्रिका का वक्त रहेगा प्रातः 9:15। 9:30 पर आप सुन सकते हैं मिट्टी दी महक। प्रातः 10:10 का वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी पसंद का। और 11:10 पर स्वरांजलि। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

नवाचार और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करनी होगी। उन्होंने कहा कि अनुसंधान विकास नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहले देश के नवाचार तंत्र को और मजबूत करेंगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने देश में सतत विमानन ईंधन अपनाने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने की योजना के क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय बैठक में श्री नायडू ने सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन गणना और आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ी रणनीति की जानकारी ली। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सतत विमानन ईंधन उत्पादन

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं, आओ योग करें। आज के आओ योग करें कार्यक्रम में आप सुनेंगे भ्रामरी प्राणायाम और भुजंगासन के बारे में।

दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखंद। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कमर दर्द की समस्या बहुत ही आम होती जा रही है। युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक कमर के दर्द की प्रॉब्लम पाई जाती है, जिसके लिए आज हम एक आसन करेंगे, उसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथों पर सिर को टिकाए रखें और शरीर को शिथिल करें, यानी रिलैक्स कर दें। अब अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, हाथों को खींचकर आगे की ओर लेकर जाएं और माथा यानी फोरहेड आपके आसन

आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।